एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 13वीं तिथि तदनुसार 3 मई सन 2026 है। इस समय प्रातः के 5:57 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

FM की 103.4 MHz पर आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले और उसके बाद विविध भारती के कार्यक्रम रिले।

समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फालता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का साधारण कदम उठाया है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था, जिससे मतदान में बाधा आई। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनः मतदान हुआ। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुईं, जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने युद्ध के मैदान में और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा में साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नागरिकों से देश के गुमनाम नायकों की कहानियों और बलिदान को दूर दूर तक साझा करने का भी किया। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरामैया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। श्री मोदी ने उनके नए कार्यकाल के बेहद उपयोगी और प्रभावशाली होने की

0: कामना की है। रोहित जैन को रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। वह 3 मई 2026 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध का ये कथन है कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे आज ही तुम्हारी नई शुरुआत हुई हो। अतीत को क्षमा करो, भविष्य पर विश्वास रखो और वर्तमान में मुस्कुराओ। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान भाग 177। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता। आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। पहला भाग आज आप सुनेंगे, गायन सहभाग किया है अनुजा जोकरकर ने। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन पाएंगे शाम 6:45 पर। सुबह 7 कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर कार्यक्रम होगा त्रिवेणी और 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री नरगिस पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन पाएंगे रात 9:30 से। सुबह 10 कार्यक्रम पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज। सुनिए फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा भाग। सुबह 11 कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं हर्षवर्धन गवई। दिन में 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल और दिन में 1 से आप सुनेंगे नया कार्यक्रम सुरीला सफर। दिन में 2 का समय है त्रिवेणी कार्यक्रम का और 2:30 पर सदाबहार नगमे। दिन में 3 कार्यक्रम मन चाहे गीत। दिन में 3:30 का समय है नाट्य तरंग कार्यक्रम का और 4 पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाया जाएगा। शाम 5 कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और शाम 7 विशेष जयमाला के अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार की शौर्य गाथा आप सुन पाएंगे। शाम 6:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज ये कार्यक्रम होगा। रात 8 हवा महल कार्यक्रम में नाटिका अटरिया पे चोर। इसके लेखक हैं आशा मिश्रा और निर्देशक कमला सक्सेना। रात 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम। रात 9 कार्यक्रम होगा

आपके लिए, और रात 10 बजे से आप सुन पाएंगे कार्यक्रम छाया गीत। रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात, और रात 11 बजे कार्यक्रम विविधा। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 177।

वनवासी कोल भीलों के सौभाग्य से ही मानो श्रीराम का चित्रकूट आगमन हुआ है। उनके दर्शन पाकर सभी सनात हो गए हैं। वनवासियों का कहना है, हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं वे स्थान अपनी समस्त प्राकृतिक संपदा पशु पक्षियों समेत धन्य हो गए हैं। अपने निवास के लिए भी आपने अत्यंत उपयुक्त स्थान चुना है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप आनंदित रहेंगे। हम लोग सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं, हिंसक पशुओं तथा अन्य घातक प्राणियों से आपकी रक्षा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। हम आपकी सुख सुविधा के लिए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब से लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम ने वन में निवास किया है, तब से ही ये स्थान मंगलदायक हो गया है। वृक्षों में फूल फल आने लगे हैं, उन पर लताओं ने मंडप तान दिया है। पशु पक्षी जगत नए उत्साह से जीवंत हो गया है। सभी आपसी वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे हैं।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग 177। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आज इस श्रृंखला की लीजिए सुनिए पहली कड़ी।

0: नमस्कार श्रोताओ, भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा सदियों पुरानी है, जहां सुर लय और भाव का अद्भुत संगम देखने सुनने को मिलता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की इस समृद्ध परंपरा में जहां एक ओर महान पुरुष संगीतज्ञों का योगदान रहा है, वहीं दूसरी ओर अनेक महिला रचनाकारों ने भी अपनी अनमोल बंदिशों से इस धरोहर को सजाया और संवारा है। ये बंदिशें केवल रागों की प्रस्तुति मात्र नहीं है, बल्कि इनमें झलकती है एक स्त्री की संवेदना, उसकी अनुभूति, उसकी भक्ति और जीवन के विविध रंगों की सजीव अभिव्यक्ति। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से आरंभ हो रही है एक नई श्रृंखला, महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आइए सुनते हैं महिला रचनाकारों की बंदिशें, इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: श्रोताओ, भारतीय शास्त्रीय संगीत केवल सुरों और रागों का संगम नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रतिबिंब भी है। जब भी शास्त्रीय संगीत की बंदिशों की चर्चा होती है तो ज्यादातर उस्तादों और पंडितों का ही नाम लिया जाता है, जबकि इस कला को संवारने, संजोने और नई पहचान देने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इतिहास के पन्ने पलटे तो अनेक ऐसी महिला रचनाकार का नाम सामने आता है जिन्होंने अपनी प्रतिभा के जरिए शास्त्रीय संगीत के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, महिला रचनाकारों की बंदिशें। संगीत सरिता की इन कड़ियों में हम उन तमाम महिला रचनाकारों के बारे में बात करेंगे जिनकी बंदिशें आज भी गाई जा रही हैं और उनकी गायकी संगीत में हस्ताक्षर की तरह है। महिला रचनाकारों की बंदिशें, इस श्रृंखला पर चर्चा करने के लिए हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है विदुषी कल्पना जोकरकर जी, जो आकाशवाणी की टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं। विदुषी कल्पना जोकरकर को बचपन से ही संगीत की बारीकियों को समझने का हुनर मिला। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, वत्सला भीमसेन जोशी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शिखर सम्मान, श्रीमती कृष्णा हंगल राष्ट्रीय पुरस्कार और भी अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो आइए हम कल्पना जी का विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं। कल्पना जी, आपका स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: कल्पना जी के साथ उनकी सुपुत्री अनुजा जोकरकर विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। अनुजा जी आकाशवाणी की ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं। अनुजा जी, स्वागत, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आमंत्रित साजिंदों का भी परिचय हम आपसे करवा दें। तबले पर हमारे साथ हैं यति भागवत जी, जो आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। यति जी, आपका स्वागत, नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: संगीत सरिता की इस रिकॉर्डिंग में हमारे साथ मौजूद हैं हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनौने जी, जो आकाशवाणी के बी ग्रेड आर्टिस्ट हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: तो चलिए शुरू करते हैं श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। कल्पना जी, तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि बंदिश क्या है।
2: बंदिश मतलब उससे अर्थ ही स्पष्ट होता है कि कोई बंधी हुई रचना
1: जी।
2: ये एक फारसी शब्द है, लेकिन बंदिशकार या रचनाकार जिनको हम कहते हैं तो उसमें साहित्य भी आता है जो शब्द बंदिश के लिए उपयोग में आते हैं, और जो स्वर रचना उसको दी जाती है उस राग में निबद्ध होनी चाहिए। खास करके शास्त्रीय संगीत का जहाँ प्रश्न आता है तो नियमबद्ध शास्त्र के हिसाब से उस राग को प्रस्तुत करना, ये उसकी विशेषता होती है और उसी के आधार पर उस बंदिश की रचना होती है। जैसे हम कहें कि उस राग का चेहरा हमें उस बंदिश से ही मालूम पड़ जाता है। कई बंदिशों के मुखड़े से हम

0: जान जाते हैं कि अच्छा ये फला राग है।
1: जी जी
0: तो बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर जो रचना बनाई जाती है, उसमें भाव पक्ष भी है, साहित्य का कुछ पक्ष भी आता है। हालांकि बहुत बड़ा साहित्य नहीं होता है, चार लाइन या छः लाइन में बंदिश होती है। बंदिश में दो प्रकार अधिकतर पाए जाते हैं, जो कि बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल।
1: जी जी।
0: विलंबित ख्याल जिसको कहते हैं, या द्रुत बंदिश।
1: जी जी।
0: तो एक जो विस्तारित स्वरूप जो राग का दिखाता है वो बड़ा ख्याल रहता है, और द्रुत बंदिश यानी छोटा ख्याल जो उसका छोटा स्वरूप लेकिन अधिक लय के साथ उसको बहुत अच्छे से हम प्रदर्शित करते हैं, उसको अलग अलग लयकारी और तानों के साथ हम उसको सजाते हैं, वो द्रुत ख्याल।
1: और स्थाई और अंतरा भी होता
0: जी।
1: है।
0: आजकल स्थाई अंतरा गाया जाता है, लेकिन पुराने समय में संचारी अभोग ऐसे चार प्रकार गाए जाते, संचारी अभोग स्थाई और अंतरा।
1: जी जी।
0: हर राग का जो रस है उसका जो स्वरूप है
1: जी,
0: उसके हिसाब से उस बंदिश की रचना होती है
1: जी।
0: कभी भक्ति भाव है, कभी करुण रस है, कभी श्रृंगार है, इस तरह अलग अलग भाव के साथ उस राग को और उस बंदिश को बनाया जाता है।
1: तो हम अपने श्रोताओं को ये बताते चलें कि ये श्रृंखला बहुत ही रोचक और जानकारी प्रद होगी। तो आज इस पहली कड़ी में किन महिला रचनाकार की आप चर्चा करना चाहेंगी?
0: हमारी जयपुर अतरौली घराने की वरिष्ठ गायिका गान तपस्विनी श्रीमती मोगूबाई क्रूडीकर जी, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। आपने कई रचनाओं का निर्माण किया है
1: जी,
0: और उस्ताद अलादिया खान साहब से आपने शिक्षा ग्रहण की है, साथ ही आगरा घराने के हैदर खां एवं विलायत हुसैन खां साहब से भी आपने संक्षिप्त प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मधुर आवाज़, लयकारी एवं सूक्ष्म गमक की झलक आपके गायन में दिखाई देती हैं, साथ ही सुरों का लगाव, नियमबद्ध सुरावट, जोड़ रागों की प्रबलता, लयकारी के खूबसूरत नमूने हमें आपकी गायकी में दिखाई देते हैं। उनकी क्रियाशील सुरीली भावपूर्ण गायकी आनंद प्रदान करती है
1: जी। तो अब इनकी गायी कोई बंदिश प्रस्तुत करेंगी?
0: आदरणीय मोगूबाई क्रूडीकर जी की हम जो बंदिश आपको सुना रहे हैं, उन्होंने उसको स्वरबद्ध किया है राग मालकंस में
1: जी।
0: मालकंस राग के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूं कि ये भैरवी थाट से उत्पन्न होता है, इसमें रे और प स्वर वर्जित है, इसीलिए इसकी जाति औडव औडव है। इसका वादी मध्यम एवं संवादी षड्ज है, एवं गान समय रात्रि का तीसरा प्रहर।
1: बड़ा ही सुंदर राग है राग मालकंस। तो इसका चलन आप सुनाएंगे, फिर उसके बाद अनुजा जी बंदिश पेश करेंगे
0: जी।

वाह, तो ये राग के चलन को आपने गाकर हमारे श्रोताओं को बताया। अब हम अनुजा जी से आग्रह कर रहे हैं कि इसकी बंदिश प्रस्तुत करें।

0: वाह अनुजा जी, बड़ा अच्छा गाया आपने।
1: अब हम आपको आदरणीय मोगुबाई कुर्डीकर जी की बनाई हुई राग बसंत बहार में एक बंदिश सुनाते हैं, मान रे मान रे।

महिला रचनाकारों की बंदिशें, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। गायन सहभाग रहा अनुजा जोकरकर का, तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको अनाड़ी फिल्म का गाना सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। श्रोताओं, आज अभिनेत्री नरगिस की पुण्यतिथि है, तो भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के कुछ गीतों के माध्यम से हम इस प्रतिभावान अभिनेत्री को याद कर रहे हैं।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मदर इंडिया फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूं के बोल, संगीत है नौशाद का।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा

0: कानों की सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: ये है चोरी चोरी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत शंकर जयकिशन का।

अंतराल का समय पूरा हो चुका है, हम उपस्थित हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गानों के साथ। अब आपको सुनवाते हैं लाजवंती फिल्म का गाना आशा भोंसले और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है SD बर्मन ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं बरसात फिल्म का गाना, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है। गीत को लिखा है रमेश शास्त्री ने और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये है आह फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में कमर जलालाबादी के बोल, संगीत ओपी नैयर का।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। अदालत फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है मदन मोहन का।

कार्यक्रम नमस्ते रोहतास सुनने वाले सभी श्रोताओं को उषा का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में। आज का सुविचार, जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो वह खुद में लेकर आओ, महात्मा गांधी। और अब एक नज़र आज के इतिहास पर। वर्ष 1913 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बम्बई अब के मुंबई में पहली बार प्रदर्शित हुई।

वर्ष 1993 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की। वर्ष 1961 में आज ही के दिन कमांडर एलन शेपर्ड अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी यात्री बने। वर्ष 1889 में आज ही के दिन देश के पहले 50 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का हरियाणा में शुभारंभ। वर्ष 1998 में आज ही के दिन यूरो को यूरोपीय मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया। आज जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति। वर्ष 1955 में आज ही के दिन प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ उमा भारती का जन्म हुआ। वर्ष 1951 में आज ही के दिन प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ अशोक गहलोत का जन्म हुआ। 1977 में आज ही के दिन मरियम मिर्जा खानी गणित की दुनिया का प्रतिष्ठित सम्मान फील्ड्स मेडल पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ थीं। प्रसिद्ध व्यक्तियों की पुण्यतिथि पर एक नज़र। वर्ष 2005 में आज ही के दिन जगजीत सिंह अरोड़ा भारतीय सेना के कमांडर का निधन हुआ। वर्ष 1981 में आज ही के दिन नरगिस भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री का निधन हुआ। वर्ष 1969 में आज ही के दिन डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति का निधन हुआ था।

फिल्म 1947 का ये गीत सुजाता मोहन और अनुराधा श्रीराम की आवाज़ में ए.आर. रहमान का संगीता और गीतकार जावेद अख्तर साहब थे। और अब एक नज़र स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। समाहरणालय कैमूर जिला संपर्क जनसंपर्क कार्यालय भारत माला परियोजना के मुआवजे के लिए विशेष कैंप जिला पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे भारत माला परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के

लंबित मुआवजे के भुगतान के लिए आज दिनांक 2 मई 2026 को समाहरणालय स्थित मां मुंडेश्वरी सभागार में विशेष कैंप का आयोजन किया गया। हड़ताल के कारण बाधित हुए मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू बनाना और किसानों को उनका हक दिलाना। मुआवजा वितरण की यह प्रक्रिया वरीय अधिकारियों की सीधी देखरेख में संपन्न हुई। पूर्वाहन 10 बजे से अपराहन 2 बजे तक श्री राजेश कुमार अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कैमूर, अपराहन 2 बजे से अपराहन 6 बजे तक श्री अनिल कुमार अपर समाहर्ता विभागीय जांच कैमूर। इस विशेष कैंप का उद्देश्य उन रैयतों और किसानों से लंबित आवेदनों का निस्तारण करना है जिनका मुआवजा भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी सीधी निगरानी में इन कार्यों को संपन्न कराएं। 2 दिन के आयोजित शिविर में कुल 110 आवेदन के अंतिम रूप से भुगतान हेतु प्रक्रिया पूर्ण की गई, जिसमें कुल राशि 18 करोड़ रुपये सन्निहित है। जिला संपर्क जनसंपर्क कार्यालय रोहतास जिले में 3 मई 2026 को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त संचालन को लेकर समाहरणालय रोहतास स्थित DRDA सभागार में आज जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह की अध्यक्षता में दंडाधिकारी एवं केंद्र अधीक्षकों की ब्रीफिंग आयोजित कर सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि परीक्षा की शुचिता एवं गोपनीयता सर्वोपरि है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कदाचार को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण सतर्कता, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ करने का निर्देश दिया गया। जानकारी दी गई कि नीट यूजी 2026 परीक्षा एक ही पाली में अपराहन 2 बजे से संध्या 5 बजे तक आयोजित होगी, जिसकी कुल अवधि 3 घंटे निर्धारित है। परीक्षा के संचालन हेतु रोहतास जिला अंतर्गत कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शेरशाह कॉलेज, SP जैन कॉलेज, शेरशाह सूरी इंटर स्कूल, शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज, श्री शंकर उच्च माध्यमिक विद्यालय रोहतास महिला कॉलेज एवं श्री शंकर कॉलेज शामिल है, जहां सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। परीक्षा में कुल 3,523 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला प्रशासन द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस बल तथा उड़नदस्ता दल की तैनाती की गई है। साथ ही परीक्षा अवधि के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु व्यापक निगरानी एवं सतत पर्यवेक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि परीक्षा पूर्णतः शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी वातावरण में संपन्न हो सके। महिला अभ्यर्थियों की जांच हेतु महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, घड़ी, अंगूठी, चैन, कान की बाली, बेल्ट, इरेजर, शार्पनर एवं अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गजट ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत संपूर्ण परीक्षा अवधि तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। परीक्षा केंद्र पर मीडिया के प्रवेश को वर्जित किया गया है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी का प्रवेश 11 बजे पूर्वाहन से 1:30 बजे अपराहन तक कराया जाएगा। 1:30 अपराहन के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिलाधिकारी के द्वारा परीक्षार्थियों को 2 लेयर में फ्रिस्किंग का निर्देश दिया गया है। पहला मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश के समय और दूसरा राष्ट्रीय पात्रता एजेंसी के प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर से परीक्षा केंद्र के अंदर फ्रिस्किंग कराई जाएगी। फ्रिस्किंग के बाद सभी परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक लिया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति रहेगी। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के साथ अपना 2 फोटोग्राफ भी साथ लेकर आएंगे। परीक्षा को स्वच्छ एवं निष्पक्ष वातावरण में संचालन को लेकर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो दूरभाष संख्या 0618426072 0618422 6093 पर परीक्षा के दिन कार्यरत रहेगा, जिसके वरीय प्रभार में उप विकास आयुक्त रहेंगे। संयुक्त ब्रीफिंग में पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम, जिला शिक्षा पदाधिकारी, संबंधित वरीय पदाधिकारी सहित प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी केंद्र अधीक्षक उपस्थित थे।

रोहतास जिला में घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। रोहतास जिला में घरेलू गैस की आपूर्ति हेतु इंडेन के कुल 28 वितरक हैं, जिनके पास कुल 8,646 घरेलू गैस सिलेंडर, भारत गैस के कुल 7 वितरक हैं, जिनके पास कुल 1,114 घरेलू सिलेंडर एवं HP गैस के कुल 11 वितरक हैं, जिनके पास कुल 1,798 घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध है। सभी गैस कंपनी के एजेंसी के स्टॉक की नियमित रूप से जांच एवं अनुसरण किया जा रहा है। घरेलू गैस

भारत गैस के कुल 7 वितरक हैं जिनके पास कुल 1114 घरेलू सिलेंडर एवं एचपी गैस के कुल 11 वितरक हैं जिनके पास कुल 1798 घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध है। सभी गैस कंपनी के एजेंसी के स्टॉक की नियमित रूप से जांच एवं अनुसरण किया जा रहा है। घरेलू गैस की होम डिलीवरी पूरे रोहतास जिला में निरंतर की जा रही है तथा विभिन्न स्तरों पर उसका अनुसरण भी किया जा रहा है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अपने अपने अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत औचक निरीक्षण एवं छापेमारी आदि की कार्रवाई की जा रही है तथा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक पर घरेलू गैस सिलेंडर देने तथा अन्य मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निहित प्रावधानों के तहत कारण पृच्छा की जा रही है। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आपूर्ति निरीक्षकों के द्वारा सभी गैस वितरकों की लगातार जांच की जा रही है तथा सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा गैस वितरक के गोदाम पर आवश्यकता अनुसार दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल प्रतिनियुक्त किए जा रही है। सभी अनुमंडल कार्यालयों में अनुमंडल नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा अपने अनुमंडल अंतर्गत धावा दल का गठन किया गया है। सभी गैस वितरक एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि नियमानुसार ऑनलाइन बुकिंग के पश्चात ससमय घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित किया जाए। गैस गोदामों से घरेलू गैस की डिलीवरी नहीं करने का निर्देश निर्गत है। अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा गैस एजेंसियों गोदामों एवं विभिन्न स्तरों पर निरंतर जांच की जा रही है तथा अनियमितता पाए जाने पर जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। आरा स्थित LPG बॉटलिंग प्लांट से संपर्क किया गया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि LPG सिलेंडर सप्लाई निरंतर की जा रही है। जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे लगातार संचालित है। जिला नियंत्रण कक्ष में अभी तक कुल 635 शिकायत प्राप्त हुई है जिनका 100% निष्पादन किया गया है। समस्या समाधान हेतु गैस कंपनी के कॉमन इमरजेंसी हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1906, IOLC के टोल फ्री नंबर 1800233355, BPCL के टोल फ्री नंबर 1800224344 एवं HPCL के टोल फ्री नंबर 1800233355 पर संपर्क करें। साथ ही जमाखोरी, काला बाजारी, घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की शिकायत करने हेतु घरेलू गैस निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर मिलने पर तथा घरेलू गैस मिलने में होने वाली समस्या हेतु जिला नियंत्रण कक्ष गठित की गई है जिसका दूरभाष संख्या 0618422702 एवं 0618422693 है। इस पर संपर्क करें। PHH राशन कार्डधारियों के को प्रति व्यक्ति 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। AAY अंत्योदय राशन कार्डधारियों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।

फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और गीतकार आनंद बख्शी साहब। और अब एक नज़र समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा पूरा देश। केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। ट्रायल के दौरान शनिवार को दिन 11:42 बीप और फ्लैश मैसेज के अलर्ट हुए लोग। सैटेलाइट टाउनशिप पर चरणबद्ध तरीके से काम करें, समय सीमा का रखें ध्यान। मुख्यमंत्री ने नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा कर दिए निर्देश। कहा, पटना मेट्रो रेल के निर्माण कार्य में तेजी लाएं। जेपी गंगा पथ के सौंदर्यीकरण में लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखें। समीक्षा के बाद सीएम ने जेपी गंगा पथ का निरीक्षण किया। वही प्रभात खबर की सुर्खी है, महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम घोषित, हरमनप्रीत को कमान, स्मृति मंधाना उपकप्तान। और हिंदुस्तान की सुर्खी है, AEDO की भर्ती परीक्षा रद्द, केंद्रों पर गड़बड़ी के बाद फैसला, परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर केस दर्ज। हिंदुस्तान की एक और सुर्खी है, मुख्य पृष्ठ पर पंचायतों में सहयोग शिविर की शुरुआत, 19 मई से होगी, प्रखंड और अंचल से जुड़ी समस्याओं का होगा हल। पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह में 2 दिन लगेगा कैंप। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कैबिनेट का विस्तार अगले हफ्ते, 3 से 30 होगी मंत्रियों की संख्या, सम्राट दिल्ली पहुंच।

मंत्री नीतीश से भी मिले कैबिनेट विस्तार पर मंथन। टीआरई 4 में अब पीटी मेंस भी, पहली बार आयोग द्वारा शिक्षा अधिकारियों की भर्ती। पेपर लीक हेराफेरी को देखते हुए दो चरणों में परीक्षा।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और अब मौसम पर एक नजर। बिहार में फिर बदलेगा मौसम, तापमान बढ़ेगा और फिर तेज आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। 8 मई तक आंधी वज्रपात का खतरा रहेगा। आज उत्तर और पूर्वी बिहार में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इस दौरान वज्रपात का भी अलर्ट है। जरूरी सलाह, खराब मौसम में खुले में न रहें, बिजली के खंभों, पेड़ों और कच्चे मकानों से दूरी बनाएं, बारिश में यात्रा टालें। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर प्री मानसून बारिश के कारण इसमें गिरावट देखी गई है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास और सापेक्षिक आर्द्रता 70 से 85%। इसी के साथ प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अमित कुमार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले।

0: समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और एलपीजी टैंकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, पर फिर से मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्टों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पा रहा था। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कौशलेंद्र।
0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
2: मतगणना प्रक्रिया को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ड्यूटी पर तैनात हर व्यक्ति को QR कोड वाला एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत पहचान या धोखाधड़ी ना हो। मतगणना कक्षों और EVM स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर सबसे अंदरूनी सुरक्षा की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में होगी। स्थानीय और राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में 4,87,98,833 मतदाताओं में से 85.10% मतदान दर्ज किया गया है। महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 2,52,59,596 वोट डाले, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,35,34,720 रही। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट UG परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
3: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य

0: हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
1: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली, सीबीएस और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी.डॉट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले 2 दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर 3 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मस्क के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स

0: से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
1: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है, मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है, केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है, करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है, लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ी। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है, खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है, सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई, करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से हैं परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार, कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉटर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम देशभक्ति संगीत के अंतर्गत ये गीत हमने आपको सुनवाया। फिल्म काबुलीवाला मन्ना डे की आवाज़ में सलील चौधरी की का संगीत और प्रेम धवन की रचना। आइए अब आपको सुनवाते हैं आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपके।

ये गीत परदेस फिल्म का उदित नारायण, हेमा सरदेसाई, अलका याग्निक और सबरी की आवाज़ें, नदीम श्रवण का संगीत था, आनंद बख्शी साहब की रचना और फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, रुबीना परवीन, अरहान बाबू, हमजा बाबू, तैमूर बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अभिया नाज, शाहीन नाज, नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख, मुजमिल बाबू और कोकिल वारा, और आई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैशल सी शेख, मुन्नुजहा नाज, कांति निकेतन राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता।

गुप्ता, फुटानी चौक नारायण स्ट्रीट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन पारा सर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित, मिसर मोहल्ला से नारायण बाजार से भाई फटफटिया, जाफुलेश्वरी देवी, बीके मिश्रा, अमित सुमित, विनय सुरगनैया, लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, लेवई से गुलाब दास, मानिकपुरी दंतरेंगी से भागवत वर्मा। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं ये संदेश।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: और अब कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश। पठान टोली कलेर से मोहम्मद आसिफ खान, निकट परवीन सदा फारजू, साहिल अरमान, शमा परवीन, सादिया तस्नीम और अलेशा वाराणसी। उत्तर प्रदेश से किशोरी श्रीवास्तव, पिंकी श्रीवास्तव, संध्या श्रीवास्तव, आबू और डुनडुन। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, धनतरेगी से भागवत प्रसाद वर्मा और ताजपुर मोरबा से भाई कारी, राय कारी, मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढूली सकरा से जयंत कुमार बैरागी। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कुछ कुछ होता है फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

फिल्म का नाम तो आपको बता ही चुके थे, कुछ कुछ होता है। कुमार शानू, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक की आवाज़ें थी इस गीत में। समीर की रचना पर संगीत दिया था जतिन ललित ने। और अब प्रोग्राम में ये एक गीत और शामिल कर रहे हैं। फरमाइश है थाना मोड़ गढ़नोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजबुल निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना शाहबाज। गोकुल चौक गंगजिला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की वाली, फलना झा। नयानगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार और गजेंद्र कुमार निराला। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बॉम्बे का ये गीत।

संगीत है यार रहमान का, महबूब की रचना है रियो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रेमो फर्नांडिस की आवाज़, फिल्म बॉम्बे।

0: अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा,

0: पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: छोट शहर मगर सपना ग्लोबल, आप इंजीनियरिंग के टॉप लेवल पढ़ाई बिहार में ही संभव छी।
2: हर जिला में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, 38 प्रतिष्ठित संस्थान, विश्व स्तरीय शिक्षा अपने राज्य में,
1: हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी फैकल्टी, आ मजबूत प्लेसमेंट सपोर्ट।
2: नामांकन जेईई मेन 2026 या बीसीईसीई मेरिट के आधार पर, अंतिम तिथि 5 मई 2026।
1: जखन मौका अपने राज्य में हो तो सफलता दूर नहीं हो छी, उत्कृष्ट प्लेसमेंट अहां के इंतजार में छी।
2: बीसी जानकारी खातिर विजिट करू bceceboard.bihar.gov.in। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अपने राज्य में।
1: हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी फैकल्टी आ मजबूत प्लेसमेंट सपोर्ट।
0: नामांकन जेईई मेन 2026 या बीसीईसीई मेरिट के आधार पर। अंतिम तिथि 5 मई 2026।
1: जखन मौका अपने राज्य में हो तो सफलता दूर नहीं हो छी। उत्कृष्ट प्लेसमेंट अहां के इंतजार में छी।
0: बेसी जानकारी खातिर विजिट करू bceceboard.bihar.gov.in। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। प्रदेश की सभी पंचायतों में प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को लगेगा सहयोग शिविर। 19 मई से होगी शुरुआत। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में 48,50,000 से अधिक लोगों ने स्वगणना में लिया भाग। वैशाली जिला पहले स्थान पर। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी भागों में अगले दो दिनों तक आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि 6 या 7 मई तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार के मुद्दे पर पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली गए हुए हैं। वहां वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल पटना में मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। इधर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और बिहार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात को भी संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश की सभी पंचायतों में इस महीने की 19 तारीख से प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को भेजे निर्देश में कहा है कि शिविरों में प्रखंड, अंचल और थानों से जुड़ी शिकायतों का ऑन स्पॉट निपटारा किया जाएगा। इसका आयोजन पंचायत सरकार भवन या इसके आसपास किसी सार्वजनिक स्थान पर होगा। विकसित भारत समृद्ध बिहार अभियान के तहत सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना का कार्य पूरा हो चुका है। इस दौरान प्रदेश भर में 48

0: 50,848 लोगों ने स्व गणना प्रपत्र भरे हैं। इस मामले में पहले स्थान पर वैशाली जिला रहा, जहां 5,86,220 परिवारों की सूचनाएं ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की गई हैं। दूसरे स्थान पर गया जिला रहा, जहां 4,95,331 लोगों ने स्वगणना पत्र भरा है, जबकि गोपालगंज 3,06,491 स्वगणना पत्र अपलोड कर तीसरे स्थान पर है। पटना जिला 2,38,750 स्वगणना पत्र भरकर चौथे स्थान पर है। गौरतलब है कि 17 अप्रैल से 1 मई के बीच स्वगणना पत्र भरे गए थे। स्वगणना की समय सीमा समाप्त होने के बाद 2 मई से राज्य में मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य किया जा रहा है। जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अपनी पहली राजनीतिक यात्रा की शुरुआत आज से करेंगे। निशांत कुमार की इस यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा रखा गया है। श्री निशांत 11 बजे पटना स्थित पार्टी मुख्यालय से सद्भाव यात्रा के लिए रवाना होंगे। यात्रा की औपचारिक शुरुआत पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से होगी। इस दौरान उनके साथ जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और पार्टी अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि यात्रा के दौरान निशांत कुमार पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे।
1: माननीय निशांत कुमार जी की सद्भाव यात्रा की शुरुआत चंपारण की धरती से हो रहा है। नीतीश जी की विरासत को जनता दलित केवल विरासत नहीं, बिहार की विरासत नहीं, देश की राष्ट्रीय राजनीति में विरासत है। उस विरासत को सजाने और संवारने का काम निशांत कुमार जी को दिया गया।
0: पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी। असम की 126, केरलम की 140 और पुडुचेरी की 30 सीट के लिए मतदान 9 अप्रैल को हुआ था। तमिलनाडु की 234 सीटों के लिए 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के लिए दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे। प्रदेश के सभी 927 राजस्व न्यायालयों को आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से लैस किया जाएगा। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेजा है। अपने निर्देश में उन्होंने कहा है कि राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण का काम संबंधित जिलाधिकारी की निगरानी में होगा। उन्होंने कहा कि न्यायालयों के आधुनिकीकरण से न्याय प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के साथ ही दस्तावेजों का डिजिटलीकरण भी आसान होगा। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए जारी निर्देश में कहा है कि प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। पटना जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई को 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही 3 दिनों के अंदर छात्रा की माता का बयान सक्षम अधिकारी के समक्ष दर्ज करवाने को भी कहा है। अदालत ने प्रत्येक 14 दिन पर शपथ युक्त प्रगति प्रतिवेदन दाखिल करने का आदेश सीबीआई को दिया है। विशेष अदालत ने छात्रा के परिजनों को 2.5 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा।

0: आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के उत्तरी भागों में आंधी बारिश की स्थिति लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार के प्राणपुर में 114 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पूर्णिया के कस्बा और ढेंगरा घाट में 106 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की आशंका भी जताई गई है।
3: दिनांक 3 मई राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
2: इधर राज्य के दक्षिणी भागों में उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद समेत दक्षिण पश्चिम भागों में तापमान में वृद्धि दर्ज किए जाने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है।
4: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहाँ राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहाँ हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर माँ भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
2: ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुई जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड में 12 जून से शुरू हो रहे T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर की को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में T20 पुरुष लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कल अलग अलग स्थानों पर खेले गए मुकाबले में खगड़िया, पूर्णिया, समस्तीपुर और अररिया की टीमों ने जीत दर्ज की। पटना में खेली जा रही बिहार राज्य अंडर 9 शतरंज प्रतियोगिता के बालक वर्ग का खिताब पूर्णिया के आर्यन कुमार ने जीता, जबकि बालिका वर्ग का खिताब मुजफ्फरपुर की दिशा कुमारी ने जीता है। जमुई के मलयपुर में 25 मई से बिहार राज्य सीनियर खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी बिहार खो खो संघ के सचिव नीरज कुमार पप्पू ने दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। हैदराबाद में यह मैच आज दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में एक अन्य मैच में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। सीवान जिले के बढ़ड़िया थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी सोनू यादव मारा गया है। उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि पिछले दिनों पूर्व MLC मनोज सिंह के भांजे और उनके बहनोई पर गोलीबारी की घटना में भी सोनू यादव वांछित था। गौरतलब है कि इस घटना में पूर्व MLC के भांजे की मौत हो गई थी। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र के मलंगिया गांव में JCB से खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। इधर कैमूर जिले के

भभुआ भगवानपुर पथ पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कटिहार पुलिस ने निबंधन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम से जमीन के दस्तावेज की चोरी कर फर्जी नाम पर जमीन बेचने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। इस संबंध में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने सुपौल जिले के निर्मली में अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का उद्घाटन किया। मधेपुरा जिला मुख्यालय के पास साहूगढ़ में पुल धंसने से 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। अररिया जिले के रानीगंज में खनन विभाग की टीम ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान बालू लदा एक ट्रैक्टर जब्त किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने बिहार लोक सेवा आयोग के निर्णय को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, AEDO की भर्ती परीक्षा रद्द, परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर केस दर्ज। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, सैटेलाइट टाउनशिप पर चरणबद्ध तरीके से काम करें, समय सीमा का ध्यान रखें। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सम्राट दिल्ली पहुंचे, कैबिनेट का विस्तार अगले सप्ताह, 3 से अब 30 हो जाएंगे मंत्री। प्रभात खबर लिखता है, बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने पर भारत और नेपाल में बनी सहमति। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। प्रदेश की सभी पंचायतों में प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को लगेगा सहयोग शिविर, 19 मई से होगी शुरुआत। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में 48,50,000 से अधिक लोगों ने स्वगणना में लिया भाग, वैशाली जिला पहले स्थान पर। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी भागों में अगले 2 दिनों तक आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: किसान भाइयों एवं बहनों, अब सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना हुआ और भी आसान।
2: IVRS सुगम कॉल सेंटर के माध्यम से सहकारिता विभाग की सभी योजनाओं यथा खाद्यान्न अधिप्राप्ति, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, पैक्स सदस्यता एवं अन्य सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें।
1: कोई समस्या, कोई शिकायत, कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो तुरंत कॉल करें।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-3454-110 पर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सहकारिता विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।

एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शीर्ष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 9:10 पर प्रातः आपको सुनवाएंगे हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतमालिका। इसके बाद सवेरे 9:30 पर आपको लिए चलेंगे विविध भारती की ओर और दिल्ली से हिंदी समाचार आपको सुनवाएंगे सवेरे 10:00। 10:05 पर आप सुनेंगे बाल श्रोताओं का कार्यक्रम अंकुर स्टूडियो से लोक माधुरी। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 10:30 पर और 10:45 पर भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसधार हम आपको सुनवाएंगे। विविध भारती आपको लिए चलेंगे प्रातः 11:00 से। दोपहर 12:00 से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और दोपहर 12:05 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। दोपहर 2:00 से प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुनेंगे इलाकाई खबरें आकाशवाणी के पटना केंद्र से दोपहर 2:05 से और दोपहर 2:10 से आप सुनेंगे रोजगार सूचना आकाशवाणी के पटना केंद्र से। दोपहर 2:15 से आप सुनेंगे मध्यान्ह समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती के कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 2:30 से। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप पुनः सुन सकेंगे संध्या 5:00 से। संध्या 5:05 पर फिर से आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण और संध्या 5:10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन। संध्या 5:30 से हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण। अंग के वैज्ञानिक होंगे सर जॉर्ज बैगर थॉमसन फ्रैंक कॉनार्ड। विज्ञान से जुड़ी नवीनतम खबरें आप जानेंगे, चर्चा आप सुनेंगे कोयला खनिक दिवस पर जीव विविधता और भेंटवार्ता आप सुनेंगे जीव विविधता जीवन के लिए वरदान विषय पर शिक्षा शास्त्री वैजनाथ पाठक से अर्चना की बातचीत। चर्चा आप सुनेंगे विश्व अस्थमा दिवस पर डीएनए भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे, डीएनए जीव के विकास को निर्धारित करता है विषय पर अभिनव प्रतीक से अर्चना की बातचीत। साथ ही आप आनंद लेंगे हिंदी फिल्म संगीत का। गाँव घर ग्रामीण श्रोताओं के लिए ये कार्यक्रम संध्या 6:00 से हम प्रसारित करेंगे। चर्चा का विषय होगा मीडिया की आज़ादी क्यों है जरूरी। प्रेस आज़ादी दिवस पर लोकगीत आप सुन सकेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत और वार्ता आप सुनेंगे विषय होगा रोहतास में पत्रकारिता का विकास। वार्ताकार होंगे त्रिपुरारी त्रिवेदी। एक जानकारी के अंतर्गत जीवन में हंसी का महत्व। साथ ही मौसम पूर्वानुमान सांझ गीत भोजपुरी फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:30 पर और शाम 7:15 पर आप सुनेंगे गुड इवनिंग रोहतास सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम। संध्या 7:25 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुन सकेंगे और ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद आपको सुनवाएंगे हम शाम 7:50 से। हमारा ईमेल आईडी है akashvani@gmail.com। दोपहर 1:00 से शाम 5:00 के बीच आप ईमेल कर सकते हैं अपनी पसंद के गीत और अपने पते और नाम के साथ। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9:00 से आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकधारा। महफिल कार्यक्रम होगा रात्रि 9:15 से। छाया गीत ये कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम के अंतर्गत। रस रंग स्टूडियो से आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:00 और रात्रि 10:30 पर चित्रपट तराने ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। रात्रि 10:55 पर आप सुनेंगे अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान। रात्रि 11:00 से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब सुनिए हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतमालिका।

बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत श्रेया घोषाल और वैशाली मदे की आवाज़ में संजय लीला भंसाली का संगीत था और सिद्धार्थ गरिमा का लिखा गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खूब खूब आभार अपना गुजरात में हालो मने नहीं आगे बहुत नाम नो गाम छे क्या मजूर वर्ग बहुत है तो मने एक गीत नी फरमाइश करी थी अने त्यां कई थाकी ने लोका सांजे मौजू करता हूँ त्यारे कई आओगा।

अभी आप सुन रहे थे रामलीला फिल्म का गीत। भूमि त्रिवेदी की आवाज़ में संजय लीला भंसाली का संगीत था, सिद्धार्थ गरिमा का लिखा गीत। और अब ये गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अग्निपथ। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अग्निसाक्षी, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़, नदीम श्रवण का संगीत और गीतकार हैं समीर।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रिले।

0: बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए थे,
1: संगीतकार रवि।
0: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में।

अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

असद का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की माँ थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश ए हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू

जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था, वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दन बाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जानी मानी निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। चूंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया। बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात।

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 420।

श्री 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

0: रहो प्यार मेरा।
1: आह के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी फिल्म थी।

0: रहो प्यार में।
1: आह के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी फिल्म थी।

0: प्यारा प्यारा।
1: राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में ये फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली।

दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रही दत्त साहब कहाँ हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं है। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गई। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गई। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया से

पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है।

0: थे नरगिस, एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।
1: रुक,

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थीं अभिनेत्री नरगिस की। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फौलता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया है कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान में गंभीर चुनावी गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। चुनाव अधिकारी ने कहा है कि मतगणना केंद्रों पर सभी तैयारी पूरी हो गई है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान

0: निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
1: जनादेश 2026
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल,

0: मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद की थी। ये अवसर प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों को मान्यता देने और विश्व स्तर पर प्रेस की आजादी का मूल्यांकन करने का है। ये दिन प्रेस की आजादी और स्वायत्तता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सरकारों को प्रेस की आजादी की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। शहर के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई जिससे लोगों को राहत मिली। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब सुनिए बाल श्रोताओं का कार्यक्रम अंकुर।
2: क्रम के इस भाग में एक बार फिर

0: जय हिंद बच्चों,
1: जय हिंद दीदी।
0: स्वागत है आप सभी का आज के अंकुर कार्यक्रम में। बच्चों, आप सभी को आपकी वंदना दीदी का बहुत सारा प्यार।
1: आपको भी हम बच्चों का नमस्कार।
0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा बच्चों, उस चीज का नाम बताइए जिसमें फल आते हों, फूल आते हों और जो पत्तों से हरा भरा रहता हो।
2: दीदी, ये तो पौधा हुआ ना?
0: हाँ बिल्कुल, ये हुआ पौधा, हरा भरा पौधा।
3: तो दीदी, क्या आज आप हमें पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे?
0: हाँ, आज हम पेड़ पौधों की दुनिया यानी वनस्पति जगत के बारे में जानेंगे।
3: एक बार हमने बात की थी प्राणी जगत की, और आज वनस्पति जगत की।
0: हाँ, ये हो गए वनस्पति जगत और प्राणी जगत।
3: यानी कि ये दोनों एक समान है।
0: हाँ, इनमें समानता यही है कि दोनों में प्राण है। अच्छा बच्चों, यह बताइए कि पौधा और प्राणी में क्या-क्या अंतर हो सकते हैं?
4: पौधे अपनी जगह से हिल नहीं सकते और प्राणी चल फिर सकते हैं।
2: पौधे हरे भरे होते हैं।
0: हाँ, पेड़ पौधों में हरियाली होती है। क्या आपको पता है कि उनमें यह हरियाली कैसे आती है? उनमें यह हरियाली क्लोरोफिल से आती है। क्लोरोफिल हरा होता है, इसलिए वनस्पतियां भी हरी होती हैं।
4: दीदी, यह क्लोरोफिल क्या होता है?
0: यह एक हरी हरी सी चीज है जो कि पेड़ पौधों के खास किस्म के सेल में होती है। उसी की हरियाली से पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। बच्चों, पौधों और प्राणी में वैसे तो बहुत भेद हैं। एक चीज यह भी है कि पौधों के जो सेल होते हैं उनके बीच बीच में दीवार होती है। ये चीजें एक तरह की कड़ी चीज की बनी होती हैं जिसे सेलुलोज कहते हैं। प्राणियों में यह सेलुलोज नहीं पाई जाती।
3: पौधे और प्राणी दोनों में प्राण है, लेकिन दीदी, इस धरती पर पहले पौधे आए या हम सभी प्राणी?
0: बच्चों, प्राणों की दुनिया में वनस्पतियों का आना हुआ पहले। हम सब प्राणी तो वनस्पतियों के सहारे ही जिंदा हैं और बढ़ रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि पेड़ पौधे या वनस्पतियां ही हमेशा प्राणियों की खुराक जुटाती हैं। उनकी दुनिया तो मानो एक बहुत बड़ी अतिथिशाला है। जितने प्रकार के जीवन हैं,

0: जितने मनुष्य हैं सब उन्हीं के मेहमान हैं। मेहमान भी दो चार दिन के नहीं, हमेशा के।
1: ये पौधे ये खुराक जुटाते कैसे हैं?
0: आइए बच्चों, इस चीज को हम विस्तार से समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए भोजन में पांच चीजों का होना जरूरी है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, नमक और पानी। प्रोटीन शरीर की घटती रहने वाली ताकत को पूरा करता है और शरीर को तंदुरुस्त रखता है। हमारे शरीर के सेलों में जो प्रोटोप्लाज्म है वह प्रोटीन से ही बना है। शरीर का सेल इसी की बदौलत सही सलामत रहता है। कार्बोहाइड्रेट कोयले की तरह शरीर को ताप देता है। कोयले के जलने से जो गर्मी पैदा होती है, इंजन उसी से चलते हैं। ठीक इसी तरह कार्बोहाइड्रेट के जलने से जो गर्मी पैदा होती है, उसी से हमारे शरीर का इंजन चलता है। यह प्रोटीन, यह कार्बोहाइड्रेट या और जो इस तरह के पदार्थ हैं, सभी मूल पदार्थों की मिलावट से बनते हैं। उदाहरण के तौर पर यह कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिलावट से बनता है। ऐसी ही मिलावटों से बनता है प्रोटीन। प्रोटीन की खास चीज है नाइट्रोजन। और बच्चों, ये सारी ही चीजें धरती के अंदर प्रकृति के खजाने में भरी पड़ी हैं, किंतु सब की सब अपने असली और कच्चे रूप में हैं। वे जैसी हैं उसी रूप में उन्हें खाने से तंदुरुस्ती नहीं बन सकती। उन्हें बिल्कुल अलग ढंग से तोड़ फोड़ कर काम के लायक बना लेना पड़ता है। लेकिन उन्हें काम के लायक बनाने की जो बात है, वो प्राणियों के वश की नहीं। यह अनूठा गुण तो वनस्पतियों में ही होता है। सूरज की सुनहरी किरणें जैसे ही पौधों के हरे पत्तों को छू लेती हैं, वैसे ही कच्चे माल प्राणियों के काम के बनने लगते हैं। उनसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, यह सब तैयार होने लगता है। सूरज की रोशनी में जो यह अनोखा काम होता है, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी रोशनी के सहारे रचना।
2: लेकिन दीदी, ऐसा प्राणियों के बजाय पेड़ पौधे ही क्यों कर सकते हैं?
0: क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल वाला सेल है, जो कि प्राणियों के पास नहीं होता।
1: दीदी, पेड़ पौधे अपने किचन में ये सब बनाते हैं?
0: पेड़ पौधों को ये सब बनाने के लिए मात्र दो चीजों, हवा और पानी की जरूरत पड़ती है। पानी तो मिट्टी के अंदर ही है। उस पानी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, लोहा, कैल्शियम जैसी बहुत सी चीजें मिली हुई रहती हैं। पेड़ पौधे मिट्टी के अंदर दूर दूर तक अपनी सैकड़ों जड़ें फैलाकर उस पानी को खींचते हैं, फिर अपने ऊपरी भाग में उस पोषण को पहुंचाते हैं। अब रही हवा की बात, हमारे शरीर में रोए के जैसे हजारों छेद हैं। पौधों के पत्तों के नीचे नीचे वैसे ही छोटे छोटे छेद हैं। हवा इन्हीं में से आती जाती है। लेकिन केवल सामान जुट जाने से ही तो भोजन नहीं पक जाता। चूल्हा जलाने के लिए आग तो चाहिए ही। सूरज से आने वाली रोशनी में आग है, पर उससे जलाया कैसे जाए? चूल्हे में सूरज की रोशनी से आग जलाने का काम है क्लोरोफिल का। वह किरणों से आंच जला लेता है। फिर क्या होता है? उस भट्टी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन टूट टूट कर प्रोटीन, चर्बी, कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। इस तरह पेड़ पौधों की रसोई तैयार होती है और वह खाना उनकी नसों के रास्ते सारे शरीर में फैल जाता है। ऐसे ही वे जीते हैं, बढ़ते हैं और फैलते हैं। उसी खाने से पेड़ पौधों में फूल, फल, बीज लगते हैं, जिन्हें खाकर दूसरे प्राणी जीवित रहते हैं।
3: अगर पेड़ पौधों की दुनिया ना रहती तो प्राणी जगत भूखे मर जाते।
0: भूखों ही नहीं, दम घुटकर मरता। अब आप सोचेंगे कि प्राणियों का दम क्यों घुटेगा भला? लेकिन दम घुटेगा।

0: अगर हवा में ऑक्सीजन न हो तो कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। हवा के साथ साथ जीव सांस में ऑक्सीजन खींचता है और सांस के रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जीवों के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है। आदमी और दूसरे प्राणी भी सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते रहते हैं। जहाँ आग जलती है, वहाँ ऑक्सीजन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। आग से दुर्घटना होने पर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और दम घुटने लगता है। इस तरह बच्चों, ऑक्सीजन सचमुच बहुत कीमती है, मगर हवा में उसकी मौजूदगी बहुत कम होती है, 5 हिस्से में लगभग 1 हिस्सा।
1: दीदी, अगर ऐसा है तो हजारों हजार साल में उसे खत्म हो जाना चाहिए था, और उसकी कमी से पेड़ पौधे तथा प्राणियों की दुनिया मिट जानी चाहिए थी। फिर भी ऐसा क्यों नहीं हुआ?
0: ऐसा नहीं हो सका इन पेड़ पौधों की कृपा से। सूरज की रोशनी से पत्तों पर जब फोटोसिंथेसिस का सिलसिला चलता रहता है, तब पौधे हवा के साथ जितना ऑक्सीजन खींचते हैं, वह सारा का सारा उनके काम नहीं आता। उसका ज्यादा हिस्सा वह श्वास छोड़ते हुए निकाल देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि प्राणी रात दिन हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा करते हैं और पेड़ पौधे दिन भर छोड़ते रहते हैं ऑक्सीजन। इस कारण हवा में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाती, जीवों का काम चलता रहता है। इस तरह बच्चों, पेड़ पौधे हमारी हर तरह से मदद करते हैं। हमारा भोजन उन्हीं से चलता है, हमारा जीवन उन्हीं की दया से टिका है। इसलिए अगर हम पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, नए नए पौधे लगाते हैं, तभी हम सबकी रक्षा हो सकेगी, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, है ना बच्चों? अच्छी जानकारी के साथ ही लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ संदेश।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कार्यक्रम के इस भाग में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, यह तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करने में मेहनत और उसे करने की हिम्मत होने पर ही आप उस काम को करने में सफल हो पाते हैं। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। बच्चों, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनके घर के आगे एक बगीचा था जिसमें लगे पौधों की वे देखभाल करती रहती थी। उनके साथ उनका एक पोता भी रहता था। एक समय की बात है कि वह बूढ़ी औरत काफ़ी बीमार हो गई, यहाँ तक कि उन्हें चलने में भी कठिनाई होने लगी। ऐसे में उन्हें अपने बगीचे में लगे पौधों की चिंता सताने लगी कि इनकी देखभाल कैसे की जाए। मन में विचार करके उन्होंने अपने पोते को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम मेरे स्वस्थ होने तक बगीचे में लगे पौधों का ख्याल रख सकते हो? पोते ने दादी की बात मानते हुए कहा, हाँ दादी, मैं आपके लगाए पेड़ पौधों का अच्छी तरह ख्याल रखूँगा। कुछ समय बाद दादी स्वस्थ हो गई। स्वस्थ होने के बाद वे जब बगीचे में गईं तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर

0: पौधे सूख चुके हैं। उन्होंने अपनी पोती को बुलाकर पूछा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे पौधों का ख्याल रखोगे, लेकिन ये सब तो सूख गए हैं। पोते ने मायूस होते हुए कहा, मैं रोज इनकी देखभाल करता था दादी, रोज गीले कपड़े से इनकी पत्तियां पोंछता था और फिर रोटी के टुकड़े इनके सामने रख देता था। इतनी देखभाल करने के बाद भी ये सूख गए। दादी ने कहा, बेटा, पेड़ पौधे रोटी नहीं खाते, इनकी जड़ें धरती से अपना खाना अपने आप ले लेती हैं। बस हमें तो इनकी जड़ों में पानी डालना होता है। यह सुनकर उस छोटे लड़के ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, दादी, मनुष्य की जड़ें कहाँ होती हैं? पोते के सर पर हाथ फेरते हुए दादी ने कहा, मनुष्य की जड़ें उसके साहस, हिम्मत और धैर्य में होती है। इसलिए हमें खुद को मजबूत बनाना होगा। हिम्मत से किसी भी मुश्किल परिस्थिति से हम बाहर निकल सकते हैं। बच्चों, साहस, हिम्मत और धैर्य इंसान के अंदर ऐसी शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। आइए सुनाती हूँ आपको इसी पर आधारित एक कहानी। सुनना चाहेंगे आप कहानी?
1: जी।
0: बच्चों, एक था हरा भरा सुंदर सा जंगल। उसमें रहती थी एक बकरी और एक था उसका मेमना। दोनों जंगल में घास चर रहे थे। चरते चरते बकरी को प्यास लगी, मेमने को भी प्यास लगी। बकरी बोली, चलो पानी पी आए। मेमने ने भी कहा, हाँ माँ, चलो पानी पी आए। पानी पीने के लिए बकरी नदी की ओर चल दी, पीछे पीछे मेमना भी चला, माँ के साथ कदम से कदम मिलाता। दोनों चले, बोलते बतियाते, गाते गुनगुनाते, खेल खेल में कदम बढ़ाते। टबक टबक, टबक टबक, बातों बातों में बकरी ने मेमने को समझाया, साहस से काम लो तो संकट टल जाता है, धैर्य बना रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता निकल ही आता है। माँ की सीख मेमने ने गांठ बांध ली। दोनों नदी तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर बकरी ने नदी को प्रणाम किया, जल देवता को हाथ जोड़े। मेमने ने भी नदी को प्रणाम किया, जल देवता को हाथ जोड़े। नदी ने दोनों का स्वागत कर उन्हें चेताया, भेड़िया बस आने ही वाला है, पानी पीकर फौरन घर की राह लो। भेड़िया बुरा है, वो हम जैसे छोटे जीवों पर रौब डालता है, उन्हें मारकर खा जाता है, वह घमंडी भी है, तुम उसे अपने पास आने ही क्यों देती हो? पानी पीने से मना क्यों नहीं कर देती? मेमने ने नदी से कहा। नदी मुस्कुराई, फिर नन्हे मेमने को प्यार से समझाया, मैं जानती हूँ कि भेड़िया बुरा है, अपने से कमजोर जीवों को सताता है, उसकी एक भी आदत मुझे पसंद नहीं, पर मैं क्या करूं? जब भी वह मेरे पास आता है, प्यासा होता है, प्यास बुझाना मेरा काम है, मैं उसे मना नहीं कर सकती। बकरी को बहुत जोर से प्यास लगी थी, मेमने को भी बहुत जोर से प्यास लगी थी। दोनों नदी पर झुके, नदी का पानी शीतल था, साथ में मीठा भी। बकरी ने खूब पानी पिया, मेमने ने भी खूब पानी पिया। पानी पीकर बकरी ने डकार ली, पानी पीकर मेमने को भी डकार आई। डकार से पेट हल्का हुआ तो दोनों फिर नदी पर झुक गए, पानी पीने लगे। नदी उनसे कुछ कहना चाहती थी, मगर दोनों को पानी पीते देख चुप रही। बकरी ने डट कर पानी पिया, मेमने ने भी डटकर पानी पिया। पानी पीकर बकरी मुड़ी, तभी उसे जोर का झटका लगा। लाल लाल आंखें, राक्षसी डिलडोल, डब्बर झब्बर बालों वाला भेड़िया सामने था। उसके शरीर का रक्त जम सा गया। मेमना भी भेड़िये को देखकर घबराया, थोड़ी

देर तक दोनों को कुछ न सूझा। अरे वाह, आज तो शीतल जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी तैयार है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ मिल गए, बड़े जोर की भूख लगी है। अब मैं पहले तुम दोनों को खाऊंगा, फिर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा, भेड़िया बोला। तब तक बकरी संभाल चुकी थी, मेमना भी खुद को संभाल चुका था। मेमना बोला, छी छी, कितने गंदे हो तुम, मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया। उसकी फटकार सुनकर भेड़िया इधर उधर झांकने लगा। इस पर बकरी ने आगे बात बढ़ाते हुए बोला, जाने दे बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री, बड़ों की बड़ी बातें हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं। हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह न धोने की कसम खा रखी हो। क्या बकती है, थोड़ी देर पहले तो मैंने रेत में रगड़कर मुंह साफ किया है, भेड़िया गुर्राया। झूठे कहीं के, मुंह धोया होता तो क्या ऐसे ही दिखते, तनिक नदी में झांक कर देखो, असलियत मालूम पड़ जाएगी, हिम्मत बटोरकर मेमने ने कहा। भेड़िया सोचने लगा, बकरी बड़ी है, उसका भरोसा नहीं, यह नन्हा मेमना भला क्यों झूठ बोलेगा। रेत में रगड़ा था, हो सकता है वहीं पर गंदी मिट्टी से मुंह सन गया हो, ऐसे में इन्हें खाऊंगा तो गंदगी पेट में जाएगी, ताजे गर्म मांस का मजा किरकिरा हो जाएगा, फिर नदी में झांक कर देख लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। यह तो संभव नहीं है कि मैं पानी में झांकूं और ये दोनों भाग जाएं। उह, भाग कर जाएंगे भी कहाँ, जब मैं चीते को दौड़ में पछाड़ सकता हूँ तो ये दोनों क्या चीज हैं, एक झपट्टे में पकड़ लूंगा। देखो मैं मुंह धोने जा रहा हूँ, भागने की कोशिश मत करना वरना मार डालूंगा, भेड़िये ने धमकी देते हुए बोला। बकरी कांप गई, उसने मेमने की ओर प्यार से देखा, फिर हिम्मत से काम ले आवाज में मिश्री घोलते हुए बोली, महाराज हमारा तो जन्म ही आप जैसों की भूख मिटाने के लिए हुआ है, यह छोटा सा शरीर जंगल के महामंत्री के काम आ सके, हमारे लिए इससे बड़ी बात भला क्या हो सकती है। आप आराम से मुंह धो लें, यहाँ से 20 कदम आगे पानी एकदम साफ है, विश्वास न हो तो हम दोनों आपके साथ साथ चलते हैं। भेड़िया खुश, रोज दो शिकार के लिए मारा मारी करनी पड़ती है, आज का दिन बड़ा शुभ है, जो शिकार खुद मेरे सामने तैयार है। मन ही मन सपने सजाता हुआ भेड़िया उसी ओर बढ़ गया जिधर बकरी ने इशारा किया था। वहां पर था गहरा पानी, किनारे थे बेहद चिकने। जैसे ही भेड़िया मुंह देखने के लिए नदी के किनारे पर झुका तो पीछे से बकरी ने अपनी पूरी ताकत समेटकर धक्का दिया, भारी भरकम शरीर को भेड़िया संभाल न पाया और धप से नदी में जा गिरा। उसके गिरते ही बकरी ने वापस जंगल की ओर दौड़ना शुरू कर दिया, पीछे पीछे मेमना भी दौड़ा। दोनों नदी से काफी दूर निकल गए, सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर बकरी रुकी, मेमना भी रुका। बकरी ने प्यार से मेमने को देखा, मेमना ने अपनी माँ की आंखों में झांका, दोनों के चेहरे पर उल्लास था और था आत्मविश्वास। बकरी बोली, कुछ समझे? हाँ समझा। क्या, साहस से काम लो तो खतरा टल जाता है, बकरी ने फिर पूछा, और यदि धैर्य बना रहे तो विपत्ति से बचने का रास्ता निकल ही आता है। शाबाश, बकरी बोली। इसी के साथ वह हंसने लगी, माँ के साथ साथ मेमना भी हंसने लगा। इस तरह बच्चों, साहस और धैर्य से बकरी और मेमना अपने से ताकतवर जानवर भेड़िया के चुंगल से बाहर निकल आए। बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि कैसी भी विपत्ति हो, कैसी भी समस्या हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य रखकर उससे बाहर निकलने का उपाय सोचना चाहिए। और बच्चों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम अपने श्रोता

0: बच्चों को कार्यक्रम का पता बता दें। तो बच्चों, कार्यक्रम संबंधी अपने विचारों को, अपनी बातों को हम तक पहुंचाने के लिए नोट कर ले कार्यक्रम का पता। कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम अंकुर, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। इसी पते पर भेजे गए आपके पत्रों का रहेगा हमें बहुत ही इंतजार। दीजिए अपनी वंदना दीदी को इजाजत। जय हिंद बच्चों।
1: जय

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे बाल श्रोताओं का कार्यक्रम अंकुर एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब सुनिए भोजपुरी एल्बम लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी।

कार्यक्रम लोक माधुरी में हमने आपको सुनवाया करी हम का बहाना एल्बम का गीत भरत शर्मा व्यास की आवाज़ में, और ये गीत आपने सुना मुन्ना सिंह की आवाज़ में निमिया के डाढ़ मैया देवी एल्बम का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी। अब सुनिए भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसधार। काला टीका एल्बम का गीत आपको सुनवा रहे हैं धनंजय धड़कन और शिल्पी राज की आवाज में। राहुल रसिक गीतकार हैं, संगीतकार हैं शिव मोहन सिंह।

हमेशा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं तू नज़र में एल्बम का गीत, सीतू सिंह की आवाज़ में साजन सरहदी का गीत है और संगीत है मधुकर आनंद का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसधार, एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रिले।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

आइए आज सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र, वाचन स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। श्री चरण कमलेशु, आज हमारे विवाह को 15 बरस हो गए, लेकिन अभी तक मैंने कभी तुमको चिट्ठी न लिखी, सदा तुम्हारे पास ही बनी रही। न जाने कितनी बातें कहती सुनती रही, पर चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी नहीं मिली। आज मैं श्री क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ, तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंघे के साथ शंख का होता है, वो तुम्हारे तन मन से चिपक गया है, इसलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी, उन्होंने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तुम्हारे घर की मछली बहू हूँ मैं, पर आज 15 बरस बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूँ कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक संबंध और भी है, इसलिए आज साहस करके ये चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे तुम अपने घर की मझली बहू की ही चिट्ठी मत समझना। तुम लोगों के साथ मेरे संबंध की बात जिन्होंने मेरे भाग्य में लिखी थी, उन्हें छोड़कर जब इस संभावना का और किसी को पता न था, उसी शैशव काल में मैं और मेरा भाई

साथ ही सन्निपात के ज्वर से पीड़ित हुए थे। भाई तो मारा गया पर मैं बची रही। मोहल्ले की औरतें कहने लगीं, अरे मृणाल लड़की है ना, इसीलिए बच गई। लड़का होती तो क्या भला बच सकती थी। चोरी की कला में यमराज भी निपुण हैं। उनकी नजर कीमती चीज पर ही पड़ती है। मेरे भाग्य में मौत नहीं है, यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं ये चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। एक दिन जब दूर के रिश्ते में तुम्हारे मामा तुम्हारे मित्र नीरद को साथ लेकर कन्या देखने आए थे, तब मेरी आयु 12 वर्ष की थी। दुर्गम गांव में मेरा घर था, जहां दिन में भी सियार बोलते रहे। स्टेशन से 7 कोस तक छकड़ा गाड़ी में चलने के बाद बाकी 3 मील का कच्चा रास्ता पालकी में बैठकर पार करने के बाद हमारे गांव में पहुंचा जा सकता था। उस दिन तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई, जिस पर हमारे पूर्वी बंगाल का भोजन, मामा उस भोजन की हंसी उड़ाना आज भी नहीं भूलते। तुम्हारी माँ की एक ही जिद थी कि बड़ी बहू के रूप की कमी को मझली बहू के द्वारा पूरी करें, नहीं तो भला इतना कष्ट करके तुम लोग हमारे गांव क्यों आते। पीलिया, यकृत, उदरशूल और दुल्हन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती, वे स्वयं ही आकर घेर लेते हैं, छुड़ाए नहीं छूटते। पिता की छाती धक धक करने लगी, माँ दुर्गा का नाम जपने लगी। शहर के देवता को गांव का पुजारी क्या देकर संतुष्ट करे। बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मृत्यु नहीं होता। देखने आया हुआ व्यक्ति उसका जो मूल्य दे वही उसका मूल्य होता है। इसीलिए तो 1000 रूप गुण होने पर भी लड़कियों का संकोच किसी भी तरह से दूर नहीं होता। सारे मोहल्ले का ये आतंक मेरी छाती पर पत्थर की तरह जमकर बैठ गया। आकाश का सारा उजाला और संसार की समस्त शक्ति उस दिन मानो इस 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की को 2 परीक्षकों की 2 जोड़ी आंखों के सामने कसकर पकड़कर रखने के लिए निगरानी कर रही थी। मुझे कहीं छिपने की जगह न मिली। अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कपाती हुई शहनाई बज उठी, मैं तुम लोगों के यहाँ आ पहुंची। मेरे सारे ऐबों का व्यवरावार हिसाब लगाकर गृहिणियों को ये स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदरी जरूर हूँ। ये बात सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा भारी हो गया, लेकिन सोचती हूँ मुझे रूप की जरूरत ही क्या थी। रूप नामक वस्तु को अगर किसी ब्राह्मण ने गंगा मिट्टी से गढ़ा हो तो उसका आदर हो, लेकिन उसे तो विधाता ने न केवल अपने आनंद से निर्मित किया है, इसलिए तुम्हारे धर्म के संसार में उसका कोई मूल्य नहीं। मैं रूपवती हूँ, इस बात को भूलने में तुम्हें बहुत दिन लग गए, लेकिन मुझमें बुद्धि भी है, ये बात तुम लोगों को पग पग पर याद दिलानी पड़ती। मेरी ये बुद्धि इतनी प्रकृत है कि तुम लोगों की घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी वो आज भी टिकी हुई है। मेरी इस बुद्धि से माँ बड़ी चिंतित रहती थी। नारी के लिए ये तो एक बला ही है, बाधाओं को मानकर चलना जिसका काम है, वो यदि बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खा खा कर उसका सिर फूटेगा ही। लेकिन तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? तुम लोगों के घर की बहू को जितनी बुद्धि की जरूरत है, विधाता ने लापरवाही में मुझे उससे बहुत ज्यादा बुद्धि दे डाली है। अब मैं उससे लौटाऊं भी तो किसको? तुम लोग मुझे पुरखिन कहकर दिन रात गाली देते रहे। अक्षम्य को कड़ी बात कहने से ही सांत्वना मिलती है, इसीलिए मैंने उसको क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम्हारी घर गृहस्थी से बाहर थी, जिसे तुम में से कोई नहीं जानता। मैं तुम सबसे छिपा कर कविता लिखा करती थी। वो भले ही कूड़ा करकट क्यों न हो, उस पर तुम्हारे अंतःपुर की दीवार न उठ सकी। वहीं मुझे मृत्यु मिलती थी, वहीं पर मैं रो पाती थी। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। मेरे भीतर तुम लोगों की मछली बहू के अतिरिक्त जो कुछ था उसे तुम लोगों ने कभी पसंद ही नहीं किया, क्योंकि उसे तुम लोग पहचान भी नहीं पाए। मैं कवि हूँ, ये बात 15 बरस में भी तुम लोगों की पकड़ में नहीं आई। तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृतियों में मेरे मन में जो सबसे ज्यादा जगती रहती है

वो है तुम लोगों की गौशाला। अंतापुर को जाने वाले जीने के बगल के कोठे में तुम लोगों की गौवें रहती हैं। सामने के आंगन को छोड़कर उनके हिलने डुलने के लिए और कोई जगह नहीं थी। आंगन के कोने में गायों को भूसा देने के लिए काठ की नींद थी। सवेरे नौकर तरह तरह के काम करते रहते, इसलिए भूखी गायें नांद के किनारों को चाट चाट कर चबा चबा कर खुरच देती और मेरा मन इसे देखकर रोने लगता था। और मैं गांव गवई की बेटी जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर में आई उस दिन उस बड़े शहर के बीच मुझे वे दो गायें और तीन बछड़े चिरपरिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जितने दिन मैं रही बहू रही, खुद न खाकर छिपा छिपा कर मैं उन्हें खिलाती रही। जब बड़ी हुई तब गौओं के प्रति मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले लोग मेरे गोत्र के बारे में संदेह प्रकट करते रहे। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय उसने साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा था। अगर वो बच्ची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ महान है, जो कुछ सत्य है, वो सब मुझे ला देती। तब मैं मझली बहू से एकदम माँ बन जाती। गृहस्थी में बंधी रहने पर भी माँ विश्व भर की माँ होती है। पर मुझे माँ होने की वेदना ही मिली, सिर्फ वेदना। मातृत्व की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। मुझे याद है अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर का भीतरी भाग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था और जच्चा घर देखकर नाराज होकर उसने डांट फटकार भी लगाई थी। सदर में तो तुम लोगों का छोटा सा बाग है, कमरे में भी साज श्रृंगार की कोई कमी नहीं, पर भीतर का भाग मानो पश्मीने के काम की उल्टी परत हो। वहां न कोई लज्जा है, न सौंदर्य, न श्रृंगार। उजाला वहां टिमटिमाता रहता है, हवा चोर की भांति प्रवेश करती है, आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम ही नहीं लेता। फर्श और दीवार पर कालिमा अक्षय बनकर विराजती है। लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी, उसने सोचा था कि शायद इससे हमको रात दिन दुख होता होगा। बात बिल्कुल उल्टी है। अनादर नाम की चीज राख की तरह होती है, वो शायद भीतर ही भीतर आग को बनाए रहती है लेकिन ऊपर से उसके ताप को प्रकट नहीं होने देती। जब आत्मसम्मान घट जाता है तब अनादर में अन्याय भी नहीं दिखाई देता, इसीलिए उसकी पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में ही लज्जा पाती है। इसीलिए मैं कहती हूं अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है कि नारी दुख को पाना ही होगा तो फिर जहां तक संभव हो उसे अनादर में रखना ही ठीक है। हाँ, आदर से दुख की व्यथा और बढ़ जाती है। तुम मुझे चाहे जैसे रखते रहे, मुझे दुख है। ये बात कभी मेरे ख्याल में ही नहीं आई। घर में जब सिर पर मौत मंडराने लगी थी तब भी मुझे कोई डर नहीं लगा। हमारा जीवन ही क्या है कि मौत से डरना पड़े। जिनके प्राणों को आदर और यत्न से कसकर बांध लिया गया हो मरने में उन्हीं को कष्ट होता है। उस दिन अगर यमराज मुझे घसीटने लगते तो मैं उसी तरह उखड़ आती जिस तरह पोली जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत खिंच आती है। बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है लेकिन इस तरह मरने में कौन सी बहादुरी है भला। हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते लज्जा आती है।

मेरी बेटी संध्या तारा की तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई। मैं फिर से अपने दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिर तक जैसे तैसे कट जाता। आज तुम्हें ये चिट्ठी लिखने की जरूरत न पड़ती। लेकिन लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ा कर ले जाती है और पक्के दालान में पीपल का अंकुर फूट उठता है और होते होते उसी से लकड़ी पत्थर की छाती विदीर्ण होने लग जाती है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कण न जाने कहां से उड़कर आ पड़ा। तभी से दरार शुरू हो गई।

जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार के मारे एक दिन हमारे घर में दीदी के पास आश्रय लिया था, तब तुम लोगों ने सोचा था ये कहाँ की बला आ गई है ना? देखा, तुम लोग सब मन ही मन खींच उठे हो, इसलिए ना कि उस निराश्रिता लड़की को घेर कर मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांध कर खड़ा हो गया हो। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। यहाँ ये अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है? हाँ, बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है, तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी हो। उन्हें इतना साहस न हुआ कि वे अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके। वे पतिव्रता थी, पतिव्रता। उनका ये संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा बड़ी जेठानी ने खास तौर से सबको दिखा दिखा कर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की और उसे घर में इस तरह नौकरानियों के से काम सौंप दिए कि मुझे दुख ही नहीं लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती थी कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है। ढेरों काम करती है, फिर भी खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। मेरी बड़ी जेठानी के पितृवंश में कुल के अलावा और कोई बड़ी चीज न थी, न रूप था न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वे सदा यही सोचती रहीं कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति बड़ा भारी अपराध था, इसीलिए वे सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखकर अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगह में सिमट कर रहती थीं। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना बेहद छोटा नहीं बना पाती। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और की खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात के तुम्हें भी बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई। जीजी कहने लगी, मझली बहू गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर देगी। वे सबसे मेरी इस ढंग से शिकायत करती फिरती थीं, मानो मैंने कोई अपराध कर दिया हो। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वे मन ही मन सोचती थीं कि चलो जान बची, अब अपराध का बोझ मेरे सिर पर पड़ने लगा। वे अपनी बहन के प्रति खुद जो स्नेह नहीं दिखा पाती थीं, वही मेरे द्वारा प्रकट करके उनका मन हल्का हो जाता। तुम्हें तो मालूम है, देखने में वो इतनी कुरूप थी कि अगर वो फर्श पर गिरकर अपना सिर

छोड़ लेती तो भी लोगों को घर के फर्श की ही चिंता होती। और यही कारण है कि माता पिता के न होने पर ऐसा कोई न था जो उसकी विवाह की सोचता। और ऐसे लोग भी भला कितने थे जिनके प्राणों में इतना बल हो कि उससे ब्याह कर सके। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई, मानो संसार में उसको जन्म लेने का कोई अधिकार ही न था। इसीलिए वो हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती। उसके पिता के यहाँ उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें वो फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। जो भी हो, वे लोग थे खूब। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी छाती धक धक करने लगी। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, ये बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई। लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो नहीं था, इसलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। मेरे पास दो चार दिन रहने पर ही उसके शरीर में न जाने लाल लाल क्या निकल आया। शायद घमौरी रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा। तुमने कहा शीतला, क्यों न हो, वो बिंदु थी ना। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया। दो एक दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दो एक दिन तक धीरज किसको होता। बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से ही मरी जा रही थी। मैंने कहा शीतला है तो है, इसमें क्या, मैं उसे अपने जच्चा घर में लिवा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़क कर क्रोध की मूर्ति बनकर गए, यही नहीं, जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशानी दिखाती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर के वे सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा कि इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो उठे। कहने लगे अब तो वाकई शीतला बैठ गई है। क्यों? क्योंकि वो बिंदु थी ना। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को वो एकदम अजर अमर कर देता है, बीमारी आने का नाम नहीं लेती। मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, इसीलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया। हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं। बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा, तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया। वो मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी नहीं देखी। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की बात याद आती। अब इतने दिनों बाद ये कुरूप लड़की मेरे उस रूप के पीछे पड़ गई। दिन रात मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कहती जी जी तुम्हारा ये मुंह मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केश बांध लेती, उस दिन वो बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी मुझे साज श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन बिंदु मुझे तंग कर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती। वो लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी ना थी। उत्तर की ओर की दीवार में नाली के किनारे न जाने कैसे एक गाब का पौधा निकला। जिस दिन देखती कि उस गाब के पौधे में नई लाल लाल कोपले निकल आई हैं, उसी दिन जान पड़ता कि धरती पर बसंत आ गया है।
और जिस दिन मेरी घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनाहत लड़की के मन का ओर छोर किसी तरह

रंग उठा उस दिन मैंने जाना कि हृदय के जगत में भी बसंत की हवा बहती है। बिंदु के स्नेह के दुसावेग ने मुझे अधीर कर डाला था। मैं मानती हूं कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो जीवन में मैं पहले कभी नहीं देख पाती थी। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को जो इतना लाड़ प्यार करती थी, ये बात तुम लोगों को बड़ी ज्यादती लगी। इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे से बाजूबंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा न आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदु का हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलनों में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही ये संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी गई स्त्री गुप्तचर है। इसका और कोई प्रमाण न था। प्रमाण बस इतना ही था कि वो बिंदु थी। तुम लोगों के घर की दासियां उनका कोई भी काम करने से इनकार कर देती थी। उनमें से किसी से अपने काम के लिए कहने में वो लड़की भी संकोच के मारे जड़वत हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर से अलग से एक दासी रख ली। ये बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए मैं जो कपड़े देती थी, उन्हें देखकर तुम इतने क्रुद्ध हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए ही बंद कर दिए। दूसरे ही दिन से मैंने 125 जोड़े की मोटी कोरी मिल की धोती पहनना शुरू कर दिया। और जब मोती की माँ मेरी जूठी थाली उठाने के लिए आई, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद जूठा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नल पर जाकर बर्तन मल लिए। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न न हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता रहा है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है। भीतर ही भीतर इस बात को माने बगैर तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली।

बिंदु का वर ठीक हुआ। बड़ी जेठानी बोली, जान बची, माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती, तुम्ही लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगी थी, बोली थी, जी जी जी जी, मेरा ब्याह क्यों करवा रही हो भला, बोलो। मैंने उसे समझाते बुझाते कहा था, बिंदु डर मत, मैंने सुना है तेरा वर बहुत अच्छा है। बिंदु बोली थी, अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके। लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम भी न लिया। बड़ी जीजी इससे बड़ी निश्चिंत हो गई, लेकिन बिंदु रात दिन रोती रही, चुप होने का नाम ही न लेती थी। उसको क्या कष्ट है ये मैं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए ये बात कहने का साहस नहीं होता था। कहती भी किस बल पर, मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक तो लड़की, उस पर काली, जिसकी यहाँ जा रही है वहाँ उसकी क्या दशा होगी। इन बातों की चिंता न करना ही अच्छा था, सोचती तो प्राण कांप उठते। बिंदु ने कहा, जी जी ब्याह के अभी 5 दिन और हैं, इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उसे खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं

0: कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के एक दिन पहले बिंदु ने अपनी जीजी के पास जाकर कहा, जीजी, मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वही करूंगी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, मुझे इस तरह मत धकेलो मुझे। कुछ दिनों से जीजी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे थे, उस दिन भी झरने लगे। लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी तो है। उन्होंने कहा, बिंदु, जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात तो ये थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था, बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे वर के ही घर में हो, उनके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांति नहीं सह सकेंगे, इसलिए चुप रह जाना पड़ा। लेकिन एक बात तुम में से कोई नहीं जानता, जीजी को बताना चाहती थी पर फिर बताई नहीं, नहीं तो वे डर से मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था, सोचा था जीजी की नज़र में तो जरूर ही पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने जैसे देखकर भी नहीं देखा। दुहाई दी धर्म की, इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, जीजी, तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया? मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे जैसी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें कभी नहीं त्याग सकती। 3 दिन बीते, तुम्हारे तालुके के लोगों ने तुम्हें खाने के लिए जो दिया था उसे मैंने तुम्हारी जठराग्नि से बचाकर नीचे वाले कोयले की कोठरी के एक कोने में रख दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिला आती। 2-1 दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा, उसे खिलाने की बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने की ओर ज्यादा था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा, बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। मुझे देखते ही वो मेरे पैर पकड़कर चुपचाप रोने लगी, बिंदु का पति पागल था। सच कह रही है बिंदु, बोलना।
1: दीदी, तुम्हारे सामने क्या मैं इतना झूठ बोल सकती हूँ? दीदी, वो पागल है, वो पागल है। इस विवाह में ससुर की सहमति नहीं थी, लेकिन मेरी सास से यमराज की तरह वे सब डरते थे। ब्याह के पहले ही वे काशी चल दिए थे। सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर लिया।
0: मैं वहीं कोयले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री पर स्त्री को दया नहीं आती, कहती है कोई लड़की थोड़ी ही है, लड़का पागल है तो हो, है तो पुरुष। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता कि उसे कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता। ब्याह की रात वो ठीक था, लेकिन रात में जगते रहने के कारण और इसी तरह के और झंझटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी थी, अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। न जाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु रानी सस्मणि हो। नौकर ने हो न हो चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी के खाने के लिए भात दिया हो, इसीलिए उसे क्रोध आ गया था। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी।

तीसरी रात को जब उसकी सास ने उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी, वो भी पागल ही थी लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था लेकिन डर के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया था। पति जब सो गए तब काफी रात बीतने पर वो किसी तरह चतुराई से भाग कर चली आई। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु, तू जैसे रहती थी वैसे ही मेरे पास रह, देखूं तुझे कौन ले जाता है यहां से। तुम लोगों ने कहा, बिंदु झूठ बोलती है। मैंने कहा, वो कभी झूठ नहीं बोलती। फिर तुम लोगों ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम। फिर मैंने कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूं बिंदु झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने डर दिखाया, अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो आफत में पड़ जाएंगे हम। मैंने कहा, क्या अदालत ये बात नहीं सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल वर के साथ कर दिया गया है। तुमने कहा था, तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे हम? हाँ, हमें ऐसी क्या गरज पड़ी है। जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर करूंगी। तुम लोगों ने फिर कहा था, क्या वकील के घर तक दौड़ोगी? हाँ, इस बात का क्या जवाब होता? सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकती थी मैं। उधर बिंदु के ससुराल से उसके जेठ ने आकर बाहर बड़ा हंगामा खड़ा किया। कहने लगा, थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो, उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े, ये बात मैं किसी भी तरह से मान नहीं सकती थी। मैंने हिम्मत करके कहा, करने दो थाने में रिपोर्ट, देखती हूं मैं। इतना कहकर मैंने सोचा कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजा तो बिंदु का कहीं पता नहीं। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया था। वो समझ गई थी कि अगर वो इस घर में रही तो बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी मैं। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया। उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था ना, संसार में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ नहीं है, उनकी तुलना में तो उनका लड़का सोने का चांद था। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा, जिसका भाग्य खराब हो उसके लिए रोने से क्या फायदा भला। संसार भर में कायरता के इस सबसे अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष मन को अभी तनिक भी संकोच नहीं हुआ, इसलिए मानव जन्म पाकर भी तुम लोग बिंदु के व्यवहार पर क्रोध कर रहे थे, उसे तुम्हारा सिर नहीं झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत न था। मैं तो गांव की लड़की थी जिस पर तुम लोगों के घर आ पड़ी, फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी। धर्म संबंधी तुम लोगों की ये चर्चा मुझे किसी भी प्रकार सहन नहीं हुई। मैं निश्चयपूर्वक जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाए, वो अब हमारे घर लौट कर नहीं आएगी, लेकिन मैं तो उसे ब्याह के एक दिन पहले ये आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते उसे नहीं छोड़ूंगी मैं।

मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ता था। तुम तो जानते ही हो, तरह तरह से वॉलेंटियरी करना, प्लेग वाले मोहल्लों में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ आ जाने की खबर सुनकर दौड़ पड़ना, इन सब बातों में उसका इतना उत्साह था कि एफए की परीक्षा में लगातार 2 बार फेल होने पर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद, जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम

0: तुझे ही करना पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं होगा, वो भेजे भी तो मुझे मिल नहीं सकेगी। शरद के साथ बातचीत कर रही थी तभी तुमने मेरे कमरे में आकर कहा, तुम फिर ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो? मैंने कहा, वही जो शुरू से करती आई हूँ जब से तुम्हारे घर आई हूँ। लेकिन नहीं, वो तो तुम्ही लोगों की कीर्ति है ना। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहीं छिपा रखा है क्या तुमने? मैंने कहा था, बिंदु अगर आती तो मैं ज़रूर छिपा कर रख लेती, लेकिन वो अब नहीं आएगी। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहाँ आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नज़र है, अगर कभी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डालेगा। इसीलिए मैं भैया दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा देती थी, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमसे सुना कि बिंदु फिर भाग गई है, इसीलिए उसका जेठ हमारे घर उसे खोजने आया है। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुप गया। अभागिनी का असह्य कष्ट तो मैं समझ गई, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। शरद पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर उसने मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसी वक्त उसे फिर ससुराल पहुँचा दिया। इसके लिए उन्हें हर जाने का और गाड़ी के किराए का जो दंड भोगना पड़ा, उसकी खार अब भी उनके मन से नहीं गई है। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहाँ आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा, मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति ये श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का भी ध्यान था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था, रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा, जैसे भी हो बुधवार को पूरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा। शरद का चेहरा खिल उठा था। वो बोला, डर की कोई बात नहीं जीजी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पुरी तक चला चलूंगा, इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद, शायद कोई रास्ता नहीं निकला? वो बोला, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने पूछा, क्या उसे राजी नहीं कर पाए? उसने कहा, जी जी अब ज़रूरत भी नहीं है। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर वो आत्महत्या करके मर गई। चलो छुट्टी मिले। बिंदु! गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे, लड़कियों का कपड़ों में आग लगा कर मर जाना तो अब एक फैशन सा हो गया है। तुम लोगों ने कहा, अच्छा नाटक है। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही तनिक भी यश नहीं मिल सका, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी ये नहीं हुआ कि सोच समझकर कुछ ऐसे नए ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। बिंदु!
1: आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर।
0: जीजी कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में जैसे एक सांत्वना थी। कुछ भी सही, जान तो बची, मर गई, यही क्या कम है? अगर बची रहती तो न जाने क्या क्या हो जाता। मैं तीर्थ में आ पहुंची हूं, बिंदु

कि आने की तो जरूरत ही न रही, लेकिन मुझे जरूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं, वो तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारे यहाँ खाने पहनने की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते और मैं अपनी सती साध्वी बड़ी जेठानी की तरह पति देवता को दोष देने की बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती। इसलिए मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण ये नहीं है, लेकिन मैं अब माखन बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौटकर नहीं जाऊंगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूँ। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है ये मैं पा चुकी हूँ। अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। और फिर मैंने ये भी देखा है कि वो लड़की ही क्यों न हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों का चाहे कितना ही जोर क्यों न रहा हो, वो उसका अंत नहीं था। वो अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबाकर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी है। अपनी मृत्यु में वो महान है। वहां बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागलपति की प्रवंचिता पत्नी नहीं है। वहां वो अनंत है। मृत्यु की उस वंशी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन की यमुना के पास बजने लगा तो पहले पहल मानो मेरी छाती में कोई वाण बिंध गया हो। मैंने विधाता से प्रश्न किया, भगवन, इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है वही सबसे अधिक कठिन क्यों है? इस गली में चार दीवारी से घिरे इस निरानंद स्थान में ये जो तुच्छतम बुदबुद है वो इतनी भयंकर बाधा कैसे बन गया? तुम्हारा संसार अपनी षठ नीतियों से क्षुधा पात्र को संभाले कितना ही क्यों ना कोई पुकारे, मैं उस अंतापुर की जरा सी चौखट को क्षण भर के लिए भी पार क्यों नहीं कर सकी? ऐसे संसार में ऐसा जीवन लेकर मुझे इस अत्यंत तुच्छ काठ पत्थर की आड़ में ही तिल तिल कर क्यों मरना होगा भला? क्यों? कितनी तुच्छ है ये मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा, इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंधी हुई बोली, बंधी हुई मार, सब कुछ कितनी तुच्छ है। फिर भी क्या अंत में दीनता के उस नागपाश बंधन की जीत होगी? और तुम्हारे अपने इस आनंद लोक की, इस सृष्टि की हार। लेकिन मृत्यु की बंसी बजने लगी। कहाँ गई राजमिस्त्रियों की बनाई हुई वो दीवार? कहाँ गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधा वो कांटों का घेरा? कौन सा है वो दुख, कौन सा है वो अपमान जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है? ये लो, मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पताका उड़ रही है। अरी मझली बहू, तुझे डरने की अब कोई जरूरत नहीं। मझली बहू के इस तेरे खोल को छिन्न होते एक निमेश भी नहीं लगा। तुम्हारी गली का अब मुझे कोई डर नहीं। आज मेरे सामने नीला समुद्र है, मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल। तुम लोगों की रीति नीति के अंधेरे ने मुझे अब तक ढक के रखा था। बिंदु ने आकर क्षण भर के लिए उस आवरण के छेद में से मुझे देख लिया। वही लड़की, अपने मृत्यु द्वारा सिर से पैर तक मेरा वो आवरण उघाड़ दिया। आज

बाहर आकर देखती हूँ, अपना गौरव रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। मेरा ये अनाहत रूप, जिनकी आंखों को भाया है, वे सुंदर आज संपूर्ण आकाश से मुझे निहार रहे हैं। अब मछली बहू की खैर नहीं, तुम सोच रहे होगे, मैं मरने जा रही हूँ। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मीराबाई भी तो मेरी ही तरह नारी थी, उनकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
1: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
0: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
2: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।
3: जहां पे सवेरा हो बसेरा वही है।
0: 1984 दुनिया।
4: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजा।
0: 1993 फिल्म साहिबा।
5: कैसे जियूंगा मैं।
0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
6: नजरों से कह दो प्यार।
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विद भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर होगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सहायक पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी क्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूल सकेंगे। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
3: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG आज आयोजित की जा रही है।

परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद ये लगातार 3रा महीना होगा जब ओपेक प्लस देश तेल का अधिक उत्पादन करेंगे। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं लेकर यादों की महफिल।

और भई ऐसे गीतों से तो हर किसी को आशिकी हो जाती है ना। बहरहाल यादों की महफिल कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना बरसात फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़, जलाल मलिहाबादी के बोल थे और शंकर जयकिशन की यादगार बड़ी ही प्यारी सी तर्ज। चलिए आपको बता दें कि आज यादों की महफिल कार्यक्रम में गाने बज रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस की फिल्मों से।

सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना हमने आपको सुनवाया आशा भोसले के स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा था और फिल्म थी लाजवंती। चलिए अब यादों की महफिल कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़ें। शकील बदायूनी की रचना है, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वर। क्या कहता है ये गाना, आइए सुनें।

0: मतवाला जिया, आप सुन रहे थे मदर इंडिया फिल्म से ये गीत। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद की तर्ज, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों के युगल स्वर। लता मंगेशकर का गाया एक और गाना आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: तो चलिए इस संदेश के बाद अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत है, हसरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर की आवाज।

लता मंगेशकर की गायकी और अभिनेत्री नरगिस का अभिनय दोनों ही कमाल। आपको बता दें, चोरी चोरी फिल्म का ये गाना आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने। एक और फिल्म अभिनेत्री नरगिस की, इसमें लता मंगेशकर की आवाज़ है। इस गीत में राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन की तर्ज। फिल्म अदालत।

और अब हम बढ़ेंगे अदालत फिल्म के गाने के बाद आह फिल्म के गाने की ओर। आह फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में है, हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला है संगीतकार शंकर जयकिशन ने।

0: आग फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, स्वर शमशाद बेगम का था, बेजाद लखनवी के बोल थे, राम गांगुली का संगीत। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले ये संदेश।
1: आएगी जरूर,
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सलिल चौधरी के संगीत से सजा ये गाना आपने सुना, प्रेम धवन के बोल थे, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर, फिल्म थी जागते रहो।

शैलेंद्र की रचना आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर का स्वर था। फिल्म का नाम रात और दिन। अब आवारा फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत है और आवाज़ लता मंगेशकर की।

शैलेंद्र की रचना आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर का स्वर था। फिल्म का नाम रात और दिन। अब आवारा फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत है और आवाज़ लता मंगेशकर की।

अंदाज फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल नौशाद अली की तर्ज। और अब अगले गाने में भी नौशाद अली की तर्ज है, लेकिन इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने, स्वर शमशाद बेगम और साथियों के, फिल्म का नाम बाबुल। यही है आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अभिनेत्री नरगिस की फिल्मों के गीत।

बाबुल फिल्म का ये गाना था। आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आपने सुने अभिनेत्री नरगिस पर फिल्माए गए फिल्मों के गाने।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी हाजिर होते हैं सुरीला सफर के साथ।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। तो चलिए आज का टेक्स्ट, आज की इबारत आपको बता दी जाए। आज हमने एक टेक्स्ट पोस्ट किया और वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुवन के लिए तरसने लगता है और उसी में छुपा होता है रिमझिम सावन का इंतज़ार, जहाँ कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं। कभी तपती धूप में छांव का एहसास, तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो। तो भाई, इसी में से हमने कुछ शब्द चुने हैं। अब आपको पहचानने हैं वो

शब्द और उनसे जुड़े गीत। देखते हैं हमारी आपकी पसंद कितनी और कहां तक मिलती है। वैसे अभी मैं इस टेक्स्ट को एक बार और पढ़कर आपको बताऊंगी और थोड़ा सा उन शब्दों पर जोर भी दूंगी ताकि आपके लिए और भी सहूलियत हो जाए। आपको बता दें, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शेफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो भाई ये धुन बज गई और एक लिसनर हमारी लिखती हैं कि आज लिसनर्स ये भी नोटिस करेंगे कि न्यू प्रोग्राम में बैकग्राउंड म्यूजिक दिल तो पागल है की जगह कौन सा सुनाई देगा। तो भाई हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि प्रोग्राम नया है लेकिन हमारा अंदाज वही रहेगा। एक साथी ने लिखा है कि हम भी एक सुहाने सफर में हैं और रास्ते से कमेंट कर रहे हैं, प्रकृति के बीच विविध भारती का साथ, मधुर संगीत आनंद ही आनंद है। तो चलिए एक बार उस टेक्स्ट को मैं फिर से पढ़ती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुवन के लिए तरसने लगता है और उसी में छुपा होता है रिमझिम सावन का इंतजार, जहाँ कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं। कभी तपती धूप में छांव का एहसास, तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो। तो चलिए अब आप समझ ही गए होंगे और आज भाई दिल की बातें हो रही हैं तो क्यों ना की जाएं। साथियों जब बात दिल की हो तो आपको कौन सा गाना याद आता है? वैसे जरा ये तो बताइए कि विविध भारती आपके दिल के कितना करीब है।

सुबह ही आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के गाने से। हमारी एक लिसनर ने लिखा है कि आपने बहुत ही खूबसूरत और रूहानी अंदाज में मौसम के बदलते मिजाज और जज्बातों को बयां किया है। गर्मी की तपिश से लेकर सावन की फुहार तक का सफर वाकई किसी प्रेम कहानी से कम नहीं। यूं तो मौसम का हर रंग एक अलग अलग कहानी है और बारिश की हर बूंद किसी की याद का छोटा सा दर्पण, लेकिन तपती गर्मी में छांव जैसी मुलाकातें ही तो जीवन को सचमुच हसीन बनाती हैं। और आज के इन्होंने शब्द दिए हैं, ठंडी हवा, छुपा, रिमझिम, सावन, इंतज़ार, कतरा कतरा, पानी, अधूरी कहानी, मौसम, रंग, मुलाकात, पल, धूप, छांव और मुस्कुराहट। क्या बात है भाई, आपने खुद ही इतना प्यारा टेक्स्ट लिखकर भेज दिया।

हमारे एक साथी लिखते हैं तो कि आज तो आपकी आवाज़ में सिर्फ कार्यक्रम को सुना जाएगा, इस तपती धूप में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आप कार्यक्रम सुनिए, एंजॉय कीजिए। वैसे साथियों, कुछ साथी हमारे इस नए कार्यक्रम का शय स्वरूप अभी नहीं समझ पाए हैं, और वैसे भी परिवर्तन तो संसार का नियम है। कुछ तो परिवर्तन हर जगह ज़रूरी होता है, हम अपनी ज़िंदगी में भी तो परिवर्तन करते हैं ना। तो बस ये परिवर्तन शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन बाद में यही चेंजेस बहुत इजी और बहुत आसान और मनोरंजक हो जाते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि हैव अ नाइस सैट संडे, और गर्मी चली गई है और यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है, शायद इन्होंने कहीं उत्तराखंड साइड की बातें लिखी हैं। और एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत पढ़ने पर 1978 में चौथी कक्षा में पढ़ी हुई एक कविता याद आ गई है, मैं लिख रहा हूँ। सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता, आए बादल काले बादल, गर्मी दूर भगारे बादल, रिमझिम बूंदें बरसा बादल, झमझम पानी बरसा बादल, लो घनघोर घटाएं छाई, टप टप टप टप बूंदें आई, बिजली चमक रही चमचम, बिजली चमक रही चमचम, लगा बरसने पानी झमझम। वाह, क्या खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथी एक लिखते हैं कि सुहाने सफ़र को आज मौसम के रंगों में रंगकर आपके साथ हो चलेंगे, और कहेंगे कि धूप में निकला न करो रूप की रानी। और अभी तपती गर्मी, हम राजस्थान से दो बूंद पानी को सहेजते हुए इसी फिल्म का गीत, दो बूंद पानी नहीं तो यहाँ जिंदगानी नहीं, कुछ बूंदें बारिश की कितनी सुखद एहसास दिलाती हैं, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, और ये सब गीत इन्हें याद आ रहे हैं, और भी इन्होंने गाने लिख भेजे हैं। तो एक साथी ने कुछ गाने लिखे हैं कि आज के शब्द हैं गर्मी, ठंडी हवा, धूप, छांव, रिमझिम बारिश, कतरा कतरा पानी, मौसम वगैरह वगैरह। ठंडी हवाएं लहरा के आएं, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, और आज मौसम बड़ा बेईमान है। यकीन मानिए साथियों, गर्मी बहुत प्रचंड रूप धारण कर चुकी है, और इतनी तपिश में सभी को शीतलता की ज़रूरत है, यानी ठंडी हवाओं की। और ये हवाएं हैं ना, जिन्हें हम छू नहीं सकते।

सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जरा सोचिए ना, ये हवाएं ना होती तो क्या होता। और हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि विविध भारती आपके दिल के कितना करीब है। फटाफट उसका जवाब दीजिए। और वैसे अब जो गाना आप सुनेंगे, आप में से कुछ साथियों ने वही गाना चुना जो मैंने भी चुना। तो आइए हम ये गाना सुने, साथ साथ आप हमें सवाल का जवाब दीजिए।

ठंडी ठंडी हवा का आनंद देता ये गाना प्रिंस फिल्म से हमने लिया था लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में। और हमारे बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। बेहद खूबसूरत गाने से प्रोग्राम का शानदार आगाज़ हुआ। तो एक सखी ने लिखा है कि दिल तो है दिल, मैं लिख रही थी फिर रह गई क्योंकि सब्जी वाला आ गया और भूल ही गई। क्या बात है, लेकिन हमारी और आपकी पसंद मिल तो गई।

हमारे एक साथी लिखते हैं कि जैसे दिल का कोई एतबार नहीं, वैसे सुरीले सफर में कौन सा गीत आप पेश कर दें कोई नहीं कह सकता। पहला गीत ही हमारी सोच में नहीं था, तो भाई हमारी और आपकी सोच यहाँ पर थोड़ा सा डगमगा गई। और हमने आपसे पूछा था कि विविध भारती आपके दिल के कितने करीब है, तो हमारे ढेर सारे साथियों ने जवाब दिया। एक साथी लिखते हैं, जितना लबों के करीब हंसी है, जितना फूलों के करीब महक है, बस उतना ही दिल के करीब विविध भारती है। एक साथी ने कमेंट में लिखा है कि आज के सुरीले सफर में आप आई हैं, तो भाई आज तो इस सफर का और भी मजा आएगा क्योंकि इस कार्यक्रम में आप आए, सफर का अंदाज सुरीले गानों से होगा, आप गाने बहुत सुरीले और मधुर बजाने वाली हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आज के इबारत के सुलझे अनसुलझे रहस्यों के बीच गानों का मजा है, विविध भारती से दिन शुरू होता है, सुबह की शुरुआत भी विविध भारती के गाने न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुनता हूं, विविध भारती को कई पीढ़ी से सुना जा रहा है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मेरे दिल के इतने करीब है कि सुबह 9 बजे जब दुकान का शटर खोलता हूं और बिजली चालू करता हूं, तो पहला स्विच होम थिएटर का होता है जिसके अंदर विविध भारती रेडियो स्टेशन है जो रात को 9 बजे तक चलता है। जब दुकान का शटर बंद होता है तो आखिरी स्विच रेडियो का बंद होता है। वाह क्या बात है। वैसे साथियों आप तो जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में जो सुरीला सफ़र एक कार्यक्रम है, इसमें सवाल ज़रूरी नहीं कि हम गीतों से या टेक्स्ट से रिलेटेड लें, सवाल कोई भी कहीं से भी पूछ सकते हैं। एक साथी लिखते हैं कि सबको नमस्कार करते हुए कि हमारे भोपाल मध्य प्रदेश में हवा पानी का दौर चल रहा है, मौसम बहुत सुंदर है, गर्मी से बहुत राहत है, तो भाई गर्मी से राहत है तो ठंडी हवाओं का आनंद लेते रहें आप। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आज बहुत ठंडी और तेज़ हवाएं चल रही हैं, बादल छाए हुए हैं, तो छाए हुए बादलों का भी आनंद लीजिए। और एक साथी लिखते हैं, भाई हवाएं ना होती तो जीना ही मुश्किल हो गया होता। तो दूसरे साथी लिख बैठे हैं कि दिल के करीब नहीं, दिल में है जी विविध भारती। और एक साथी ने लिखा है, आपके साथ सुरीला सफ़र की शुरुआत होने वाली है और हम सभी इसके लिए बहुत उत्साहित हैं और इस कार्यक्रम को और भी रोचक बनाने के लिए धन्यवाद। एक साथी ने लिखा है, पानी शब्द पर गाना होगा, पानी रे पानी रंग तेरा कैसा, शोर फिल्म का गाना। दूसरे साथी लिखते हैं कि तपती गर्मी में सावन का इंतज़ार, कतरा कतरा पानी की बूंदें अधूरी कहानी पूरी करती हैं, इस मौसम पर तो ये गाना एकदम फिट बैठता है, रिम झिम गिरे सावन। साथियों रिमझिम बारिश की बूंदें, सौंधी मिट्टी की खुशबू, पहली बारिश का एहसास, सब कुछ बड़ा ही प्यारा लगता है ना। बात रिमझिम शब्द की हो तो एक गाना जो आप सभी पसंद कर रहे हैं वो जहन में आता ही आता है। ये वो गीत है साथियों जिसका फिल्मांकन, जिसके बोल, गीत, संगीत, आवाज़ हर बारिश को और भी खूबसूरत बना देती है। तो ये गाना सुनिए और बताइए ज़रा इस गाने के संगीतकार का नाम।

भाई मंजिल फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर की आवाज़ में हर बारिश को और भी खूबसूरत बना देता है। आपका क्या कहना है बताइएगा। वैसे हमारे एक साथी ने लिख भी भेजा है कि चलो मेरी बनी हुई इबादत का एक गीत तो शामिल हुआ फिल्म मंजिल का, रिमझिम गिरे सावन लता दीदी की आवाज़ में। यहाँ हमारी और आपकी पसंद मेल खा गई। और इस गाने के लिए आप सभी ने लिखा है कि मंजिल फिल्म का गाना अमित ताब बच्चन और मौसमी चटर्जी मरीन ड्राइव पर बारिश का आनंद लेते हुए। और एक साथी लिखते हैं रिमझिम गिरे सावन योगेश जी का लिखा हुआ ये गाना, सावन और बारिश की बात हो और ये गाना न बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी साथी गाने को लिख रहे हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग और एक बड़ी ही प्यारी सी इमोजी बना के भेज रहे हैं। एक साथी लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर कुछ इन शब्दों से होकर गुजरेगा, ठंडी हवा रिमझिम सावन इंतजार पानी और मुलाकात। एक साथी ने लिखा है कि सुरीले सफर में शामिल हो रहे सबको नमस्कार भेजा है। लिखते हैं कि शुरू में ही आपको ईमानदारी से मैं कह दूं कि मेरे इम्तिहान के दिन कब के लग चुके हैं, लेकिन जब आपके सफर इस सफर में शामिल होने जा रहा हूं तो लग रहा है कि फिर से इम्तिहान के दिन लौट चुके हैं। खैर ये तो ज़रूर कहूँगा कि आपकी आज की इबारत इतनी खूबसूरत है कि उसकी इबादत करने की दिल में चाह है, और क्यों ना हो, उसमें एक तरफ तपती गर्मी है तो दूसरी तरफ ठंडी हवा है, कहीं रिमझिम सावन है तो इसी मौसम में किसी का इंतज़ार है। भाई बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। आगे लिखते हैं ये, इंतजार खत्म होने के बाद मुलाकात होने जा रही है, मुलाकात के इस पल में मुस्कुराहट लेकर हम उससे मिलते हैं तो दिल में भी ये डर रहे कि कहीं कहानी अधूरी न रह जाए। तो कहते हैं आगे कि देखा बातों बातों में मैंने कितना कुछ कह डाला कि सांस फूल रही है। गानों के बारे में आपको बाद में बताऊंगा ब्रेक के बाद, तो चलिए फिर भी सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। चलिए एक बार मैं टेक्स्ट और पढ़ देती हूँ। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुअन के लिए तरसने लगता है और उसी में छुपा होता है

रिमझिम सावन का इंतजार, जहां कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं। कभी तपती धूप में छांव का एहसास, तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो।

हमारे एक साथी लिखते हैं, शुभ दोपहरिया, वेरी गुड आफ्टरनून सुरीला सफर प्रोग्राम में आज दोपहर 1 बजे तपती गर्मी में संडे की छुट्टी के दिन आपके साथ ठंडी हवा की हल्की सी छुअन का बेसब्री से हम सभी श्रोताओं को इंतजार है। तो आपका इंतजार पूरा हो गया, कार्यक्रम चालू है विविध भारती पर। एक साथी ने कुछ गाने लिख भेजे हैं जो रिलेटेड हैं आज के टेक्स्ट से। ठंडी हवाएं लहरा के आएं, रिमझिम गिरे सावन, ये मुलाकात एक बहाना है, अल्लाह मेघ दे पानी दे, इंतज़ार और अभी गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कड़ी कड़ी, कतरा कतरा पानी है, वगैरह वगैरह शब्द और ये मेरे गीत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी लिखते हैं कि लगभग भारत के बड़े हिस्से में मानसून जैसे मौसम लग रहा है, कहीं तेज़ हवाओं के साथ बारिश और काली घटाएं छा रही हैं, मौसम बिल्कुल सुहावना हो रहा है, हल्की फुल्की बारिश हो पर बहुत राहत है, ऐसे मौसम में आपसे एक बारिश वाला गीत सुनना चाहूँगा। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है, गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, ऐसे में हम सबको खूब पानी और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। सावन तो अभी दूर है लेकिन हमें इंतज़ार है कि रिमझिम बारिश ही हो जाए और इस धूप और गर्मी में थोड़ी निजात मिल जाए। आज का सुरीला सफ़र और भी सुरीला होने वाला है भाई, सावन दूर है तो क्या हुआ, गीतों के ज़रिए तो हम सावन के करीब जा सकते हैं ना।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, फिल्म थी जैसे को तैसा। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म मंजिल का गीत जिसे आर डी बर्मन जी ने संगीतबद्ध किया, चलो पहले तीन गीतों में ये गीत तो हमारी पसंद का आ ही गया, आगे देखते हैं कौन सा गीत हमारा चुना हुआ बचता है। और एक साथी ने लिखा है कि रिमझिम गिरे सावन इस गीत की खासियत है कि ये मेल और फीमेल दोनों ही वर्जन में कर्णप्रिय है, आज के दौर में ऐसा कम ही देखने को मिलता है।

यकीनन साथियों, गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, लेकिन फिर भी ऐसे गीत गर्मी से थोड़ी सी राहत तो दे ही देते हैं। एक साथी ने कुछ पंक्तियाँ लिख भेजी हैं कि गर्मी आई, धूप सुनहरी, आंगन में फैली लू की लहरी, पेड़ खड़े हैं चुपचाप जैसे ढूंढ रहे हों ठंडी पहरी, पसीने की बूंदें मोती बनकर चेहरे पर चमक दिखाती हैं, पर आम की मीठी खुशबू से मन में ठंडक आ जाती है, गर्मी की ये तपती बेला सिखा जाए धैर्य का खेला। बिल्कुल सच्ची बातें लिख भेजी आपने। गर्मियों से राहत के लिए हम सभी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं कि गर्मी से कुछ राहत मिल जाए, लेकिन थोड़े से गीत संगीत भी तो ऐसे होते हैं जो हमें गर्मी से राहत दिलाते हैं, थोड़े से सावन का एक एहसास दिलाते हैं कि हाँ अब बस सावन करीब है, बारिश करीब है ना। एक साथी लिखते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, मुझे लगता है कि आज के शब्द सावन, तपती गर्मी और मुलाकात हो सकते हैं और इन शब्दों पर कुछ रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि विविध भारती सुनने से बहुत फ़ायदा है, प्रोग्राम का आनंद लेते हुए काम करना, काम में कोई बाधा नहीं होती। और मंजिल फिल्म के गाने के लिए एक साथी लिखते हैं कि नारीमन पॉइंट के किनारे बरसात में मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन भीगते जा रहे हैं और गाना बज रहा है, बरसात पर ऐसा कोई गीत इतना रोमांटिक अभी तक नहीं बना। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि बीते एक सप्ताह से हमारे बिहार के साथ साथ उत्तर भारत का मौसम गीला और शीतल हो गया है, मध्य अप्रैल में जून की गर्मी का प्रवेश हो गया, अभी शीतल पूर्वी के झोंके सुरूर के लग रहे हैं। ये सच में साथियों बहुत ज़रूरी है ऐसे में पानी का बचाव भी करना, और जहाँ तक हो सके हम अपने को हाइड्रेट रखें भरपूर पानी पी के। और वैसे भी साथियों पानी के साथ साथ अन्न हो या कोई भी चीज़ हो, उसका एक एक कतरा हमारे लिए कीमती होता है। कहते हैं ना कि पानी की एक बूंद किसी की ज़िंदगी बचा सकती है और वो अमृत के समान होती है। तो चलिए अब आपका मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आने वाला है और हम उस गाने की ओर बढ़ेंगे जिसमें अभिनेत्री रेखा के बड़े ही सहज अंदाज हैं। अब बताना आपको है कि इस गाने में उनके साथ अभिनेता कौन है।

कतरा कतरा मिलती है, आशा भोसले की आवाज में इजाजत फिल्म का ये गाना था। एक साथ ही लिखते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ग्रीष्म की तपन के पश्चात आकाश में बादल छाने लगते हैं, श्वेत शाम बादलों के समूह, और ये संदेश देते हैं जन जन में प्राणों का संचार करने वाली वर्षा ऋतु के आगमन का। आकाश में छाई श्यामल घटाओं के साथ ठंडी ठंडी बयार के साथ झूमती आती है, जन जन को राहत पहुँचाती है जीवन देने वाली वर्षा की पहली फुहार। और वैसे कई जगह पर अब थोड़े थोड़े बादल छाने लगे हैं, आज मुंबई का मौसम भी थोड़ा सा बदला है। एक साथ ही लिखते हैं हमारे प्रांत का मौसम बेहद खुशनुमा है, आज तो सुबह से बादल है और लगता है कि कब रिमझिम जेठ की दोपहरिया बरस जाए। और एक साथी ने लिखा है कि दो अमलतास के पेड़ हमारे घर के फ्रंट पोर्शन के गार्डन में हैं। अमलतास के इन पेड़ों से चाहे बाहर तपती धूप की गर्मी हो या रिमझिम बारिश, और हम उन पेड़ों के नीचे खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, या सड़क की तरफ कोई राहगीर इन पेड़ों की छांव में रुक जाए, ठंडी हवा की हल्की छुअन का एहसास कराते हैं ये। बात तो बिल्कुल सही है साथियों की, हम चाहे एसी लगवा लें या कूलर लगवा लें, लेकिन जो आनंद, जो सुकून, जो राहत पेड़ की छांव तले मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती। कहते हैं ना कि माँ के हाथ की रोटी का स्वाद और कहीं नहीं मिलता, तो बस वही हाल है पेड़ की छांव का। तो लीजिए भाई, दूसरे साथी लिखते हैं कि मेरी प्लेलिस्ट में से तीसरा गाना बज रहा है, क्या बात है। और सभी ने लिखा है कि कतरा कतरा गाने में नसीरुद्दीन शाह जी थे रेखा जी के साथ। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई क्या बात है, हमारी इबारत का लिखा हुआ दूसरा गीत भी शामिल, इजाज़त फिल्म का रेखा जी के साथ, कर्मा फिल्म के खेरू भाई यानी कि नसीरुद्दीन शाह जी, बहुत ही शानदार नशीली दिलकश अमर आवाज़, आदरणीय आशा ताई की। तो एक साथी ने लिखा है आज का सुरीला सफ़र का प्रोग्राम बहुत लाजवाब। और एक साथी लिखते हैं बहुत प्यारे गाने सुनने को मिल रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि गर्मी पड़ रही है, अभी आसपास मौसम खुशनुमा हो गया है गाने सुन सुन कर। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आपका गुड आफ्टरनून भाई बहुत अच्छा लगता है, तो भाई आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड आफ्टरनून। एक कमेंट आया है हमारे साथी लिख रहे हैं कि हमने शब्द तो सही पकड़ लिए हैं लेकिन अभी तक एक भी गीत नहीं मेरी पसंद का आया या मेरे सोचा हुआ आया। तो दूसरे साथी लिखते हैं आपकी इबारत को लेकर मेरे मन में हज़ारों गीत उमड़ रहे हैं, मैं किस किस गीत का जिक्र करूं, हैरान हूं, परेशान हूं, लेकिन दो गाने तो शायद आपको सुनाने ही पड़ेंगे। और इन्होंने लिखा है कि हो सके तो मेरी पसंद ज़रूर शामिल हो। आगे लिखते हैं हमारे दूसरे साथी कि यहाँ धर्मशाला में सुबह से बारिश हो रही है, ऊपर पहाड़ों में बर्फ पड़ गई है, पंखों की जरूरत नहीं, सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं। यकीनन साथियों, बात मौसम की हो तो हर मौसम अपने में निराला है, खास है। वैसे बारिश के रंग तो अलग ही होते हैं लेकिन प्यार का मौसम हमें हमेशा ही जमा रखता है। कभी इंतजार, कभी मिलन, कभी जुदाई, तो कभी बेईमान सा हो जाता है मौसम। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस गाने का जिक्र कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं उस गीत की ओर।

कभी धूप कभी छांव लिए ये मौसम भी कभी कभी बेईमान हो जाता है। बहरहाल मोहम्मद रफी की आवाज़ लोफर फिल्म का गाना सुना आपने और आप सबको ये गाना बहुत पसंद आया। बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि भाई, एक साथी लिखते हैं, लो आ गया मेरी पसंद के चुने हुए गानों का आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो एक साथी लिखते हैं, मौसम कोई भी हो, सुरीला सफ़र चलते रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे साथी ने लिखा है, आज के सुरीले सफ़र के कार्यक्रम के गीतों से कोटा राजस्थान में भी गर्मी में भी सर्दी का एहसास हो रहा है, क्या बात है। तो यही तो होता है मुलाकातों का असर। एक साथी लिखते हैं, विविध भारती मेरे बचपन का साथी, विविध भारती मेरे वर्तमान समय का साथी, और जब तक प्रभु परमेश्वर ने मुझे जितनी सांसें दी हैं, विविध भारती मेरा साथी रहेगा।

एक साथी लिखते हैं कि मैं थोड़ा कोचिंग क्लास में लेती हूँ, इसलिए मैं गीतमाला में नहीं जुड़ पाई। आज संडे है, पिछले रविवार शादी में गए थे और प्रोग्राम का नाम बदल दिया गया है, लेकिन साथ तो है फेसबुक के जरिए। बस इस सफ़र में ना जुड़ पाऊँ, मगर फेसबुक से रेडियो जुड़े रखना मैम, क्योंकि आपके प्रोग्राम से जुड़कर ऐसा लगता है हम आपके साथ ही बैठे हैं और हम रेडियो चैनल और ऑफिस में ही बैठे हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है विविध भारती के साथ जुड़ने में। वाह, तो ऐसे ही विविध भारती के साथ जुड़े रहिए। हमारे एक साथी लिखते हैं कि अरे वाह, प्लेलिस्ट में से चौथा गीत भी बज गया, आज मौसम बड़ा बेईमान। क्या बात है भाई, हमारी आपकी तो ये जो पसंद है वो मिल गई। एक साथी लिखती हैं कि आपकी आवाज़ सुनकर, मन स्वर सुनकर मन शांत हो गया। मेरे श्रोता मित्रों की मीठी कमेंट्स मन को सुकून दे रहा है। आज मैं कुछ गुस्से में थी और अब सब ठीक हो गया है, फिर पहले की तरह आनंद लेकर गाना सुन रही हूँ। पॉजिटिव थॉट्स जीवन को ज़िंदगी से भर देते हैं। तो भाई गुस्सा क्यों, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। गुस्से को एक साइड में कीजिए और मुस्कुराते रहिए। लीजिए भाई, हमारे एक साथी लिखा है कि अरे वाह, मेरा कतरा कतरा पानी गीत भी मैच कर गया। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि इजाज़त फिल्म का जो गीत बजा कि मेरा तीसरा गीत भी आपने शामिल कर दिया, अब स्कोर 5 गीतों पे मेरा तीसरा गीत बज गया है। क्या बात है भाई। तो दूसरे साथी ने लिखा है, गुलजार साहब ने इस गीत को एक पेंटिंग जैसा फिल्मांकन किया है। तो दूसरे साथी लिखते हैं, कतरा कतरा जिंदगी प्यासी प्यासी रहने दो, मौसम का अद्भुत संगम लिए ये गीत सुरीला सफ़र को और भी सुरीला बना रहा है। और साथ ही साथियों, आपके कॉमेंट्स भी तो इसे सुरीला बना रहे हैं। तो भाई यही तो असर है विविध भारती के साथ मुलाकातों का। तो आप तो विविध भारती के साथ रोज़ ही मुलाकात करते हैं, हर दिन आपका खास होता है मुलाकात का विविध भारती के साथ। वैसे आपकी ज़िंदगी के सुरीले सफ़र की कोई एक मुलाकात जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और यादगार रही हो, शेयर करना चाहेंगे?

एक साथ ही लिखते हैं, विविध भारती सुन सुनकर ही हम बड़े हुए हैं। आज भी सुबह से शाम तक हमारा FM चालू रहता है। आसपास कोई नहीं है, बस विविध भारती और मैं।

एक साथी लिखते हैं कि पेड़ों की छांव का कोई मोल नहीं, कई तपस्वी भी इनकी छाया में मोक्ष पा गए। दिव्यता का स्रोत है ये पेड़, सिर्फ तन की ही नहीं मन की थकन को भी हर लेते हैं ये पेड़।

तो ये मुलाकातें विविध भारती पर यूं ही होती रहें, हम और आप हमेशा विविध भारती के साथ जुड़े रहें। ढेर सारा शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। सुरीला सफ़र कार्यक्रम का आज का सफ़र बस यहीं तक। मैं शिफाली आपसे अब लूंगी इजाज़त, ढेर सारे धन्यवाद के साथ। आपको दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को, अपने इस कार्यक्रम

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। श्री चौधरी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जीतन राम मांझी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। प्रदेश की सभी पंचायतों में इस महीने की 19 तारीख से प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन पंचायत सरकार भवन या इसके आसपास किसी सार्वजनिक स्थान पर होगा। इसका मकसद आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने आज अपनी पहली राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है। निशांत कुमार की इस यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा रखा गया है। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय से यात्रा के लिए रवाना होने से पूर्व निशांत कुमार ने कहा कि इस यात्रा का मकसद समाज में सौहार्द और सद्भाव की भावना को मजबूत बनाना है। यात्रा के दौरान जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। इधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि निशांत कुमार की यात्रा से पार्टी के सभी लोग उत्साहित हैं। श्री चौधरी ने कहा कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पार्टी ने पूरी तैयारी की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सिवान नगर थाना क्षेत्र के आंदर ढाला के समीप 29 अप्रैल को हुए चर्चित गोलीकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सोनू कुमार को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मारा गया अपराधी पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे की हत्या में शामिल था। जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र में अपराधी के छिपे होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष

संजय सरावगी ने इस एनकाउंटर पर कहा कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में की थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस अवसर पर मीडिया में काम करने वाले सभी कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में आंधी बारिश की स्थिति लगातार बनी हुई है। आज राजधानी पटना सहित विभिन्न जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और हवा चल रही है। इससे तापमान में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 19 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं विभाग ने किशनगंज जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला सम्राट चौधरी की क़यादत वाली रियासती काबीना की तौसी के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस मौजू पर पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं से बातचीत के लिए वज़ीर आला दिल्ली में हैं। श्री चौधरी ने दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर रेल अश्वनी वैष्णव, दाखला के मरकज़ी वज़ीर ममलकत नित्यानंद राय, मरकज़ी वज़ीर ललन सिंह और जीतन राम मांझी समेत दीगर कई सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकात की। वज़ीर आला ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वज़ीर दिफा से तरक्की याफ्ता बिहार के हदफ को पूरा करने पर गुफ्तगू हुई। श्री चौधरी ने बताया कि वज़ीर रेल से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने, बेहतर रेल राबता और बिहार की हमजहत तरक्की में सुरअत लाने पर तबादला ख्याल हुआ। रियासत की सभी पंचायतों में इस महीने के 19 तारीख को हरेक महीने के पहले और तीसरे मंगल को सहयोग कैंप का इनेकाद किया जाएगा। इसका इनेकाद पंचायत सरकार भवन या इसके आसपास किसी उमूमी मकाम पर होगा। इसका मकसद आम शहरियों को बेहतर इंतजामी सहूलतें मुहैया कराना है। जनता दल यू सरबराह और साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज अपना पहला सियासी सफ़र का आगाज़ किया है। निशांत कुमार के इस सफ़र का नाम सद्भाव यात्रा रखा गया है। पटना वाक़े पार्टी सदर दफ्तर से यात्रा के लिए रवाना होने से कबल निशांत कुमार ने कहा कि इस यात्रा का मकसद समाज में खैर सगाली और हम आहंगी के जज्बे को फ़रोग देना है। यात्रा के दौरान जदयू कानून साजिया पार्टी के लीडर श्रवण कुमार और पार्टी के रियासती सदर उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। इधर नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी ने कहा कि निशांत कुमार की यात्रा से पार्टी के सभी लोग हौसला मंद हैं। श्री चौधरी ने कहा कि इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए पार्टी ने पूरी तैयारी की है। सिवान टाउन थाना हलका के आंध्र ढाला के नज़दीक 29 अप्रैल को हुई गोलीबारी में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए अहम मुलजिम सोनू कुमार को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मारा गया मुलजिम साबिक एमएलसी मनोज सिंह के भांजे के कत्ल में मुलविस था। ज़िला के बड़हरिया थाना हलका में मुलजिम के छुपे होने की तला मिलने पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही जराइम पेशा अनासिर ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में खूनखार जराइम पेशा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बीजेपी के रियासती सदर संजय सरावगी ने इस इनकाउंटर पर कहा कि जराइम पेशों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आज आलमी योम आज़ादी सहाफ़त है। ये प्रेस की आज़ादी को फ़रोग देने और आलमी सतह पर

0: प्रेस की आज़ादी का जायज़ा लेने का मौका है। इस साल का मौजू पुरअमन मुस्तकबिल की तामीर है। आलमी यौमी प्रेस का ऐलान अक़वामे मुत्तहदा की जनरल असम्बली ने 1993 में किया था। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने इस मौके पर मीडिया में काम करने वाले सभी कारकुनों और मुलाजमीन को दिली मुबारकबाद दी हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की मजबूती में आज़ादाना और मुनसिफाना सहाफ़त का रोल इंतहाई अहम होता है। इस मौके पर पूरी रियासत में कई प्रोग्राम का अहतमाम भी किया जा रहा है। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में आंधी बारिश की हालत लगातार बनी हुई है। आज राजधानी पटना समेत मुख्तलिफ ज़िलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं और हवा चल रही है। इससे दर्ज हरारत में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत का औसत कम से कम दर्ज हरारत 19 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात से अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के बेशतर हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के साथ बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं महकमा ने किशनगंज ज़िले में भारी बारिश का इम्कान भी जताया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के कुल 9,175 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.crpf.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न विभागों में जूनियर ट्रांसलेटर तथा सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या अंग्रेजी माध्यम के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स या 2 एवं 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग ग्रेड सी और डी के लिए स्टेनोग्राफर के कुल 731 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।
1: मुख्य समाचार। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
2: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को लगभग 79% मतदान हुआ था।
3: वरिष्ठ अधिकारियों ने केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों पर तैयारियों के अंतिम दौर की समीक्षा की है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे ये प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों को कल सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मतगणना एजेंटों को भी मतगणना शुरू होने से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए QR कोड वाले पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। स्मिथ एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कारिक्काल, यनम और माहे में होगी।
3: पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना लासपेट इलाके में स्थित 3 केंद्रों पर होगी। ये मतगणना केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बलों द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
4: सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
5: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है।

0: डीएम के और टीवी के ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से मतगणना केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राज्य में 9 अप्रैल को लगभग 86% मतदान हुआ था।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
2: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
3: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
4: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक मिलनी के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस से अलग होने के बाद ये लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी।
1: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों।
0: श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 38,00,000 घरों को शामिल किया जा चुका है। और बात मौसम की, उत्तराखंड में कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज और कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: आज पूर्वोत्तर भारत, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात में भी भारतीय मूल के विद्यार्थी नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। ईरान ने संघर्ष विराम के लिए अमरीका को 14 सूत्री प्रस्ताव सौंपा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा पेश की गई है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि कूटनीतिक प्रयासों में युद्ध विराम को केवल बढ़ाने के बजाय युद्ध की समाप्ति को प्राथमिकता दी जाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबैक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच अर्ध शहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय

कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस वाद्य संगीत ने संकेत दे दिया कि विविध भारती पर अब शुरू होने वाला है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

चोरी चोरी फिल्म का ये गाना था आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। मन्ना डे और लता मंगेशकर के युगल स्वर शैलेंद्र की रचना को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने। साथियों, जब ऐसा साथ हो दो दिलों का तो हसीन वादियां भी मुस्कुरा उठती हैं।

सूरत है बोली सी कातिल हर कदा दिलो जान से हुआ हूँ मैं तो उस पे फिदा कोई जाने ना जाने कोई माने ना माने मैं तो कहता हूँ उनको खुदाओं के

गली से है नाजुक, फूलों से भी हंसी, मेरे यार जैसा कोई भी जमाने में नहीं। उस जैसी नाजनी, उस जैसी दिल नशी, दिया लेके भी जो ढूंढो तो मिलेगी ना कहीं। मेरा यार, मेरा प्यार।

लाल बंगला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गुलशन बावरा के बोल, उषा खन्ना का संगीत। साथियों, ऐसा खूबसूरत साथ जिसे देखकर कुदरत भी मुस्कुरा दे, तो फिर प्यार तो होना ही था। महक रही है ज़मी चांदनी के फूलों से, महक रही है ज़मी चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है।

0: मन्ना डे और लता मंगेशकर के युगल स्वर, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, आप सुन रहे थे श्री 420 फिल्म का गाना।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977, दूसरा आदमी।

0: बसीरा
1: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
0: 1984 दुनिया
2: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1993 फिल्म साहिबा।

0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार,
1: नजरों से कह दो
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: काजल है
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: होगा उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखें

तेरे घर के सामने फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर, हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत। और अब अगले गाने में कौन सी बात होगी? कुछ तो जादू था उसकी नज़र में, कुछ तो जादू था उसकी नज़र में, पहली ही नज़र में हम दिल हार बैठे।

अनपढ़ फिल्म का ये यादगार गीत जो आज भी सुनते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे मदन मोहन की तर्ज। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम के समापन हम एक ऐसे गाने से करेंगे जो थोड़ा सा चंचल है। मुकेश का स्वर, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुने क्या कहता है ये गीत।

0: हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए सुने कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहर या शुभ नमन। कार्यक्रम शुरू हो मन चाहे गीत, उससे पहले ये छोटा सा संदेश आपके लिए।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
3: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
3: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

साथियों, हाजिर हूं मैं शेफाली कपूर आपके मनपसंद कार्यक्रम मन चाहे गीत के साथ। साथियों, एक लंबे समय के बाद ये कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ है। आप सभी के पत्रों का बेसब्री से इंतजार है हमें। वैसे आज है संडे, रविवार यानी छुट्टी का दिन। आप में से कुछ साथी इस समय चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, तो कुछ मंडली में बैठकर बातचीत, तो कुछ साथी पेड़ के नीचे चारपाई डालकर मोबाइल या फिर ट्रांजिस्टर सिरहाने रख के बस इंतजार कर रहे होंगे मन चाहे गीत कार्यक्रम का। क्यों, है ना? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम मन चाहे गीत, और ये है आज का आपका अपना पहला मनचाहा गाना।

यकीन मानिए मनचाहे गीत कार्यक्रम में भी आपके पत्रों से बहार आ जाती है। बहरहाल आपको बता दें कि आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में जो पहली फरमाइश पूरी हुई, हमारे इन साथियों ने फरमाइश भेजी थी और फिल्म के नाम जो है वो था जीने की राह। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और पसंद हमारे इन साथियों की। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज शिवानी श्रीमाली। तो आपकी फरमाइश पूरी हुई साथियों। आज है दोबारा शुरू हुए कार्यक्रम मनचाहे गीत का दूसरा दिन, तो फटाफट पोस्टकार्ड पर अपनी पसंद का गीत अपने नाम और पते के साथ भेज दीजिए और इंतज़ार कीजिए अपने पसंदीदा गीतों के शामिल होने का। बहरहाल अब हम बढ़ेंगे आज के कार्यक्रम में आपकी दूसरी पसंद की ओर, जो है गुनाहों का देवता फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत और पसंद किसकी, हितू रांची से हमारे श्रोता प्रवीण कुमार की।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में गुनाहों का देवता फिल्म का ये गाना सुना। अगली फरमाइश किसकी होगी, किस गाने के लिए होगी, सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आईं फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
3: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
1: 1981 बसेरा।
4: जहां पे सवेरा हो बसेरा वही है।
1: 1984 दुनिया।
3: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
1: 1993 फिल्म साहिबा।
3: कैसे जियूंगा मैं।
1: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
4: नजरों से कह दो प्यार।
1: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। साथियों, अभी तक आप सभी के कुछ ही फरमाइशी पत्र हम तक पहुंचे हैं, तो भाई जल्दी जल्दी पत्र लिखिए, हमें भी इंतज़ार है आपके फरमाइशी खतों का। और हाँ, एक बात और, अपना नाम और पता साफ अक्षरों में लिखें ताकि हम आपका नाम और पसंद आपकी साफ साफ पढ़ सकें। तो चलिए अब बढ़ा जाए आज के इस कार्यक्रम के अगले गाने की ओर। और हमारे किन साथियों की पसंद है सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले ये गाना।

0: हम वफा करके भी तन्हा रह गए। निकाह फिल्म से आप सुन रहे थे सलमा आगा की आवाज़। हसन कमाल ने इसे लिखा था और रवि की तर्ज थी। और पसंद किसकी थी ये भी बता दीजिए। इसे पसंद किया था ज़िला वाशिम वनोजा तांडा मैथुन से सानिका राठौर, एस आर टेलर, जय राठौर, सुनील राठौर, इंदुबाई राठौर और कुमार आशीष। और इसी गाने को पसंद किया था ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और अतीक अंसारी। चलिए एक संदेश और सुन लेते हैं, उसके बाद आज के कार्यक्रम का अगला गाना।
1: तुम्हें याद करते करते
2: छाया गीत
1: लग जा गले।
2: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: मेरे सपने अब
2: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
2: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

तो चलिए इस संदेश के बाद बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर। तो बता दी जाए कि ये पेशकश कौन सी है। पापा कहते हैं, हाँ पापा कहते हैं फिल्म का नाम है। उदित नारायण की आवाज़, जावेद अख्तर के बोल, राजेश रोशन का संगीत। और पसंद किसकी? पसंद है हमारे इन श्रोताओं की, गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आप सबकी पसंद पर आपका पसंदीदा ये गाना।

साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम यहीं पूरा होता है। साथियों, एक से बढ़कर एक आपकी फरमाइशें रहीं। अब आज के लिए शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में कल आपने सुना नाटक इंस्पेक्टर जनरल का पहला भाग, आज सुनते हैं दूसरा और आखिरी भाग। ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की।
1: अरे आप लोग खड़े रह गए, बैठिए ना। मेरा साहब
2: जी,
1: आप तो सचमुच बहुत ही सज्जन पुरुष हैं और मैं समझा था कि आप मुझे
2: डॉबचिंस्की, जहां तक मैं सोचता हूं ये अपने को छिपाए रखना चाहता है। ठीक है, हम भी ये जाहिर नहीं होने देंगे कि हम इसे पहचान गए हैं,
3: लेकिन आप इससे बातें तो कीजिए, तभी तो ये खुलेगा।
2: तुम ठीक कहते हो
4: हुजूर, मैं कुछ कहने की दृष्टि
1: नहीं नहीं कहिए कहिए
4: नहीं नहीं नहीं नहीं मैं अपने को इसी योग्य नहीं।
1: अरे आप कहिए तो।
4: देखिए, वो मेरे मकान में एक बहुत ही साफ सुथरा और हवादार कमरा है, अगर आप वहाँ, देखिए कृपया इस बात का कोई दूसरा मतलब ना निकालिएगा, मेरे मन में तो देखिए
1: आप क्या बात करते हैं, मैं तो खुशी से ऐसी अच्छी जगह जाने के लिए तैयार।
4: अब आपसे क्या कहूँ, मेहमान नवाजी का तो मुझे बचपन से ही शौक है।
1: मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी भेंट हो गई।
5: हुजूर ने मुझे याद किया।
1: हाँ बिल्लाओ,
5: वो तो मैंने आपको सुबह ही दे दिया था।
1: मेरे पास इन बेकार चीजों को देखने के लिए वक्त नहीं है। ये बताओ कुल कितना बना?
4: जी आप क्यों खामखा परेशान होते, वेटर तुम जाओ, पैसे हम पहुंचा देंगे।
5: जी बहुत अच्छा।
4: हुजूर आप शहर का मुआयना करना चाहेंगे?
1: मुआयना
4: जी?
1: आपका मतलब?
4: शायद आप ये देखना चाहें कि यहाँ के दफ्तरों और दूसरी संस्थाओं में कैसा काम वाम होता है।
1: आप क्यों खुश? डॉबचिंस्की, मैं तुम्हें दो पर्चियां लिख देता हूँ, एक अस्पताल में जमलियानिका को दे देना और दूसरे मेरी पत्नी को दे।
5: जी बहुत अच्छा।
4: आप इजाजत दें तो मैं अपनी पत्नी को दो शब्द लिख दे।
1: जरूर जरूर, पर यहाँ कागज तो होगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप इस बिल के पीछे लिख दीजिए।
4: जी शुक्रिया शुक्रिया। तुम फिक्र ना करना, इंस्पेक्टर साहब को बढ़िया खाना और एक बोतल शराब मिलने की देर है, सब मामला ठीक हो जाएगा। वो मैडीरा की बोतल ठीक रहेगी। डॉबचिंस्की ये लो, चलिए हुजूर।
1: औजिब, तुम मेरा सामान लेकर आ जाना।
4: हाँ, तुम किसी से भी मेयर साहब का बंगला पूछ सकते हो, समझे ना। आइए हुजूर, आइए।
6: ओह, इंस्पेक्टर जनरल ऊंचे दर्जे के लेखक भी हैं। अच्छा डॉबचिंस्की, उसकी उम्र कितनी होगी?
7: उसकी आंखें काली हैं या भूरी?
6: मारिया तू चुप रह।
8: एकदम गबरू जवान, चेहरा ऐसा रौबदार कि अच्छा खासा आदमी दहशत खा जाए। अरे हाँ, मेयर साहब ने आपके लिए चिट्ठी दी थी,
6: ये लाओ मुझे तो
8: लीजिए। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी देख लूं अस्पताल का मुआयना कैसा चल रहा है।
6: मिश्का मिश्का, अरे कहाँ मर गया? मारिया बेटी अब हम जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, वो आने ही वाला होगा।
9: लो वो लोग आ गए।
1: जी सचमुच बहुत अच्छी संस्थाएं हैं आपके शहर में, और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात से हुई कि आप प्रत्येक यात्री से इन संस्थाओं का निरीक्षण कराते
4: हैं।
1: दूसरे शहरों में तो यात्रियों को अंदर घुसने तक की इजाजत नहीं है।
4: जी दूसरे शहरों में अफसरों को सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता रहती है, और एक मैं
1: आपने तो खाना भी कमाल का खिलाया मेयर साहब। सुनिए, हमने जहाँ खाना खाया वो अस्पताल ही था ना
4: जी।

0: जी हाँ श्रीमान।
1: लेकिन वहां तो बहुत सारी चारपाइयां खाली थी, मेरा मतलब है मरीज थोड़े ही दिखाई दिए।
0: जी बात यह है श्रीमान कि मैं हरचंद यही कोशिश करता हूँ कि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। विश्वास कीजिए हुजूर, हमारे अस्पताल तक आते आते मरीजों का बुखार उतरना शुरू हो जाता है और फिर हमेशा के लिए उतर जाता है।
2: हुजूर, मेयर की जिम्मेदारी के आगे बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। दिमाग हर घड़ी शहर के बारे में ही सोचता रहता है, कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। और अपने परिश्रम का पुरस्कार मैं भगवान से यही मांगता हूँ, हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हमेशा इसी तरह अपना कर्तव्य निभाता रहूं।
3: आप ठीक कहते हैं, आत्मा का सुख ही सच्चा सुख है।
2: जी,
3: इसी आत्मिक सुख के लिए मैं कहानियां लिखता हूँ, कविता करता हूँ।
4: देखा डॉबचिंस्की, इंस्पेक्टर जनरल की एक एक बात से पता चलता है कि ये कितना विद्वान आदमी।
3: मेयर साहब जी, आप अपने काम से थक जाते हैं तो अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? आपको ताश वाश खेलने का शौक नहीं?
2: वाह बेटा, मेरे पेट में घुसकर सब कुछ मालूम करना चाहता है, लेकिन बच्चों मैं अभी हवा नहीं लगने दूंगा। हाँ जी नहीं, मुझे कोई शौक वौक नहीं है, मुझे तो उन लोगों पर तरस आता है जो ऐसी बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं।
3: साहब ये तो अपना अपना सोचना है, मैं तो अक्सर ताश की बाजी लगा लेता हूँ।
5: बड़े लोगों के बड़े शौक।
2: अरे आओ आओ आओ, इधर आ इधर। ये मेरी पत्नी है एना और ये मेरी बेटी मारिया।
3: तो तशरीफ रखिए, इधर बैठिए ना।
6: ये हमारा सौभाग्य है कि इस घर में आपने दर्शन दिए।
3: और मैं कहता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी अच्छी जगह आकर इतने अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ।
6: आप पीटर्सबर्ग जैसी जगह से आए हैं, इस छोटे से शहर में तो आपको यूं बहुत बुरा लग रहा होगा।
3: क्या क्या कहाँ पीटर्सबर्ग की रौनक और कहाँ, लेकिन विश्वास कीजिए इस वक्त तो मैं पीटर्सबर्ग को बिल्कुल भूल गया हूँ, बिल्कुल। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं बेकार के शिष्टाचार में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी को ये पता ना चले मैं कौन हूँ।
0: जी,
3: लेकिन आखिर कोई कहाँ तक छिप सकता है? बताइए, बताइए, बताइए। कहीं भी जाता हूँ लोग फौरन पहचान लेते हैं। देखो देखो देखो, इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलेस्टकोव जा रहा है। एक बार लोगों ने मुझे कमांडर इन चीफ भी समझ लिया।
6: आप इतने आकर्षक और प्रभावशाली हैं कि
3: नहीं नहीं।
6: मैंने सुना है आप खुद भी ऊंचे दर्जे के लेखक हैं।
3: ये तो मैं नहीं कह सकता, पर लिखा मैंने बहुत है, बहुत। मुझे तो अपनी सब किताबों के नाम भी याद नहीं।
6: अगर मैं भूलती नहीं हूँ तो ला मिसराब आप ही का लिखा हुआ उपन्यास। पर मम्मी, ला मिसराब के लेखक तो विक्टर ह्यूगो हैं। मारिया, तू बीच में मत बोला कर।
3: नहीं नहीं, इन्हें डांटिए नहीं। मिस मारिया, आप ठीक कहती हैं, बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन इस नाम के दो उपन्यास, उनमें से एक मैंने लिखा है।
6: अच्छा।
3: मैडम, आप लोग कभी पीटर्सबर्ग आइए ना, स्टेशन पर उतरते ही आपको किसी से भी पता चल जाएगा इवान अलेक्जेंड्रोविच का बंगला किधर है।
6: काश हम जा पाते।
3: मैंने तो बंगले को मेहमानों के लिए ही सजा रखा है। मिसाल के तौर पर ड्राइंग रूम के ठीक बीचों बीच मेज पर क्या रखा है, क्या रखा है? हाँ हाँ हाँ, एक तरबूज रखा है। उसकी कीमत है सिर्फ सिर्फ सिर्फ 700 रूबल।
0: 700 रूबल?
3: मेहमानों के लिए सूप कहाँ से? पेरिस से बंद डब्बों में मंगाया जाता है। हर रात डरट डरट डरट डांस होता है। दुनिया भर से मेरे नाम चिट्ठियां आती और सब पर लिखा होता है योर एक्सीलेंसी वगैरह वगैरह। एक बार जब मैं होम मिनिस्ट्री में था, वहां का डायरेक्टर जनरल

0: डायरेक्टर जनरल कहीं चला गया
1: जी,
0: सब लोगों की नजरें उस खाली कुर्सी पर थी, लेकिन किस्मत देखे सरकार ने मुझे उस कुर्सी पर बैठा दिया। मैं सोचने से घबरा गया, सोचा मना कर दूं, बिल्कुल मना कर दूं, लेकिन फिर ख्याल आया, वो है ना अपने वो जार सलामत, हाँ हाँ जार सलामत नाराज हो जाएंगे। मैं जानता हूँ एक दिन जरूर वो मुझे फील्ड मार्शल बना कर रहेंगे, मुझे बहुत मानते
2: हुजूर।
0: क्या हुजूर हुजूर लगा रखी है, क्या कहना है
3: जी? आप आराम करना चाहते हो तो मेरा मतलब
0: आराम
3: जी,
0: आराम, खैर आराम ही करते हैं। साहिबान खाना बहुत ही अच्छा था।
4: मैं कहती हूँ मारिया, इतना विद्वान और सब व्यक्ति किसी जनरल से कम नहीं हो सकता।
5: जरूर होगा मम्मी, और सुंदर भी कितना है, बार बार मेरी ओर देख रहा था, मुझे तो बहुत शर्म आई।
6: क्या मुसीबत है, सुबह सुबह तुम लोगों ने चेंचे मचानी शुरू कर दी। कुछ ख्याल है इंस्पेक्टर जनरल बराबर के कमरे में सो रहे हैं, बराबर के कमरे में। जब से उन्होंने अपने बारे में बताया है, मेरे पांव के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। जानती हो है ना, शराब के नशे में आदमी दिल के सारे राज खोल देता है।
4: देखो जनरल साहब का नौकर आ रहा है। आसिफ, आसिफ
7: जी,
4: क्या साहब अभी सो रहे हैं?
7: जी हाँ।
6: अच्छा ओसिफ, साहब को क्या क्या बातें पसंद हैं? मेरा मतलब है वो किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं?
5: ओसिफ, तुम्हारे साहब की अभी शादी तो नहीं हुई?
6: तुम लोगों की बकवास बंद होगी या नहीं, भागो यहाँ से तुम दोनों।
4: हम लोगों को बात करने का मौका ही नहीं देते।
7: मालिक ज्यादा नखरे नहीं करते।
6: अच्छा।
7: वो बस इतना ही चाहते हैं कि जहाँ जाएं उनका और मेरा अच्छी तरह स्वागत हो।
6: ये तो होना ही चाहिए, ये तो
7: मालिक मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं।
6: ये तो होना भी चाहिए। अच्छा भैया सुनो, रात तुम्हें तो नींद अच्छी तरह आ गई थी?
7: जी हाँ खूब सोया।
6: अच्छा तुमने चाय वाय भी पी है? खैर एक प्याला गर्म चाय और मंगवाता हूँ। और हाँ सुनो, ये कुछ रूबल तुम अपने पास रख लो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है।
7: आपकी बहुत कृपा है।
6: नहीं तो ऐसा ना कहो भैया, तुम तो बहुत ही भले और प्यारे आदमी हो।
7: अच्छा मैं जरा देखूं कहीं मालिक जाग ना गए।
6: हाँ जरूर जरूर, मैं भी जल्दी से तैयार होकर जाता हूँ।
8: खुश फरमा रहे थे जैसा
9: जी भाई, मेरा ख्याल ये है ज्यादा अच्छा हो हम लोग लाइन बना लें, इंस्पेक्टर जनरल के सामने भेड़ बकरियों की तरह जाएंगे तो वो हमें गोली मार देंगे।
8: ठीक है ठीक है।
9: स्कूल सुपरिटेंडेंट साहब
8: जी
9: आप इधर आ जाइए
8: जी,
9: हेल्थ अफसर साहब आप इनके पीछे, और पोस्टमास्टर तुम इस तरफ आ जाओ
8: जी। बहुत अच्छा।
10: और हम,
9: हमारा क्या होगा,
10: हमारा क्या होगा?
9: मिस्टर बॉब डॉब आप क्यों आए हैं, आप सरकारी मुलाजिम थोड़े हैं।
8: जज साहब मेरा एक सुझाव है
9: जी,
8: किसी बहाने से इंस्पेक्टर साहब की जेब गर्म कर दी जाए।
9: अरे भाई यही मैं सोच रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा अफसर है, हमारा इरादा समझ गया तो हमें कच्चा ही चबा जाएगा। पर अगर हम ये पैसा भ्रष्टाचार उन्मूलन चंदा कहकर साहब की जेब में डाल दें तो कैसा रहेगा, कहिए क्यों पोस्टमास्टर साहब?
11: एक बहाना ये भी हो सकता है कि हम कह दें साहब हमारे डाकखाने में इतने रूबल का एक गुमनाम मनी ऑर्डर आया है।
8: सुनिए सुनिए, ये सब तरीके गवारू हैं, सभ्य प्रगतिशील और अनुशासनबद्ध देशों की तरह अच्छा यही है कि हम लोग एक एक करके अंदर जाएं, और क्योंकि इस हालत में ये बात दो आदमियों के बीच ही रहेगी। जज साहब पहले आप जाइए।
9: नहीं नहीं नहीं, पहले तुम जाओ हेल्थ अफसर साहब, सबसे पहले उसने तुम्हारे अस्पताल में अन्न जल ग्रहण किया है।
8: बाप रे, किसी बड़े अफसर को देखते ही मेरी तो टांगे कांपने लगती हैं।
12: तो आप ही जाइए ना जज साहब, आप में भाषण देने की बड़ी क्षमता है, ऐसा लगता है जैसे प्लेटो बोल रहा है।
8: बिल्कुल जज साहब, जज साहब पहले आप ही जाइए।
9: अच्छा तो मैं ही चलता हूँ
8: जी।
0: कमबख्तों ने कल इतना खिलाया पिलाया कि अभी तक खुमारी चढ़ी हुई है, लेकिन आसिफ प्यारे मजा आ गया, दो चार दिन भी यहाँ रह गए तो सेहत बन जाएगी।
12: देखो तो मेरी भी बड़ी खातिरदारी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता क्यों। मेयर मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे साहब को क्या क्या बात ज्यादा पसंद है।
0: ये तुम नहीं समझोगे प्यारे।
12: अच्छा,
0: इन लोगों को मेरे बारे में कुछ गलत फहमी है।
12: अच्छा।
0: कि मैं कोई बहुत बड़ा अफसर हूँ।

0: आइए आइए, तशरीफ लाइए। आसिफ, तुम जाओ।
1: मैं इस डिस्ट्रिक्ट का शहर हूँ, माफ कीजिएगा हुजूर, मैं इस शहर का डिस्ट्रिक्ट जज हूँ। लेकिन
0: बैठे बैठे, आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। सुनाइए, आपका काम कैसा चल रहा है?
1: हुजूर, ये काम संभालने के 3 महीने बाद ही मेरा काम देखकर सरकार ने मुझे विशेष पुरस्कार प्रदान किया था।
0: और अरे मिस्टर लैपकिन कैप्किन, आपकी जेब से कुछ नीचे गिरा है?
1: नहीं नहीं नहीं हुजूर, भला मुझ जैसे छोटे आदमी की जेब से क्या गिर सकता है?
0: मैं कहता हूँ जरूर कुछ गिरा है।
1: नहीं, कुछ नहीं गिरा हुजूर।
0: ये कितने सारे नोट हैं? अरे भाई, आप इन्हें बेकार समझते हैं तो हमें ही दे दीजिए।
1: ये हाजिर हुजूर, ये लीजिए हुजूर, आप ही के तो हैं।
0: तो ऐसा कीजिए कि ये नोट मुझे उधार दे दीजिए, मैं बाद में वापस।
1: बाद में? ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न कीजिए, मैं आपका अमून समय खराब नहीं करूंगा। मुझे आज्ञा है।
0: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर। अच्छा आदमी था ये भी, जज होते ही अच्छे हैं। बेचारा 400 रूबल दे गया।
2: श्रीमान, मैं अंदर आने की गुस्ताखी कर सकता
0: हूँ? हाँ जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, ठीक है।
2: मैं शहर का स्कूल सुपरिंटेंडेंट हूँ।
0: कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपको एक मजेदार किस्सा सुनाऊं?
2: जी है।
0: यहाँ आते हुए रास्ते में एक जगह
2: जी
0: मैं एक अजीब चक्कर में उलझ गया, और नतीजा ये कि तब से जेब में 1 पैसा भी नहीं है
2: जी। हुजूर, अगर आप कुछ और ना समझे तो ये थोड़े से रूबल स्वीकार कर लीजिए।
0: ठीक है ठीक है, ये 400 रूबल मेरे ऊपर उधार
2: जी, मेरे लिए ऐसा सुनना भी पाप है। अच्छा मुझे आगे दीजिए। नमस्ते।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। कौन कौन साहब हैं
2: जी?
0: अरे आप वहाँ खड़े खड़े क्यों कांप रहे हैं? अंदर आ जाइए
2: जी। मेरा नाम जिमलानी का है। कल आपने मेरे अस्पताल को ही अपने दर्शनों से पवित्र किया था।
0: हाँ हाँ हाँ, लेकिन मिस्टर जिमलानी का, मेरा ख्याल है आज आप कल से कुछ बड़े लग रहे हैं।
2: हो सकता है हुजूर, हो सकता है, खुशी पाकर ही आदमी बड़ा होता है। विश्वास कीजिए, मैं जज, स्कूल सुपरिंटेंडेंट और मेयर की तरह नहीं हूँ, जिनका न कोई ईमान है न चरित्र। मुझे यही आश्चर्य है कि ऐसे निकम्मों को सरकार ने भर्ती कैसे
0: कर दिया। मुझे इन बातों का बिल्कुल पता नहीं था। आप देखिए, ऐसा कीजिए, एक बार फिर आइएगा और मुझे सारी बातें बताइएगा।
2: जरूर।
0: देखिए, यहाँ आते हुए रास्ते में ना जाने कहाँ मेरा बटुआ गिर गया। अगर आप मुझे 400 रूबल उधार दें।
2: जरूर जरूर, ये लीजिएगा। अच्छा, मैं फिर आपके दर्शन करूंगा।
0: जी हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, जरूर कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा।
3: नमस्कार श्रीमान, मैं पीटर इवानोविच बाबसिंची हूँ, इस शहर का एक सच्चा नागरिक और जमींदार।
4: श्रीमान, मैं पीटर इवानोविच डॉबचिंस्की हूँ, शहर का दूसरा सभ्य नागरिक और जमींदार।
1: जमींदार?
0: आप दोनों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। सुनिए, आपके पास कुछ पैसे होंगे?
3: पैसे?
0: हाँ, अगर आप मुझे 1000 रूबल उधार दे सके तो।
3: विश्वास कीजिए, मैं घर से इतना पैसा लेकर चला ही नहीं।
4: क्षमा कीजिए, मैं तो घर से ही नहीं आया हूँ।
0: कोई बात नहीं, मैं 1000 की जगह 100 रूबल से भी काम चला सकता हूँ।
3: डॉबचिंस्की, तुम्हारे पास 100 रूबल तो होंगे ही, मेरे पास तो कुल जमा 40 हैं।
4: मेरे पास भी 25 रूबल ही निकले हैं।
3: अरे ध्यान से देखो, तुम्हारी बाईं जेब उभरी हुई है, कुछ रूबल अस्तर में नाटक।
0: अरे अरे, आप लोग परेशान ना होइए, लाइए 65 ही दे दीजिए। हाँ, आप लोग यहाँ किसी काम से आए?
3: जी हाँ श्रीमान, पीटर्सबर्ग में जिन बड़े बड़े अधिकारियों से आपका मिलना जुलना हो, उनसे बस इतना अवश्य कह दें कि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं।
4: और इस शहर के पीटर इवानोविच डॉबचिंस्की को भी अच्छी तरह से जानते हैं।
0: इसमें क्या है? मैं जरूर कह दूंगा, दो तीन बार कह दूंगा, बल्कि कई बार कह दूंगा, कहीं से कह दूंगा।
3: धन्यवाद श्रीमान।
0: कितने गधे हैं ये लोग, मुझे पीटर्सबर्ग का इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया। मैंने भी रात नशे में ना जाने कहां कहां की हाँकी होगी। क्यों ना ये सारी घटना अपने लेखक मित्र ट्रिपिचकिन को लिख भेजूं, वो इस जोरदार मामले पर फटाफट कोई कहानी या फिर ड्रामा लिख डालेगा। अभी उसे चिट्ठी लिखता हूं। प्रिय मित्र ट्रिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूं।
5: मालिक मालिक, शहर के कुछ व्यापारी आपके दर्शन करने और मेयर के शिकायत करने

0: तो उन लोगों से कह दो फिर किसी वक्त आए, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ हाँ
1: जी,
0: वो मुझे कुछ देने के लिए लाए हो तो लेना मत भूलना।
1: बहुत अच्छा मालिक।
0: अरे सुनाओ से
1: जी,
0: तुम एक घोड़ा गाड़ी तैयार करा दो।
1: बहुत अच्छा।
0: कह देना साहब को सरकारी काम से कहीं जाना है।
1: बहुत अच्छा।
0: अच्छा अच्छा जरा रुको जरा रुको
1: जी।
0: ये चिट्ठी भी डाक में डाल देना।
1: बहुत अच्छा।
0: बाकी मिलने पर तुम्हारा हेलस्त को मिस्टर वेसेलविच ट्रिपिचकिन, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, सेंट पीटर्सबर्ग। ये लो
1: सर।
0: इन 2 दिनों में अच्छी खासी कमाई हो गई।
2: मैं आ सकती हूँ?
0: आइए आइए। वो

0: मिस्टर वेसेलविच ट्रिपिचकिन, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, सेंट पीटर्सबर्ग। ये लो
1: लाइए सर।
0: इन दो दिनों में अच्छी खासी कमाई हो गई।
2: मैं आ सकती हूँ?
0: आइए आइए, वो आए हमारे कमरे में, हमारी किस्मत। मिस मारिया, मैं आपकी ही राह देख रहा था।
2: शायद आप किसी जरूरी काम में व्यस्त थे, मैंने आकर।
0: मेरे लिए आपसे बड़ा क्या काम हो सकता है मिस मारिया। ओहो, आप शर्माती हैं तो मैं जैसे अपनी सुध-बुध भूल जाता हूँ।
2: सुनिए, क्या आप मेरी नोटबुक में कुछ कविताएं लिख सकेंगे?
0: क्यों नहीं, काश काश कविताओं की जगह मैं अपना प्यार लिख सकता।
2: प्यार? वो क्या होता है?
0: ये भी जान जाएंगी। मेरे मेरे नजदीक आइए।
2: हम सीधे साधे आदमी हैं, इसी से आप हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं। मुझे जाने दीजिए।
3: मारिया, तू यहाँ? ये क्या बदतमीजी है?
0: मेरी सहायता कीजिए मैडम, मैं अब मारिया के बिना नहीं रह सकता। मैं इन्हें जीवन संगीनी बनाना चाहता हूँ।
3: ओह, सुन लिया मारिया, तेरी जाति और बेवकूफी के बावजूद आदरणीय मेहमान तुझसे विवाह करना चाहते हैं।
2: मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ।
0: मैडम, हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए।
4: हुजूर, हुजूर, हुजूर, मेरे ऊपर दया कीजिए। शहर के व्यापारियों ने जो मेरे खिलाफ शिकायतें की हैं, उनमें से एक भी सच नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
3: ओफो, इस वक्त ये बातें बंद कीजिए ना। जानते हैं, साहब ने हमारी मारिया का हाथ मांगा है।
4: मूर्ख कहीं की। हुजूर, आप मेरी पत्नी की बात पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिएगा। ये तो शुरू से ही मूड मती रही
0: पर है। ये सच कह रही हैं। मैं मारिया से विवाह करना चाहता हूँ।
4: हुजूर, इस नाचीज से मजाक कर रहे हैं।
0: मेरी बात पर विश्वास कीजिए।
4: मेरी बेटी की शादी इंस्पेक्टर जनरल से। इंस्पेक्टर जनरल से? ओ एंटन एंटोनोविच, आज से तेरी दुनिया ही बदल गई।
1: हुजूर, गाड़ी तैयार।
0: हम अभी आते हैं।
4: क्या हुजूर यहाँ से विदा हो रहे हैं?
0: हाँ, वो एक दिन के लिए घर जाना चाहता हूँ। मेरे चाचा बीमार हैं, बस परसों तक वापस आ जाऊंगा।
4: ठीक है ठीक है। मेरा ख्याल है हुजूर, इस वक्त आपके पास पैसे कम हो?
0: नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
4: तो सेवा में कितना पेश कर दूं?
0: आप मुझे 200, मेरा मतलब है 400 रूबल दे दीजिए।
4: ये लीजिए, एकदम नए नोट हैं।
0: नए नोट, नई आशा। अच्छा, मैं चलता हूँ।
2: मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी।
0: प्रतीक्षा करने में बहुत आनंद आता है मिस मारिया।
4: आपकी यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं।
0: शुक्रिया
4: शुक्रिया। है ना, तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अचानक एक दिन हमारी किस्मत के सितारे जगमगा उठेंगे। कल तक तुम एक मामूली मेयर की बीवी थी, लेकिन आज तुम ऐसे आदमी की सास हो जिसके आगे बड़े बड़े अफसर सिर झुकाते हैं।
3: सुनिए जी, अब हम लोग इस छोटे से शहर में नहीं रहेंगे। यहाँ तो अभी से मेरा दम घुटने लगा है।
4: यहाँ रह कैसे सकते हैं? शादी के बाद इंस्पेक्टर जनरल हमें फौरन पीटर्सबर्ग ले जाएंगे। एना, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन मेयर नहीं रहूंगा।
3: छी छी छी, आप जैसे आदमी के लिए मेयर बनना डूब मरने की बात है। देखना, आप जल्दी ही जनरल या कोई दूसरे बड़े अफसर बन जाएंगे।
4: और फिर देखना, मैं शहर के इन बदमाश व्यापारियों की कैसी मट्टी पलीत करता हूँ। बेईमान कहीं के, मेरी शिकायत करने आए थे।
3: छोड़िए जी, हमें इन कबूतरों के मुंह नहीं लगना।
4: हाँ बिल्कुल।
3: अब आप अपना तौर तरीका बदलिए। इन घटिया लोगों के साथ बैठना उठना छोड़िए। काउंट, लॉर्ड वगैरह, बड़े बड़े आदमियों में बैठना उठना है हमें।
4: ओ आओ भाई, बाबो डॉक, आओ आओ आओ।
5: मेयर साहब, मेयर साहब, आपको और मैडम एना को बाब चिंस्की की ओर से बहुत बहुत बधाई।
6: और डॉक्टर चिंस्की की ओर से भी बहुत बहुत बधाई।
4: शुक्रिया शुक्रिया। ओहो, आइए आइए मिस्टर स्कूल सुपरिटेंडेंट, तशरीफ लाइए।
7: मुबारक हो मेयर साहब, मुबारक हो। मिसेज एना, मेरी पत्नी भी आपको बधाई देने आई है।
8: भाई मेरी भी हार्दिक बधाई है मेयर साहब।
7: मेरी मुबारकबाद भी कबूल फरमाइए जनाब।
9: लेकिन ये बात बनी कैसे?
4: इसमें आश्चर्य की क्या बात है लैपकिन कैप्टन, अफसर पहली भेंट से ही मुझसे बड़ा खुश था। उसने मुझसे मारिया का हाथ मांगा।
2: लेकिन बहुत ही तहजीब से मुझसे कहने लगा, मैं तो आपके गुणों पर मुग्ध हो गया।
10: मम्मी, ये तो उन्होंने मुझसे कहा था।
2: मारिया, बीच में नहीं बोला करते। फिर कहने लगा, अगर आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है तो मैं इस जीवन से मृत्यु ही अच्छी समझता
10: हूं। ओ मम्मी, ये भी उन्होंने मेरे लिए कहा था।
2: हाँ हाँ, मैं कब कहती हूँ कि मेरे लिए कहा था।
4: मित्रों, अब मैं आपका साथ छोड़कर पीटर्सबर्ग चला

0: जाऊंगा, शायद वहां मुझे जनरल बना दिया जाए।
1: अवश्य जाइए, अवश्य जाइए, बड़ा जहाज गहरे पानी में चलता हुआ ही छोड़ देता है।
2: आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली।
3: भाई परिश्रम और ईमानदारी का फल कभी न कभी मिलता ही है।
1: हुजूर, क्यों नहीं? इस गरीब को भूल न जाइएगा, अब मुझे आप ही का सहारा है।
3: कोई अच्छा मौका हो हुजूर तो इस नाचीज हेल्थ ऑफिसर को भी याद कर लीजिएगा।
0: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर।
4: ओफो, आपकी ये आदत मुझे बहुत बुरी लगती है।
0: क्या?
4: अभी से दुनिया भर से वादे करने लग गए हैं। पता नहीं पीटर्सबर्ग में आपको इन छोटी छोटी बातों के लिए फुर्सत मिलती भी है या नहीं।
5: अंधेर हो
6: गया। क्या हुआ? क्या बात हो गई?
5: अभी अभी अभी अभी डाक भेजने की तैयारी कर रहा था तो उस अफसर द्वारा लिखी चिट्ठी पर मेरी नजर पड़ी।
0: अच्छा।
5: लिफाफे पर लिखा था, मिस्टर टिपिचकिन, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, सेंट पीटर्सबर्ग। पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट पढ़कर मेरे तो छक्के छूट गए। मैंने सोचा हो ना हो जरूर बड़े पोस्ट ऑफिस को मेरी शिकायत भेजी जा रही है। मैंने उसे खोलने का इरादा किया।
6: सर, तुम्हारी ये मजाल, इतने बड़े अफसर की चिट्ठी तुमने।
5: पूरी बात तो सुनिए साहब।
6: क्या?
5: पहले तो मैंने लिफाफे को ऐसे ही थैले में डाल दिया, लेकिन जैसे जैसे मेरे दिल से बार बार आवाज आने लगी, लिफाफा खोल ले, लिफाफा खोल ले, नहीं खोलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। आखिर धड़कते दिल और कांपते हाथों से मैंने लिफाफा खोल ही
6: दिया। तुमने इंस्पेक्टर जनरल की चिट्ठी खोलने की जरूरत?
7: हाँ, मेरे साथ ठीक कहते हैं।
5: लेकिन चिट्ठी पढ़कर मालूम हुआ कि वो इंस्पेक्टर जनरल नहीं था।
6: क्या?
5: कोई लफंगा था।
6: क्या बकते हो तुम?
5: मैं सच कह रहा हूँ मेयर साहब, आप कहें तो वो चिट्ठी पढ़कर सुना दूं। सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए, प्रिय मित्र टिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूँ। ये मेरी बहादुरी का नया किस्सा है।
6: अरे,
5: खाली जेब होने पर भी मैं किसी तरह इस शहर में पहुंच गया। होटल का मालिक मुझसे तंग आकर मुझे जेल भेजने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक मेरा भाग्य जाग उठा। यहाँ के भौंदू अधिकारियों ने मेरी कीमती वेशभूषा और रौब दाब देखकर मुझे इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया, और नतीजा ये कि अब मैं ठाट से मेयर की कोठी आबाद कर रहा हूँ और लोगों से पैसा समेट रहा हूँ। आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे लिखा है, तुम भी यहाँ के कार्टूनों से मिल लो। एक तो मेयर साहब हैं, एकदम गधे जैसा दिमाग, शक्ल उल्लू जैसा है।
6: ये कहीं नहीं लिखा, तुम अपनी तरफ से पढ़ रहे हो।
5: यहाँ का हेल्थ ऑफिसर बिल्कुल सर्कस का जोकर है। स्कूल सुपरिंटेंडेंट के सारे शरीर से हींग की बदबू आ रही है।
2: क्या बदतमीजी है ये?
5: एक जज है, वो अव्वल दर्जे का ऊंचा लगता है।
6: क्या कहा?
5: और यहाँ के पोस्ट मास्टर भी हैं, वो साहेबान, मेरा ख्याल है आगे पढ़ना
7: पड़ेगा। पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़िए।
8: यहाँ एक पोस्ट मास्टर भी है जो सख्त बेईमान है और तुम्हारे चपरासी की तरह घटिया शराब पीता है। खैर, कुल मिलाकर ये लोग।
6: बंद करो ये बकवास।
0: मैं तो कहीं कहा नहीं रहा, वो बदमाश सारी जगह मेरी बेवकूफी की कहानी सुनाएगा, सारी दुनिया मुझ पर हंसेगी। मेरी अकल पर तो पर्दा पड़ गया था, लेकिन तुम लोगों को किस मक्खी ने काटा था जो इंस्पेक्टर आ गया, इंस्पेक्टर आ गया कि नारे लगा बैठे, बताओ।
8: मेयर साहब, सबसे पहले बाब और डाब ने ही ये गप उड़ाई थी।
2: जी हाँ, ये बाब और डाब की ही करतूत है।
9: नहीं नहीं, भला मैं ऐसी झूठी बात कैसे कहता?
10: भगवान का नाम लीजिए, मेरी इतनी जुर्रत हो सकती?
6: तुम दोनों ठग, इसी वक्त मेरी आंखों से दूर हो जाओ, निकलो यहाँ से। कम वक्तों ने मुझे चौपट करके रख दिया, मैं कहता हूं चले जाओ यहां से।
0: हे भगवान, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा?
6: कौन?
11: मेयर साहब हाजिर हैं।
6: क्या बात है, तुम कौन हो?
11: सरकारी हरकारा।
6: सरकारी हरकारा?
11: पीटर्सबर्ग से इंस्पेक्टर जनरल साहब अभी यहाँ पधारे हैं, होटल में रुके हैं।
6: अच्छा?
11: उन्होंने आज्ञा दी है कि आप और दूसरे सभी अफसर फौरन उनके सामने हाजिर हो जाएं।
6: क्या? इंस्पेक्टर जनरल?

ये था नाटक इंस्पेक्टर जनरल। दूसरा और आखिरी भाग, ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, भाग लेने वाले कलाकारों के नाम बृजेंद्र मोहन, किशोर कपूर, बलदेव राम नागर, तिलक राज मेहता, जफर अहमद, आर एच चिश्ती, कमला कुमारी चोपड़ा, वीता नवल सिंह, शमशेर सिंह ठाकुर, कुलभूषण खरबंदा, बी एल टंडन, बी आर एल सक्सेना, करतार सिंह पवार।

और यतीन्द्र श्रीवास्तव। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत और ये प्रस्तुति थी विविध भारती की। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977 दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।
2: जहां पे सवेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या?
0: 1993 फिल्म।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए दूसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अमजद ने कहीं और दूसरी जगह यूनिवर्सिटी में भी कोई होता है इस किस्म का एक प्ले खेला जो जिसमें अमजद को ए मेरे वतन के लोगों नाम से प्ले खेला था अमजद खान ने, उसको वहाँ ट्रॉफी मिली थी। तो कादर खान ने फिर कहा, यार रमेश तुम हमेशा ट्रॉफी ले जाते हो। मैंने कहा भाई मैं क्या, स्क्रिप्ट अच्छी होती है, ये होता है होता है। तो मैंने कहानी पढ़ी थी कृष्णचंद्र की, जामुन का पेड़। मैंने कहा यार इस पे बड़ा अच्छा प्ले बन सकता है। तो सागर साहब और कादर खान दोनों साथ में खड़े थे
2: जी।
1: तो कादर खान हमारे प्ले में, मैं आग होता हूँ, मैं मेन रोल करता था, मैं कॉमेडियन का रोल करता था, मेन हीरो का रोल करता था।
2: अच्छा।
1: तो वही हम खड़े थे चर्च गेट पे गेल आउट के बाहर, और मैंने कहा यार ये देखो बड़ा अच्छा, कहते यार मुझे दो मैं लिख के दूंगा। मैंने कहा ले लो। जब उसने प्ले लिखा तो मैंने कहा भाई वो प्ले दो यार, कंपटीशन नजदीक आ रहा है। चल रमेश प्ले बहुत अच्छा बन गया, तुम साले हर बार ट्रॉफी जीतते हो, इस बार मैं ट्रॉफी जीतना।
2: हाईजेक हो गया प्ले।
1: हाँ। तो वो प्ले ले लिया उसने।
2: हाँ।
1: अब मैंने दूसरा, मैंने तीन बंदर प्ले खेला
2: जी,
1: तो जिसमें मेरे एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, लेकिन ट्रॉफी कादर खान को मिली।
2: इस बार वो ले गए,
1: ले गए लास्ट। और इसी साल जो है फिर झगड़े हुए, मारामारी, खून खराबा हुआ। मुंशी जी की वाइफ वाइन स्टेज पे,
2: हाँ,
1: के एम मुंशी की वाइफ
2: जी,
1: भारतीय भवन के मालकिन, उन्होंने कहा भाई बस लास्ट ईयर है, आइंदा यहाँ कंपटीशन नहीं होगा।
2: हाँ।
1: और 13-14 साल से 52

0: कंपटीशन चलता आ रहा था या 50 से चलता आ रहा था, और ये ईयर था 68 या 69, वो कंपटीशन बंद कर दिया 68 में।
1: बाद में फिर शुरू हुआ,
0: फिर वो उधर, फिर बहुत बाद में किया, अभी किया
1: जी।
0: फिर वो किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि फिर क्या हुआ कि मैं जब इप्टा में काम करना शुरू हो गया, कि ये हुआ कि आखिरी क्षमा प्ले हो रहा था जो मैं जिक्र कर चुका था आपसे
1: जी,
0: कि ये प्ले था यादगार मुशायरा, दिल्ली का यादगार मुशायरा।
1: तब तक आपकी उम्र क्या थी?
0: अब मैं कॉलेज में पढ़ चुका था, समझिए 23 साल।
1: और ये जो टीनेज रोल और बच्चों के रोल,
0: वो तो बंद हो चुके थे, बहुत पहले पुरानी बात हो गई। तो अब ये जो इनके साथ 68 में मैंने कुछ एक दो प्ले पंजाबी में किए, जो मैं हिंदी में ट्रॉफी ले चुका था, मनमोहन कृष्ण जी के साथ, अचला सिद्धेव के साथ, इनके साथ वो किए, और पंजाबी में वो तुझे आए तुझा पाशी, शतरंज के मोरे को पंजाबी में शतरंज दे मोरे के नाम से खेला
1: जी।
0: और बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा देखने आए थे, और बी आर चोपड़ा ने बहुत हंसते रहे, यश चोपड़ा फर्स्ट रो में बैठे थे, जोर से हंसते थे, और प्ले ख़त्म होते ही उन्होंने कहा बेटा तुम आ जाओ, बी आर चोपड़ा साहब ने कहा मुझसे मिलने आओ। मैं मनमोहन जी के साथ उनके ऑफिस चला गया, बोले तुम पंजाबी पिक्चर मेरे लिए डायरेक्ट करो। उन्होंने पंजाबी में प्ले देखा था। मैंने कहा साहब मुझे तो ग्रामर आती ही नहीं फिल्म की, तो मुझे आप असिस्टेंट रख लीजिए, मैं ग्रामर सीख लूँगा फिर करूँगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो कोई पिक्चर चल नहीं रही हमारी, जब कोई अनाउंस होगी तो तुम आ जाना। तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कम्प्लीट हो जाएगी, और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
1: बिल्कुल।
0: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है, मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आँख से, तो मैं काफ़ी
1: आगे
0: चाहूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो, मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रख लो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
1: जी।
0: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। नेक्स्ट डे मैंने जाके वो गुजराती में प्ले देखा, धुम्मस। संडे था, संडे इनका प्ले होता है जैन कॉलेज में, और अरविंद जोशी रोल कर रहे थे, और उसमें उनका बेटा जो आज हीरो है, तो उसने उसमें अरविंद जोशी मेन रोल भी कर रहे थे, डायरेक्ट प्रवीण जोशी ने किया था शायद। और अरविंद जोशी कौन है, ये शर्मन जोशी के फादर,
1: हाँ हाँ,
0: शर्मन जोशी जो अभी हीरो है इनके फादर। तो वो प्ले मैंने सारा गुजराती में देख लिया, बम्बई में रहता हूँ इसलिए गुजराती सब समझ आती रही, गुजराती दोस्त भी थे, अमृत पटेल मेरा दोस्त था गुजराती का, मेरे नाटकों में उनके साथ काम भी करता था, हिंदी में मेरे साथ खालसा में काम करता था। मैं आया सेट पे, वहाँ कोने में स्क्रिप्ट पड़ी थी हिंदी की, कॉपी लेके पढ़ डाली कोने में, अभी लाइटिंग वाइटिंग चल रही है, एक सेट था बंगले का जिसमें पूरी पिक्चर उस बंगले में ही है, वो पढ़ डाली। अब मैं एकदम क्लियर कट, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
1: यस,
0: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में, फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला एक आने का टिकट, वहाँ जाता 5 आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठन्नी में
1: काम बन जाता था,
0: काम बन जाता।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी
0: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है, बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में, बी आर चोपड़ा की सारी, वी शरणम की सारी,
1: मतलब
0: सारी फिल्में जो अच्छी फिल्में कहलाती थी वो सारी फिल्में मैं छोड़ता नहीं था। पहले दिन जाता था, लाइन लगाता था 5 आने में, वहाँ पे आगे कई बार ब्लैक वाले उठा के पीछे फेंक भी देते थे, छोटा सा दिखता था उठा के पीछे कर देते थे, जो मैं पहला नंबर था तो 25वां नंबर हो जाता था, लेकिन टिकट मिल जाता था। तो वो 5 आने का लेके बैठता था, देखा करता था।

मैं क्रिटिक भी बन चुका था तब तक, बहुत सी बातें, मतलब इस सेट पे जब मैंने सब देख लिया तो पांच चार राइटर वहां थे, अख्तर मिर्जा, अख्तर उलेमान, सीजे पावरी, ये सब वहां पे थे, बी आर चोपड़ा जी भी सेट पे कई बार आते थे, यश चोपड़ा जी खुद थे, तो ये सेट पे सब रहते थे, क्योंकि एक महीने की पिक्चर है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, देख लो कोई लास्ट मोमेंट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो सबकी ड्यूटी थी कि आप सुबह टाइम पे आ जाओ 9:30 और शाम तक 8 बजे तक चलती शूटिंग रहो सब। अब साहब वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया कहाँ अटका हुआ है, तो मैं भी अपना, क्योंकि मैं धूमत भी देखा ये भी देखा, और वो क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम क्या समझ रहे हैं, ये क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों, उनकी क्वेश्चन जो थे उसका आंसर मैं सोचता जा रहा हूँ, और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। अचानक वो बी आर चोपड़ा साहब ने मुझे डांट दिया, है कब कल का बच्चा, मैं कोने में चला गया, मतलब मैंने कोई गलत बात कर दी, बड़े बड़े राइटर आप डिस्कस कर रहे हैं, बीच में अपनी होशियारी दिखा रहा हूँ, ये उनके हिसाब से था, कोने में बैठ गया मैं। जब सब डिस्कशन हो गई, बात बनी नहीं उनकी, फिर उन्होंने कहा यहाँ किसी ने कुछ बोला था, मैंने स्कूल के बच्चे की तरह हाथ ऊपर किया, सर नीचे ही रखा, और उन्होंने कहा हाँ बोलो, तो मैंने कहा ऐसा कर ले तो कुछ जो भी छोटी मोटी, तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे, यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 वर्ष से रखकर कोने में बैठा, साहब आगे चले, फिर एक जगह और रुक के कहीं इसी तरह डिस्कशन हुई, मैं भी अपने उस तरह ही सोचने लग गया, जब ये सब बोलते रहे इनका, मैं जल्दी कंप्यूटर दिमाग की तरह, राइटर बड़े क्या कह रहे हैं इसमें से चीज निकालूं, करते करते करते करते मेरी चीज मुझे समझ आई कुछ कुछ।

0: समझ आई
1: तो मैंने फिर चुपचाप बोला नहीं, शोर नहीं किया, हाथ ऊपर किया। तो चोपड़ा साहब ने कहा हाँ बोलो बेटे। मैंने कहा ऐसा कर ले तू। सारे राइटरों ने कहा बहुत अच्छे बेटा, वाह
2: वाह,
1: यही चाहिए था।
2: क्या बात है।
1: और वो सब सीनियर राइटरों ने अप्रूव किया, ओके होगी चीज। अब साहब लास्ट डे जब था तो सुबह से हम लोगों ने काम शुरू किया, सेट टूटना था नेक्स्ट डे।
2: हाँ हाँ।
1: और एंड में लोग सब थक के सो गए। कुछ शॉट यश जी ने लिखवा दिए थे, ये शॉट भी लेने हैं, विदाउट आर्टिस्ट है।
2: हाँ।
1: उस वक्त मैं और ऑपरेटिव कैमरामैन रोमेश भल्ला जी थे।
2: जी जी।
1: हम दो रह गए थे, बाकी सब सो चुके थे, मतलब फुल 24 घंटे काम कर चुके थे ना।
2: हाँ।
1: लेकिन हम तो अभी अलर्ट थे
2: जी,
1: हम तो अभी बच्चे थे, जोश वाले। तो हमने वो शॉट यश जी के पेपर लिया।
2: हाँ।
1: और वो शॉट ले लिए।
2: वाह वाह।
1: तो यश जी की अचानक आंख खुली तो उन्होंने कहा ये वो यार वो शॉट ले लो। तो यश जी हमने लिए, आप देख लीजिए। पर वो तो उस वक्त तो देख नहीं सकते। तो उन्होंने कहा जी जैसा आपने लिखा वैसा लिया, ऐसा घुमाया कैमरा, ये यूं गोल गोल कैमरा घूमता है सेट के ऊपर। तो नीचे लोग सोए थे इसलिए हमको थोड़ा ऊपर रखना पड़ा। ये बताया उनको कैसा किया, और ये भी ले लिया वो चीज़, उसका क्लोजअप भी ले लिया, उसका भी दरवाजे का जो आपने कहा वो ले लिया, ये ले लिया, सब ले लिया। और रमेश वाला पुराना आदमी था उनका जो ऑपरेटिव कैमरा, उनको भरोसा था कि ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे। और वो जो कुछ जो बातें मैंने बोली भी थी उनको मेरी समझ पे थोड़ा सा यकीन भी हो चुका था। अलबत्ता वो सेट टूट गया नेक्स्ट डे, उन्होंने चीज़ें देखी, वो पिक्चर में लगी हुई भी है, वो वाले शॉट लगे हुए। अब साहब वो पिक्चर कम्प्लीट हो गई एक महीने की। अब मैं खाली हो गया, अब उनकी कोई और पिक्चर चल नहीं रही, और मैं चला गया अपना, अपने आप को कुछ समझने लग गया था कि अभी है नहीं, मैं कहीं और काम में, तो कहीं और काम करने लग गया। कोई एक जगह जिसके यहाँ कुछ छोटी पिक्चर बन रही है उसके साथ दो चार दिन काम कर लिया। एक और पिक्चर बाहर वाला कोई आया था, उसने कहा मैं फॉरेन में पिक्चर बनाना चाहता हूँ ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, तो वो कर रहे थे। तो इतने में मैसेज आया यश जी का। यश जी का मैसेज ऐसे आया कि मैं गया था, मेरा एक प्ले ओपन हो रहा था तन्हाई, जिसमें शौकत कैफी रोल कर रही थी मेन फिल्म एक्टर, रिटायर्ड फिल्म एक्ट्रेस का,
2: शबाना आजमी की माँ।
1: हाँ। और उसमें भरत कपूर उनका बेटे का रोल कर रहा था
2: जी।
1: तो मैंने कहा कि आप प्ले देखने आई, तो वहाँ शशि कपूर शूटिंग नीचे कर रहे थे, उनके पास भी गया, मुझे पता है थिएटर के बहुत वो हैं। तो मैंने कहा शशि जी ऐसा प्ले है मेरा, आप देखने आइए। तो कह रहे हैं बेटा मैं पहले शो पे कभी आता नहीं हूँ, चार पांच शो के बाद आता हूँ। बोला आज देख लीजिए, फिर पांचवा मेरा फिर देख लीजिए, गलतियाँ ही पता चल जाएंगी हमको, समथिंग लाइक दैट। तो अलबत्ता वो भी आ गए देखने, प्ले तेजपाल हॉल में खेला
2: जी।
1: तो प्ले देखने के बाद यश जी ने बोला बेटा तुम कल राजकमल स्टूडियो आ जाओ। फिर आहिस्ता से कहा मैं भाई साहब से अलग होके कंपनी अपनी खोल रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा ऐसे फॉरन का एक आदमी आया, वो चाहता है कि फिल्म बनाऊँ यहाँ पे। नहीं नहीं बेटा तुम आओ मेरे पास। तो नेक्स्ट डे में आया, इन्होंने अपनी यशराज फिल्म शुरू करनी थी। वहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसे पिक्चर बना रहा हूँ, मैं तीन पिक्चर बनाऊँगा, एक में ये मेरा चीफ असिस्टेंट होगा फलाना आदमी, फिर दूसरा बताया ये असिस्टेंट है मेरा, ये दूसरी पिक्चर में जो प्राण मेहरा डायरेक्ट करेंगे उसमें ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, और एक पिक्चर मनमोहन कृष्ण डायरेक्ट करेंगे जिसमें तुम चीफ असिस्टेंट होगे।
2: ओके।
1: तो मैंने कहा मैं असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, चीफ असिस्टेंट बनने से मेरा कोई नहीं, मुझे आप थर्ड असिस्टेंट रख लीजिए, पाँचवा रख लीजिए, मैं आऊँगा। तो मैं उनको फॉरेन वाले को मना कर दिया कि साहब मैं इनकी रेगुलर कंपनी शुरू हो रही है तो मुझे नौकरी मिल रही है, मैं जा रहा हूँ।

0: कुछ जैसी तप यहाँ पे पालील पे रहने आ गए थे
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें उसके लिए, असिस्टेंटी के लिए। तो मैंने हल्का सा, मैं बीच में थोड़ी देर, मैंने बताया आपको, सच्चे वाले में नौकरी की, जब मैं प्ले डायरेक्ट करता था ना,
1: हाँ।
0: शफी नामदार, फारूक शेख वगैरह, तो सच्चे वाले में नौकरी भी करता था, वो टेम्परेरी जॉब था
1: जी।
0: तो वो 15 महीने मिला, 3-3 महीने का एक्सटेंशन होता था
1: जी जी जी।
0: तो 15 महीने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमको नहीं चाहिए आप। तो मैंने पार्टी दी लोगों को कि मैं फ्री हो गया, ये कुलदीप वगैरह सबको पार्टी दी कि अब मैं फ्री हूँ।
1: हाँ।
0: तो फिर मैं आके इप्टा में आके मैंने ये नाटक शुरू किए थे कि आज़ाद हो गया, मेरे को कोई ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं। तो अब जब मैं ये सब कर रहा था ऑलरेडी, तो मुझे वो जो 400 रुपये महीना मिलता था सच्चे वाले में, तो जो भी यश जी ने मुझे तनख्वाह बोली, तो मैंने यश जी वहाँ क्लर्की के 400 रुपये मिला करते थे, यहाँ तो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तो देख लीजिए जो देना है आप दे दीजिए, मैं ले लूँगा। तो उन्होंने मेरी तनख्वाह 400 रुपये रखी
1: जी जी। वाह वाह।
0: तो 400 रुपये का ये फ़ायदा था कि कोलीवाड़ा से पाली हिल तक 1 रुपया लगता था टैक्सी का।
1: अच्छा।
0: मैं टैक्सी में बैठ के आता था उनके घर में 1 रुपये में, तो 30 रुपये महीने का मेरा वो खर्चा था। बाद में उनकी गाड़ी होती थी।
1: हाँ।
0: उनके साथ राजकमल स्टूडियो जाते थे उनकी गाड़ी में बैठ के, वापस उन्हीं के घर पाली हिल पे आते थे, फिर मुझे जाना होता साधना स्कूल में रिहर्सल के लिए ड्रामे की। वो अपनी गाड़ी भेजते थे, बेटा रामचंद्र को ले जाओ गाड़ी जाओ, तेरे को छोड़ के आ जाएगा, वो मुझे वहाँ छोड़ देता था, मैं आ जाता। तो इन चीज़ों में जो लिंक वाले बातें याद आती हैं याददाश्त में, हुआ ये कि कुछ बम्बई बंद हो गई, हम वापस जब जाते थे ना, तो ड्रामे की जो रिहर्सल कर रहे थे उसमें फारूक शेख, भरत कपूर,
1: हाँ,
0: रमन कुमार,
1: हाँ,
0: तो ये सब काम कर रहे थे। तो हम लोग बस की स्ट्राइक हो गई तो ट्रक में जाया करते थे, तभी एक जमाना था थोड़ी देर तक BST की स्ट्राइक हो गई थी
1: जी जी।
0: तो ट्रक वाला 4 लेता था या 8 लेते थे, और भरत कपूर ने उन दिनों एक फिल्म में हीरो का रोल किया था, वो पिक्चर का नाम था गुप्त ज्ञान, वो सेक्स के बारे में कुछ, ये डॉक्टर थे। जैसे हम ट्रक में बैठते थे, कुछ लोग ऐसे मजदूर टाइप के लोग पास आते थे इनके, डॉक्टर साहब हमने आपसे कुछ पूछना है। तो एक्ट

0: देखिए एक्चुअल डॉक्टर समझने लग गए और हम लोग सब जो है चुप बैठे थे वो, तो हम दादर सब लोग उतरते थे वहाँ से पैदल खालसा कॉलेज तक, वहाँ भाजी पाव वगैरह खाते थे। फारूक शेख अपना चला जाता था बाइकला अपने घर मेमनी बिल्डिंग में, बस में बैठ के, और मैं कोलीवाड़ा पैदल वहाँ से किंग सर्कल से घर पे। तो ऐसा जिंदगी जो चल रही थी, नाटक हो रहे हैं साथ में, ये यश चोपड़ा का ये काम शुरू हो गया।
1: ये दाग फिल्म थी
0: ये पहली स्वीट दाग,
1: और आप दाग चीफ असिस्टेंट थे?
0: नहीं, पहले मैं चौथा असिस्टेंट था, तीसरा। तो वो क्या हुआ, जो चीफ असिस्टेंट साहब थे बड़े वाले जो नंबर वन थे, वो उनको इंटीरियर डेकोरेशन कास्ट्यूम की बहुत समझ थी, वो ज़्यादा उस तरफ का करते थे। तो काम जो है वो मुझे, क्योंकि नाटक वाला हूँ, डायलॉग देना, रिहर्सल करवाना,
1: चेंजेस करना
0: वो सब मुझे वो था, कलर की करना मैं लिखता था, कंटिन्यूटी वो सब करना, तो ये सारा काम मैं करता था। अलबत्ता एक साहब गए, उसके जो दूसरे साहब थे वो यश जी के साथ बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते रहे, वो नाटक वाले नहीं थे, सिनेमा वाले नहीं थे। उधर बीए जब इन्होंने इनके संग की थी, वहाँ नौकरी कर रहे थे, यश जी ने बुला लिया, अपना दोस्त है, बचपन से साथ में थे उनके, तो वो यहाँ आ गए। अब उन्होंने कहा देखो वासुदेव धीर, भाई देखो पैसे का मामला है, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, ये तुम संभालो। तो उनको कैश ये सब प्रोडक्शन वो सब पैसे का मामला उन पे डाल दिया, वो बाकी चीज़ें कर कास्ट्यूम वगैरह कर रहे थे और सेट का देखते थे और कलर स्कीम का सोचते थे, और ये सारा काम आता था मुझे, टेक्निकल मेरे ऊपर आ गया। क्लैप भी देता था, कंटिन्यूटी भी लिखता था, डायलॉग भी देता था,
1: हाँ।
0: तो वो सारी चीज़ों से मेरी जो है ना
1: ट्रेनिंग होती,
0: ट्रेनिंग हो गई।
2: अब

चाहे लग जाए कैया मैंने तेरी बाह पकड़ ली मन तुझ पे नियत कर ली।

चाहे रब रोके या दुनिया, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। अब चाहे रब

0: साहब करते करते पहले ही मीन, और साथ में एक पिक्चर में ऑलरेडी राजेश खन्ना के साथ पहले वहां कर लिया था, और राजेश खन्ना के साथ काम करते हुए उधर ये था कि ऐसा कुछ हो गया था कि डब्बा जो फिल्म इंडस्ट्री में खाना आता था, खाना इन लोगों ने बंद कर दिया था, क्योंकि लोगों ने शिकायत लगाई किसी को चिकन नहीं मिला, किसी की टांग नहीं मिली मुर्गी की। उन्होंने कहा भाई मैं पैसे दूंगा, अपने आप खाओ, ठीक है, ये शिकायतें मत करो, नाटक मत करो मेरे। तो हम लोग कैंटीन में जाके खाना लग ले, और गुरनाम सिंह जो था हमारा एक्टर था वो इनका सेक्रेटरी था राजेश खन्ना का, उसने आया, उसने कहा काका नाराज हो रहा है रमेश, तू क्या क्या कर रहा है? मैंने खाना खा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तेरे लिए खाना मंगाया उसने, डब्बा घर से आया हुआ है, वो ले गया मुझे वहाँ पर। तो वो जो हम साथ लंच में खाना खाते थे, जो हमारी गपशप होती थी, सिनेमा की बातें होती थी, चीज़ों की बातें होती थी, और मैं जैसे ही थर्ड बेल बजे उससे पहले मैं दरवाजे पर जाके अंदर लेट ना हो जाऊं, और एक दिन मैं लेट होगा तो मुझे रवि चोपड़ा ने पकड़ लिया था कि देखो काका के साथ खाना खाते हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट आओ, सॉरी आंदाजी हो। तो ये आप फिर पिक्चर दाग में राजेश खन्ना
1: हीरो हो गई।
0: हाँ, और दाग जो चल रही है तो मेरी इम्पोर्टेंस बहुत थी, बिकॉज राजेश खन्ना बात सुनता है, डायलॉग करता है, रिहर्सल करवा रहा है मेरे साथ, कई बार बहुत लंबी चीज है तो बोलो रमेश लिख दो वहाँ पे सामने, रीडिंग करवा लो मुझसे और सामने लिख भी दो। अचानक में नजर मुझे पड़ेगी, बहुत लंबे लंबे डायलॉग है, कोर्ट सीन में लंबे डायलॉग थे, तो वो मैंने लिख दिए वहाँ पे, उन्होंने कोर्ट सीन में आता था ग्लांस करके वो देख भी लिया। अगर आप अब मैं बोल चुका हूँ तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि राजेश खन्ना की यूँ क्यों गया।
2: हाँ।
0: तो ऐसा भी था, तो अलबत्त खैर वो दोस्ती का जो है पूरा फायदा जो हुआ मुझे राजेश खन्ना की। अब मुझे यशजी ने कहा कि तुम पिक्चर डायरेक्ट करो, मैं
1: तो लेकिन दाग जब रिलीज हुई तो वो तो सुपरहिट हो गई,
0: सुपर
1: बहुत चली,
0: बहुत चली,
1: गाने बहुत चले,
0: बहुत चले।

0: और साथ में गुलशन राय जी ने जो फाइनेंस करते थे
1: जी,
0: उन्होंने अपनी पिक्चर यश जी को दी जो शीला बनाने के लिए,
1: सेकंड जो दाग के बाद,
0: दाग के बाद उसमें देवानंद साहब थे, और देवानंद साहब, राखी, हेमा मालिनी जी, और हम दार्जिलिंग में शूटिंग वूटिंग करने गए, प्राण साहब थे, प्राण एक्टर साहब, इन सब के साथ मेरी बड़ी तालमेल, क्योंकि मैं डायलॉग करवाता था तो हो गया। तो खैर उसमें जो भी एज स्टेज का आदमी कुछ बातें बोलता था तो मुझे जवाब ये मिलता था, कमर्शियल पिक्चरों में ऐसा होता है
1: जी जी,
0: तो मेरे कोई क्रिटिक वाली बात मैं बोलता था ना तो वो मुझे वो कर दिया जाता था। तो वो जब पिक्चर रिलीज हुई तो बोले, पहले जब हम देखने जाते हैं शोज थोड़े से अटेंड करते हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ काट डालें, कुछ अभी भी ऐड कर डालें,
1: ट्रायल शोज।
0: तो वही जगह जो मैं बोला करता था कि ये चीज़ ऐसी क्यों, ये क्यों, ये आदमी बम्बई में पुलिस वाला है, वो दार्जिलिंग क्यों आएगा, ऐसा कुछ अजीब से बोलते थे पॉइंट मेरे, वो थिएटर के पॉइंट थे, मतलब मीन में एक निकालने वाले, जानबूझ के आप गलती निकालते ना, वो कहते हैं आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो उस तरह के पॉइंट होते थे
1: जी जी,
0: तो वैसे ही पॉइंट मैं बोल दिया करता था। तो वो गुलशन राय जी ने, मैंने कहा था वो पॉइंट जो मैं आप लोगों से कहता भी था वो तो वो ही है, तो इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी पिक्चर, क्योंकि मैं 5 आने में पिक्चर है बहुत, देखिए ये जो आप अप्लॉज समझ रहे हैं हूटिंग हो रही है, ये क्यों होगा ऐसा, ये हंस नहीं रहे हैं।

0: ये ऐसा है, ये आपको हूट कर रहे हैं।
1: जी जी,
0: तो इंटरकॉलेजिएट में भी हूटिंग होती थी हम लोगों के प्लेस में,
1: बिल्कुल
0: हमको पता था। तो अलबत्ता एनी वेज वहाँ देवानंद साहब के साथ दोस्ती हो गई थी। देव साहब ने कहा, यश तुम रमेश को पिक्चर दे रहे हो या मैं नवकेतन में दूँ?
1: अरे बाप रे।
0: तो जैसे ने कहा पूछिए रमेश से, मैंने ऑलरेडी बोला है सब्जेक्ट, उन्होंने बोला हुआ था पहले मुझसे बोला हुआ, पूछो मैंने बोल दिया कि भाई तुम अपनी अभी स्क्रिप्ट ढूंढो। तो बोले ठीक है, वरना रमेश मैं बैठा हूँ। अलबत्ता अगली पिक्चर अब वो नहीं चली, तो अब गुलशन राय की पिक्चर पहले बनानी थी हमने।
1: हाँ हाँ।
0: तो दीवार पिक्चर की पहले तो ये सोच रहे थे कि राजेश खन्ना के साथ अगली पिक्चर बनाएं।
1: हाँ।
0: तो सलीम जावेद ने सब्जेक्ट सुनाया।
1: आप थे वहाँ पर जब?
0: मैं था,
1: नरेशन हुआ।
0: नरेशन में था मैं,
1: तो दीवार का पहला नरेशन हो रहा है।
0: पूरा पूरा नरेशन में था मैं थ्रू आउट
1: जी।
0: और मैं ऐसा थोड़ी देर में बोलता था, एक चीज हुई, उन्होंने हाथ पे लिखा मेरा बाप चोर है, लिखा बच्चे के हाथ में।
1: हाँ।
0: मैंने 15 हफ्ते श्योर ऐसा बोलता था मैं। तो सब जितने लोग थे मेरी तरफ लुक करते थे कि चमचागिरी कर रहा है।
1: हाँ।
0: फिर आगे कुछ गया, एक और हाईलाइट आई।
1: हाँ।
0: मैं यहाँ बैठा हूँ वो फाइट वाले गोडाउन में बैठा हूँ।
1: हाँ, तुम मुझे
0: हाँ, कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ बैठा
1: हूँ, बैठा हूँ।
0: हाँ, समथिंग लाइक दैट। मैंने 25 हफ्ते फिर मुझे मेरे एडिटर साहब ने चुप कराया, रमेश प्लीज नरेशन में ये सब मत बोलो।
1: हाँ।
0: चुप रहो, पहले सुन लो, एंड में डिस्कस करेंगे। ऐसा करते करते मैं 50 हफ्ते तक जा चुका था सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट सुनते सुनते
1: 50 हफ्ते फिल्म चलवा दी।
0: चलवा दी
1: जी।
0: अब साहब कास्टिंग की बात आई, राजेश खन्ना की उस डेटे नहीं थी।
1: हाँ।
0: और इन्होंने कहा कि भाई ये अमिताभ बच्चन उन दिनों मिलने आया करते थे यश जी को
1: जी।
0: पालील पे, और मुझे भी कहा करते थे, मेरे को शॉर्ट बुलाते थे, तलवार का।
1: हाँ।
0: इंग्लिश शॉर्ट
1: शॉर्ट
0: शॉर्ट बोलो यार, एक पिक्चर मेरे साथ करे। अब हाँ। तो मैं बड़ी बड़ी पिक्चर, फिर इनकी पिक्चर हिट भी हो गई थी वो।
1: हाँ। जंजीर।
0: जंजीर। तो अब तो मैं हीरो हिट हो गया हूँ।
1: हाँ।
0: तो यश जी ने ऐसा गुलशन राय से कहा, तो उन्होंने अपना हिसाब से कहा कि यार वो बड़ा हीरो है राजेश खन्ना, वेट ना कर लें।
1: हाँ,
0: समथिंग।
1: हाँ, हाँ।
0: कुछ छोटा मोटा, सलीम जावेद भी साथ में थे। हमने कहा लेकिन ये शूट ज़्यादा करता है अमिताभ बच्चन।
1: हाँ।
0: अगर आप जंजीर देखें उस हिसाब से ये ज़्यादा शूट करेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मान गए। और इनकी डेटें भी हमको खूब मिल गई अमिताभ बच्चन की। शशि कपूर जो थे।
1: हाँ, वो तो बड़े थे, लेकिन
0: बड़े थे वही था। हाँ। उनको छोटे भाई का रोल करना था।
1: हाँ।
0: अब रोल उनका थोड़ा सा छोटा था इनके कंपैरिजन में, मेन हीरो ये थे। तो जो हम लोग फिल्म वाले जो थे थोड़ी सी कारिस्तानी करते हैं
1: जी,
0: एक दो आदमियों को भेजा गया जहाँ कहीं शशि कपूर शूटिंग कर रहा है।
1: हाँ।
0: अरे साहब दीवार की स्क्रिप्ट सुनी, जैसा दीवार का आपका सब्जेक्ट था ना, उससे बेटर रोल है कभी कभी मैं आपका। दोनों पिक्चर यश चोपड़ा कर रहा है, एक खुद के लिए एक गुलशन
1: राय के,
0: ऐसा कुछ लोग बोल देते
1: कन्विंस करने के लिए।
0: हाँ, कोई बोल देता बीच डाल रहे कोई भी गया
1: जी जी जी,
0: जो सीनियर किस्म का आदमी है, जो बोलने में ऐसा ना लगे कि
1: मैसे
0: बनावटी। तो वो साहब फिर शशि जी ने कहा यार तुम मुझे रोल सुनाते नहीं हो, तो उनको रोल सुनाया गया।
1: हाँ।
0: कि भाई देखिए लेंथ वाइज वो है, पर छोट लो मैं इसका बड़ा भाई लगूँ छोटा भाई लगूंगा कहीं, वो ऐसा कर लेंगे, बालों का ये कर लेंगे, उसका ये कर लेंगे। जो यश जी ने कन्विंस किया वो मान गए, ये तुम्हारे पास बड़े अच्छे सीन है। इन लोगों ने भी सलीम जावेद ने कहा अगर आपको ट्रॉफी ना मिलेगी हम लाइन छोड़ देंगे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ना मिला, तो उनको मिला,
1: बिल्कुल
0: रोल भी मिला उसमें।
2: ये भाई मैं हूँ और ये भाई तुम हो, हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया? आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
3: मेरे पास माँ है।
0: अमिताभ बच्चन का भी निकलाया तो पिक्चर हमारी सुपर डुपर हिट हो गई साहब।
1: और आप इस फिल्म में असिस्टेंट थे?
0: असिस्टेंट नहीं, इसमें चीफ असिस्टेंट हो गया था ना अभी।
1: आप चीफ असिस्टेंट हो गए?
0: अब हो गया सब जगह। तो वो मैंने कहा ना, पहली पिक्चर करते करते दाग में ही चीफ असिस्टेंट का टाइटल मिल गया था मुझे, जो सब काम मेरे ऊपर जब आ गए थे
1: तो सारी चीजें सब
0: सारे उसमें मेरा टाइटल है चीफ असिस्टेंट रमेश तलवार।
1: दीवार में गाने नहीं थे शुरुआत?
0: गाने में शुरू में दो गाने थे, एक नौकरी मिलती है और एक नौकरी छूट जाती है, दो गाने थे उसमें, शशि कपूर और पूनम बिलो, दो ही गाने थे। वो कौन थे उसमें उनकी हीरोइन?
1: नीतू सिंह।
0: नीतू सिंह, बाद में उन्होंने पूनम के साथ भी काम किया, तो इसलिए मुझे शशि कपूर पूनम। हमने ट्रायल किया इनके लिए, क्या होता था जब पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तो राजकमल में ट्रायल होता था प्राइवेट, सिर्फ री रिकॉर्डिंग के लिए इनके लिए अपने
1: मंगेश देसाई
0: री
1: रिकॉर्डिस्ट, बहुत बड़े
0: बहुत

0: बड़े मतलब लोग उनके मानते थे,
1: जी
0: उनकी जजमेंट भी कमाल की थी
1: जी,
0: जो कहते थे उतनी पिक्चर उतनी चलती थी।
1: वाह वाह वाह।
0: और उस ट्रायल में किसी को बुलाया नहीं जाता था,
1: हाँ।
0: अकेले होते थे और मेरे जैसा कोई एक असिस्टेंट और जज जी खुद बस। उन्होंने पिक्चर देखी तो जैसे हुए तो हम निकले बाहर, जैसे बात वो करते होते फौरन कहने लगे, भाई पिक्चर तो बहुत अच्छी है आपकी लेकिन 15 हफ्ते से ऊपर नहीं चल सकती।
1: अरे बाप रे।
0: तो जजी ने कहा क्यों भाई? बोला म्यूजिक नहीं है, हमारी फिल्मों में म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैंने कहा एज इट इज मुझे लगता है 50 हफ्ते तक चलेगी।
1: हाँ, वो जो आपने नरेशन के समय
0: वही क्या। तो कहने लगे नहीं बेटा वो थ्योरी वाइज ठीक है लेकिन इस टाइम पे रिस्क नहीं लेना होता है। अभी भी गाने डाल दो। तो हम लोगों ने 3-4 गाने रिकॉर्ड किए, 3 गाने और रिकॉर्ड किए। एक डॉक्स में होता है देवन वर्मा, गेस्ट आर्टिस्ट बुलाएंगे, डॉक्स पे गाना शूट किया, एक और गाना था और एक कवाली।

0: एक जो इनका था देवेंद्र वर्मा वाला, वो लगता है जबरदस्ती घुसाया हुआ है, हम लोगों ने वो काट दिए,
1: कवाली भी काट,
0: लेकिन कवाली हमको पसंद आई थी
1: जी।
0: तो सलीम जावेद को पिक्चर दिखाई, उन्होंने कहा साहब ये कवाली तो उसमें नहीं रह सकती, वो निकाल दीजिए। तो यश जी ने कहा भाई वैसा है मंगेश जी, नहीं नहीं नहीं हम दीजिए, हम तो ये। अब साहब उस वक्त क्या था, यश जी बड़े भले आदमी थे, गुलशन राय भी बड़े भले आदमी थे, ये ज़्यादा उस वक्त बोलते नहीं थे, लेकिन सलीम जावेद सुपर हिट थे उस वक्त
1: जी,
0: और ये बोलते थे, इनका अपनी बात कहलवाते थे और करवाते थे
1: और मनवाते थे,
0: मनवाते थे। तो अब उनके सामने सिर्फ मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा देखिए जावेद साहब, सलीम साहब, मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था ये पिक्चर इतनी चलेगी, 15 हफ्ते 25 हफ्ते 50 हफ्ते कहा था, बोले लेकिन चली तो 104 हफ्ते ना।
1: हाँ। क्या बात है।
0: हाँ। तो मैंने कहा चलिए वो सही। हाँ। तो आप, मैं भी ये चाहता हूँ कि ये पिक्चर भी 50 हफ्ते जरूर चले।
1: हाँ।
0: तो आप प्लीज। तो कहने लगे ठीक है, हम आपकी अगली पिक्चर नहीं करेंगे, गुलशन राय से भी कह दिया और यश चोपड़ा से भी कहा,
1: सिर्फ इस कबाली की वजह से।
0: हाँ, हम फिर अगली, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मत कीजिए, आपको भी बहुत प्रोड्यूसर मिलेंगे, हमको भी बहुत राइटर मिलेंगे।
1: अरे बाप रे।
0: अब ये बात यश जी भी चुप है, गुलशन जी भी चुप है, और मैंने कह दिया ये बात। और देखिए साहब, जैसे हम बाहर निकल रहे हैं साथ में, तो जावेद साहब कहने लगे, रमेश जी बुलाते, रमेश जी आप कैसे इपटा के एक्टर हैं डायरेक्टर हैं, आपने तो हमारे पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी।
1: ओ
0: कवाली के बदले कवाली मार दी, कुल्हाड़ी मार दी के बदले बोला आपने तो हमारे पाँव पे कवाली मार दी।
1: अरे गजब, क्या डायलॉग,
0: ये डायलॉग बोला
1: जी।
0: मैंने कहा साहब मजबूरी है, और फिर बाद में उन्होंने देखा, बाद में माने भी, और अगली पिक्चर उन्होंने हमारे साथ की भी।
1: लेकिन कवाली तो हटा दी थी ना?
0: नहीं हटाई
1: जी,
0: नहीं कवाली नहीं हटाई, रही
1: जी,
0: वो बाकी दो गाने काटे देवन वर्मा के, शुरू में रिलीज से पहले काट दी, कवाली रही। तो वो इस बात पे माने, वो मतलब अंदर से हमारी आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुरू हो चुकी थी। अब जब इन्होंने मेरी, मैंने फिल्म कर रहा था तो जमाना के लिए उन्होंने सोचा, जमाना फिल्म के लिए, कि भाई ये फिल्म जो है, ये पिक्चर पहले शायद बना रहे थे मोहन कुमार,
1: हाँ हाँ,
0: प्रेम जी के लिए, और उसमें अमिताभ बच्चन थे और शशि कपूर थे शायद, या कोई और थे, अमिताभ बच्चन शशि कपूर ही शायद थे, और प्रेम जी प्रोड्यूसर, वो अनाउंस हुई है स्क्रीन में, उसके फुल पेज भी आया था, और नाम कुछ और रखा था
1: जी,
0: ए से नाम रखा था, मोहन कुमार की पिक्चरों का नाम ए से होता था, बाद में कुछ आपस में जो भी होगा नहीं बनी पिक्चर, इनके पास स्क्रिप्ट थी,
1: और आप तो ऑलरेडी डायरेक्टर बन चुके थे।
0: मैं बन चुका था
1: तब तक, तो बसेरा
0: बसेरा आगे थी। हाँ। बसेरा आगे थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए, मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे, तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है करेंगे आप, मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा, देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
1: हाँ
0: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: तो अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिंपल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी
1: जी जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में,
1: हाँ,
0: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है ये उनके जहन में था, और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है ख़राब हो चुका था, ख़राब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी, मैंने कहा यार वही स्मगलिंग वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं।

0: कोई और करियर तो बेटर है आपके लिए
1: हाँ
0: भाई। जब आप फिल्म करेंगे और सलीम जावेद की स्क्रिप्ट होगी तो आप सोचिए, डायलॉग नहीं लिखे होते, स्क्रीन प्ले तैयार था।
1: जी
0: अब तो डायलॉग लिखने हैं इसमें, डायलॉग लिखे होंगे तो फिर आप सोचिए।
1: जी।
0: तो साहब मैंने कहा फीस क्या देंगे? कहने लगे भाई फीस तो कोई डायरेक्टर हमसे हमारे पास है ऑलरेडी जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए ले रहा है, तो आपको भी वही दे देंगे। तो मैंने कहा आपने हमसे अभी कितने पैसे मांगे थे पिक्चर के? बोले 21 लाख। तो मैंने कहा 21 लाख, 10.5 लाख सलीम साहब के, 10.5 जावेद साहब के, और डायरेक्टर 2-2.5 लाख देंगे तो पिक्चर अच्छी कैसे बनेगी?
1: क्या गजब बात है। फिर
0: तो साहब आप सोचिए। बोले नहीं, हमको 21 अभी मिले नहीं हैं, हम 21 मांग रहे हैं, अभी तक 14 मिले हैं। अच्छा 7 लाख दे दीजिएगा। ये उसमें पार्टनर भी थे उस पिक्चर,
1: अच्छा।
0: क्योंकि जो फाइनेंसर था वो इनके पास आया था,
1: हाँ
0: क्या आप कोई प्रोड्यूसर खड़ा कर दीजिए, आप खुद प्रोड्यूस भाई। तो इन्होंने बाद में खुद प्रोड्यूस भाई नहीं करना चाहा, किसी और जगदीश शर्मा जी को पिक्चर दे दी। लेकिन छत्र छाया इनकी कंपनी, ऐसा कहना चाहता है इनकी पिक्चर। तो मैंने कहा भाई मैं मुझे 7 ही दे दीजिएगा, मैं जाता हूँ। तो बोले आपने कहीं जाना था क्या? कहा आपने मिलकर नाटक की रिहर्सल है, जाइए ना रिहर्सल पे, जाइए ना, फिर क्यों बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन करके कुछ ऐसा डायलॉग मार के, एक वन वन लाइनर मार के मैं भी चला गया। तो अलबत्ता उन्होंने, मैं सागर सर्दी का फ्लैट था जुहू पे,
1: जी
0: टेरेस फ्लैट था, वहाँ कुछ रीडिंग वीडिंग थी वगैरह, सब लोग आए हुए थे। जावेद साहब को ऐसा था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, और जावेद साहब वहाँ पे आए
1: पीछे से।
0: हाँ थोड़ी देर के बाद, जब मेरे हो गया काफ़ी बाद में, उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया होगा
1: जी
0: कि ये पिक्चर के लिए बेटर तो यही है अगर ये करे तो। और मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी, सच बात ये है,
1: हाँ
0: प्राइस इसलिए बोला था कि मेरी ज़्यादा इच्छा नहीं थी।
1: करेक्ट है।
0: और मैंने बाकी पिक्चरें जो की थी वो परसेंटेज पे की थी कि पार्टनर बना लो। अपना बसेरा में भी 1/3 पार्टनर था मैं, और यजी ने भी मुझे सवाल में 1/3 पार्टनर बना लिया था,
1: जी
0: और ऐसा ऐसा इस तरह का काम, और जो आएगा खा लेंगे आपस में ऐसा। तो आए और उन्होंने कहा भाई प्राइज लेना तो कोई आपसे सीखे।
1: ओए
0: मुझे समझ नहीं आया। अब मैं थोड़ा सा उदास था कि वो मान गए हैं, और थोड़ा सा ये था कि मेरे टाइप की पिक्चर नहीं
1: हाँ
0: है। अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है,
1: जी
0: ये पिक्चर अच्छी बने। और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई,
1: अरे बाप रे।
0: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
1: ये लो
0: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
1: हीरोइनें भी हैं।
0: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए। अब साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी।
2: रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आपने सुनी। ये बातचीत अभी अधूरी है, बातचीत जारी रखेंगे अगले हफ्ते उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है जुबैर खान।
3: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनके

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह

0: 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: उधर केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सुरक्षा तथा निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकाल, यानम और माहे में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये फैसला लिया गया है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 पर आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी आई द्वारा विकसित मिशन दृष्टि को अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की एक प्रमुख उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति जुनून का प्रमाण है। उन्होंने गैलेक्सी आई के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई दी। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद यह लगातार 3रा महीना होगा जब ओपेक प्लस देश अधिक उत्पादन करेंगे। अमेरिका ने निक स्टीवर्ट को ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए काम कर रही राजनयिक टीम के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की टीम में शामिल निक एक अनुभवी नीति विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान विदेश विभाग में ईरान से संबंधित मुद्दों पर काम किया है। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 18वें ओवर में 9 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उधर अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से शाम 7:30 से होगा। आज पूर्वोत्तर भारत, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। 5:30 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण। 6:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर और 7:15 पर। हम आपके लिए लेकर आएंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। 7:25 पर प्रादेशिक समाचार के लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र और 7:50 समय होगा आपके ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद का।

दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या आप सुन सकते हैं रात्रि 8:45 पर और रात्रि 9 हम आपके लिए लेकर आएंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। 9:15 पर गजलों का कार्यक्रम महफिल सजेगी और 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम छाया गीत।

गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10 बजे और 10:30 पर आप सुन सकते हैं हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। 10:55 पर हम जानेंगे कल प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। और सभा का समापन होगा हमेशा की ही तरह रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये था आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल और रतेंद्र भादुरी की आवाजों में। एल्बम का नाम है स्वामी एकदंता। वीरेश दत्त के बोल हैं और संजय राज गौरीनंदन का संगीत है।

अनूप जलोटा की आवाज़ में अभी आपने सुना एल्बम श्याम सलोने श्याम हमारे का ये गीत शबीर अहमद के बोल थे, अनीस अली सवरी का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए सुरेश वाडेकर की आवाज़ में एल्बम श्री दुर्गा आरती का ये गीत।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अनुराधा पौडवाल और राज सचदेव के गाए इसी गीत के साथ ही वंदन कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4।

4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं, अब लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण। स्वर एवं संकलन अर्चना कुमारी, प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार। ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्चना का नमस्कार। श्रोताओं, यदि हम पिछले दिनों के मौसम को याद करें तो मई के इस माह में भी कहीं कहीं बारिश और ओले गिरने की भी खबरें मिलेंगी। यहाँ तक कि कहीं कहीं तेज हवाओं की आंधी ने भी काफ़ी कुछ नुकसान किया है। मौसम विभाग की माने तो मई 2026 के इस सप्ताह के मौसम में उथल पुथल का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय स्तर पर नमी में वृद्धि और प्री मानसून गतिविधियां रही हैं। इनसे भीषण गर्मी के बीच अचानक तूफानी बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की घटनाएं हुई हैं। फलतः तापमान में भारी उतार चढ़ाव आ रहा है। ऐसी अप्रत्याशित मौसमी बदलावों से फसलों को नुकसान और जान माल की क्षति की संभावनाएं रहती हैं। इस बीच मौसम विभाग ने ताज़ा अलर्ट जारी करते हुए बिहार समेत कुल 15 राज्यों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, कई इलाकों में 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी व्यक्त की है। अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से तापमान में गिरावट भी आ सकती है। इससे गर्मी और लू से राहत मिल सकती है। हालांकि बिजली गिरने और तूफान से नुकसान का खतरा भी बना हुआ है। अतः आम तौर पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए। यदि मौसम खराब लगे तो लंबी दूरी की यात्रा टाल देनी चाहिए और घर में पनाह लेनी चाहिए। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में DNA और जैव विविधता से संबंधित भेंट वार्ताएं सुनिएगा और साथ ही विश्व अस्थमा दिवस और कोयला खनिक दिवस की भी चर्चा की जाएगी। लेकिन शुरुआत इस अंक के वैज्ञानिकों सर जॉर्ज पैगट थॉमसन और फ्रैंक कोनराड की चर्चा से। 3 मई 1892 को जन्मे सर जॉर्ज पैगेट थॉमसन एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे, जिन्हें 1937 में इलेक्ट्रॉनों के क्रिस्टल विवर्तन की प्रायोगिक खोज के लिए क्लिंटन डेविसन के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार साझा किया गया था। उन्होंने साबित किया कि इलेक्ट्रॉन तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं और यह क्वांटम यांत्रिकी में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ज्ञात हो कि 1906 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले तथा इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक जे.जे. थॉमसन इनके पिताजी थे।

0: अतः जे जे थॉमसन द्वारा खोजे गए इलेक्ट्रॉन संबंध में यह आगे बढ़ते हुए सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन एक कण होने के साथ साथ तरंग के रूप में भी कार्य कर सकता है। 10 सितंबर 1975 को सर जॉर्ज पैगट थॉमसन का निधन हो गया। श्रोताओं, अब इस संघ के दूसरे वैज्ञानिक फ्रैंक कोनराल्ड की बात कर लेते हैं। 4 मई 1874 को जन्मे फ्रैंक कोनराल्ड एक अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिन्हें रेडियो विकास के लिए जाना जाता है। इनके नाम से 200 से अधिक पेटेंट रहे हैं जिनमें विद्युत ऊर्जा की खपत मापने वाला विद्युत मीटर भी है जो अब हमारे घरों में आम हो चुका है। 10 दिसंबर 1941 को फ्रैंक कोनराल्ड का देहावसान हो गया। श्रोताओं, इस संघ के वैज्ञानिकों की चर्चा के बाद अब एक नज़र इस सप्ताह की विज्ञान से संबंधित नवीनतम खबरों पर। खबर है कि गगनयान मिशन के माध्यम से इसरो अब केवल सैन्य पायलट ही नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी अंतरिक्ष यात्रा कराने की योजना पर काम कर रहा है। वहीं एक अन्य खबर के अनुसार हबल टेलीस्कोप ने NGC 3137 नामक सर्पिल आकाशगंगा की चमकदार तस्वीर ली है। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिकल वाहनों और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अनुसंधान के लिए वर्ष 2025-26 को एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जा रहा है तथा कैंसर की रोकथाम के लिए टीकों और नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सकारात्मक विकास हो रहा है। तो श्रोताओं, यह थी इस अंक से जुड़ी नवीनतम विज्ञान से संबंधित खबरें। और अब कल यानी 4 मई को मनाए जाने वाले कोयला खनिक दिवस की बात कर लेते हैं। यह दिन कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के कठिन परिश्रम, साहस और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है खनिकों के बलिदानों को याद करना और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाया जाना। यह दिन खनिकों के अनिश्चित भविष्य और जोखिम भरे कार्य वातावरण को रेखांकित करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोयला प्रमुख जीवाश्म ईंधनों में से एक है जिसमें भरपूर कार्बन होता है। कोयला वाले स्थान पर लंबे समय से काम करने से कामगारों को श्वसन संबंधी परेशानियां होती हैं, अतः इस संबंध में कामगारों में जागरूकता की आवश्यकता रही है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भी इसी जागरूकता को बनाए रखना है। श्रोताओं, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बना है। जीव और विविधता साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी या किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता। जैव विविधता जीवन की स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है क्योंकि यह हवा, पानी, भोजन और दवाओं जैसे संसाधन प्रदान करती है। यह आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता के बीच संबंधों को स्थापित करती है। जैव विविधता को और भी स्पष्टता से समझने के लिए आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा शास्त्री बैजनाथ पाठक जी। बैजनाथ पाठक जी, आप एक प्रसिद्ध अध्यापक हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: बैजनाथ पाठक जी, इंसानों को जीव जंतुओं के साथ साथ पेड़ पौधों का भरपूर परिवार काफी पसंद होता है, यानी जैव विविधता हम सबकी पसंद है। किंतु हमारे श्रोताओं को आप सबसे पहले यह बताएं कि जैव विविधता क्या है और हमारे लिए यह क्यों जरूरी है।
1: अच्छा, नमस्कार। जीवों के

0: विविधता के बारे में ये बात है कि अनेक प्रकार की प्रजातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना ही जीव विविधता है। इसमें दो शब्द हैं, जीव और
1: जी
0: विविधता। तो जीव में जो विभिन्नताएं हैं या विशेषताएं हैं उसी को जीव विविधता कहते हैं।
1: जी
0: बहुत तरह के जीव हैं, एक ही जीव में कई जीव होते हैं। जैसे 20,000 से अधिक चींटियों की प्रजातियां हैं, 28,000 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां हैं। तो इतनी सारी प्रजातियां हैं और जब एक साथ रहती है, सह अस्तित्व रहता है और एक
1: जी
0: दोनों दूसरे में अनुन्यास्रय संबंध भी है, तो इसी को जीव विविधता कहते हैं, जीवों में जो विभिन्नताएं हैं।
1: जी वैजनाथ जी,
0: जी
1: 29 दिसंबर को जैव
0: हाँ जब
1: विविधता दिवस के रूप में याद किया
0: हाँ
1: जाता रहा है।
0: जी
1: आमतौर पर
0: हाँ
1: जैव विविधता के कौन कौन से संवर्ग हैं?
0: हाँ तो देखिए, जीव विविधता के मुख्यतः दो संवर्ग हैं। एक को बोलते हैं फ्लोरा एंड फौना, मतलब एक है प्राणी जगत और एक है पौधे का जगत, वनस्पति जगत।
1: जी
0: लेकिन लेकिन एक तरह से इनका तीन संवर्ग है। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पेसिक डाइवर्सिटी, तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये तीन है। जेनेटिक मतलब सबसे अर्थ है कि अनुवांशिकी जैव विविधता कहते हैं इसको, जेनेटिक डाइवर्सिटी को अनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं, स्पेसीज को प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं और इकोलॉजी को पारिस्थितिकीय जैव विविधता कहते हैं। तो ये तीन है और ये मुख्यतः पहला जो है वो गुण सूत्र पर आधारित है। गुण सूत्र होता है क्रोमोजम बायो में, तो गुण सूत्र पर आधारित है और एक ही प्रजाति के जीव जंतु और जानवर में पाई जाने वाली विभिन्नताएं को हम कहते हैं ये जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे कि एक ही परिवार में, जैसे मनुष्यों की प्रजातियों के लिए होमोसेपियंस बोलते हैं इनको, तो इनमें एक ही माँ बाप के बच्चे, भाई बहन में विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे उनके रंग में पाई जाती है, उनकी ऊंचाई में पाई जाती है, उनके बनावट में पाई जाती है और उनके चाल चलन में, पसंद नापसंद में, रंग में। जैसे कोई काला हो गया तो कोई गोरा हो गया, कोई लंबा हो गया तो कोई घाटा हो गया। तो ये जो
1: जी
0: विभिन्नताएं हैं वो जेनेटिक डाइवर्सिटी में आती हैं।
1: जी
0: दूसरा प्रकार है वो स्पेसीज है, वो प्रजातीय है। तो किसी स्थान पर एक ही समय पर दो या दो से अधिक प्रजातियों का होना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसीज डाइवर्सिटी। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी के पास घोड़ा भी है, बिल्ली भी है और कुत्ता भी है। अक्सर हम घरों में देखते हैं, हमारे घरों में जानवर होते हैं, पशु पक्षी पोसते हैं लोग, सुग्गा रखते हैं, तोता रखते हैं, मैना रखते हैं, बिल्ली रखते हैं। तो एक ही समय में ये जो प्रजातियां हैं इनके, इनमें भी काफी विभिन्नता होती है, इनके खाने में और चीजों में, इनके रंग रूप में, साइज में। तो इसको बोलते हैं प्रजातीय जैव विविधता। और अंतिम है पारिस्थितिकीय, इकोलॉजिकल। तो ये है कि किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र में जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही पारिस्थितिकीय विविधता कहते हैं। और जो आपस में अंतर संबंध रखते हैं, जैसे सजीव और निर्जीव में जो विभिन्नता है, सजीव और निर्जीव में जो एक दूसरे पे आश्रित अनाश्रित संबंध है, तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये तीन प्रकार की इनके संवर्ग हुए।
1: जी बैजनाथ पाठक जी, जैव विविधता का महत्व पूरी दुनिया देती है।
0: जी
1: अब
0: जी
1: हम आपसे यह जानने को उत्सुक हैं कि विश्व
0: जी
1: की तुलना में भारत में
0: जी
1: जैव विविधता की क्या स्थिति है?
0: हाँ, तो भारत में जैव विविधता की स्थिति अच्छी है दुनिया के और देशों में। जैसे एक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एक रिपोर्ट है, उसमें दिखाया गया है कि भारत दुनिया के उन 12 देशों में से एक देश है जिसमें जैव विविधता पाई जाती है और उनके संरक्षण के भी उपाय किए जाते हैं। यहाँ भारत में हर तरह के जैव विविधता पाई जाती है और जीव जंतुओं का है। जैसे आपको ये यहाँ पे काजीरंगा का पार्क है, सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, हर तरह की व्यवस्था की गई है। और अलग अलग क्षेत्र में है यहाँ, जैसे आपको यहाँ वो ठंडा में पाए जाने जानवर हैं जो जम्मू कश्मीर में है, रेगिस्तान है। तो हर क्षेत्र में सरकार की तरफ से भी अनेक

0: जैव उद्यान बनाए गए हैं जिनमें कि इस पे विशेष ध्यान दिया जाता है, और लोग भी इसे टूरिज्म को ही फायदा होता है, लोग आते जाते हैं। तो ये है भारत की स्थिति है, यूनेस्को के हिसाब से 12 देशों में एक प्रमुख देश है, एक स्थान है।
1: जी पाठक जी, जैव
0: जी
1: विविधता के प्रति सब लोग इसके महत्व को जाने,
0: हाँ
1: इस संदर्भ में संदेश के तौर पर आप हमारे
0: जी
1: श्रोताओं के लिए क्या कुछ
0: हाँ
1: कहना चाहेंगे?
0: जी, हम ये कहना चाहेंगे कि ये अति आवश्यक है और इससे पृथ्वी की सुंदरता बढ़ती है। और सबसे प्रधान तो ये है कि इससे ऑक्सीजन मिलता है। हम अधिक पौधे लगाते हैं, जंगल लगाते हैं, तो हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है, पानी शुद्ध मिलता है। तो इसके बिना हम आजकल ऑक्सीजन की कमी है, आपने हाल ही में देखा है कि सरकार ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रही है, कितनी ऑक्सीजन की कमी हुई थी। तो आज अगर ये रहता तो ऐसा नहीं होता। इनसे बहुत सारी चीजें हमको जड़ी बूटी मिलती है, उससे हम लोग तो और भी उपाय करते हैं, जैसे तुलसी का पूजा, पीपल की पूजा, गाय की पूजा। तो इसका भी यही संदेश है कि हम इसके माध्यम से इनका संरक्षण करें, इनका संवर्धन करें, ताकि
1: जी
0: हम जी हाँ स्वास्थ्य अच्छा हो सके हमारा, हम अधिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सके। इस संदर्भ में हम यह कहना चाहेंगे कि लोगों में जागृति फैलाया जाए और वन जीवों को और वन औषधियों की सुरक्षा की जाए। लोग पेड़ को काटना बंद करें, पेड़ अधिक से अधिक लगाएं। हालांकि सरकार ने कानून जरूर बनाया है, तो हम स्वयं सरकार हैं, हम स्वयं देखें कि कैसे हम इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं।
1: जी बैजनाथ पाठक जी, आपने बहुत
0: जी
1: अच्छी अच्छी जानकारी दी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अच्छा, आपको भी धन्यवाद।
1: श्रोताओं, 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाना है। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA द्वारा आयोजित यह दिन अस्थमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, इसके लक्षणों जैसे खांसी, घरघराहट और सांस की तकलीफ के बारे में शिक्षित करने और सही उपचार तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों में अस्थमा की समझ बढ़ाना, गलत धारणाओं को दूर करना और सही समय पर निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना इत्यादि। इस दिवस के महत्व को बस इसी बात से समझा जा सकता है कि यह दिन अस्थमा से पीड़ित 26 करोड़ से अधिक दुनिया भर के लोगों के लिए शिक्षा और समर्थन का संदेश फैलाता है। वर्तमान वर्ष 2026 का ध्यान मुख्य रूप से अस्थमा रोगियों के लिए सुलभ और किफायती सूजन रोधी इन्हेलर की उपलब्धता पर है, ताकि वे सामान्य जीवन जी सके। संक्षेप में, अस्थमा एक श्वसन रोग है जिसे उचित दवाओं जैसे इन्हेलर के सही इस्तेमाल से पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। श्रोताओं, राष्ट्रीय DNA दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र का अवकाश दिवस है। यह 1953 में उस दिन की याद में मनाया जाता है जब जेम्स वाटसन और उनके सहयोगियों ने DNA की संरचना पर नेचर पत्रिका में शोध पत्र प्रकाशित किया था। DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हर जीवित जीव के शरीर का मूलभूत आनुवंशिक ब्लूप्रिंट है, जो विकास कार्य और प्रजनन के लिए आवश्यक निर्देश रखता है। यह एक घुमावदार सीढ़ी या डबल हेलिक्स के आकार का अणु है, जो माता पिता से बच्चों में आनुवंशिक लक्षण स्थानांतरित करता है। कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाला DNA माता पिता से संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, जिसे शारीरिक विशेषताएं जैसे बालों एवं आँखों का रंग इत्यादि तय होता है। DNA से संबंधित विविध पहलुओं की जानकारी दे रहे हैं अभिनव प्रतीक पांडे, लीजिए सुन।

डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से वंशाणुगत गुणों या अनुवांशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। एक बहुकोशिकीय जीव के लगभग प्रत्येक कोशिका में उस जीव के लिए आवश्यक डीएनए का पूरा सेट होता है। यह सभी प्रकार के जीवों में अनुवांशिकता की प्राथमिक इकाई के रूप में भी कार्य करता है। डीएनए की खोज एक स्विस जीव विज्ञानी जोहन फ्रेडरिक मिसर ने वर्ष 1869 में की थी। वस्तुतः डीएनए अणुओं का एक समूह है जो वंशानुगत जानकारियों को एक से दूसरे में

जीवों में अनुवांशिकता की प्राथमिक इकाई के रूप में भी कार्य करता है। डीएनए की खोज एक स्विस जीव विज्ञानी जोहन फ्रेडरिक मिशर ने वर्ष 1869 में की थी। वस्तुतः डीएनए अणुओं का एक समूह है जो वंशानुगत जानकारियों को एक से दूसरे में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरे शब्दों में डीएनए एक लंबा अणु है जिसमें किसी व्यक्ति की अद्वितीय अनुवांशिक कोड होता है। यह हमारे शरीर द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक प्रोटीन के निर्माण के लिए निर्देश देता है। डीएनए माता पिता से एक बच्चे में आता है जिसमें बच्चे का डीएनए लगभग आधे पिता से और आधे माँ से होता है। डीएनए कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है और इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। यह माँ से बच्चे को विरासत में मिलता है। मनुष्यों में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लगभग 16,000 बेस युग्म होते हैं। डीएनए अणु के दोहरे कुंडली ढांचे को बाद में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रयोगात्मक डेटा के माध्यम से खोजा गया। बाद में यह साबित हो गया कि डीएनए एक मनुष्य की अनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है। डीएनए तीन प्रकार के होते हैं। ए डीएनए दाईं ओर कुंडलित होता है। निर्जलित डीएनए ए प्रकार का होता है जो चरम स्थितियों के दौरान डीएनए की रक्षा करता है। प्रोटीन बाइंडिंग भी डीएनए से विलायक को हटाता है और ए प्रकार का डीएनए बनता है। बी डीएनए का सबसे आम प्रकार है और दाईं ओर कुंडलित होता है। बी प्रकार के अधिकांश डीएनए की बनावट सामान्य शारीरिक स्थितियों के अनुसार होती है। जेड डीएनए बाईं ओर का डीएनए होता है जहां जिगजैग पैटर्न में बाईं ओर द्विकुंडलित घुमाव होता है। यह जीन के प्रारंभिक स्थल से आगे पाया जाता है और इसलिए माना जाता है कि यह जीन के नियम में कुछ भूमिका निभाता है। जेड डीएनए की खोज एंड्रस वांग और अलेक्जेंडर रीच ने की थी। डीएनए में सूचना के चार रासायनिक आधारों एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन से बने एक कोड के रूप में संग्रहित किया जाता है। मनुष्यों के डीएनए में लगभग 3 बिलियन बेस होते हैं और 99% से अधिक आधार सभी लोगों में सामान्य होते हैं। इन बेस का अनुक्रम या क्रम किसी जीव के निर्माण और बनाए रखने के लिए उपलब्ध जानकारी को तय करता है। यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार वर्णमाला के अक्षर एक निश्चित क्रम में शब्द और वाक्य बनाने के लिए दिखाई देते हैं। डीएनए एक अर्जेंटिक पदार्थ है जो सभी वंशानुगत जानकारियों को वहन करता है जिसे उसके नाइट्रोजन आधारों की व्यवस्था में कोडित किया जाता है जिन डीएनए का एक छोटा भाग होता है। पॉलीपेप्टाइड अणु के लिए एक जीन कोड जहां 3 नाइट्रोजनस बेस हो एक एमिनो एसिड का व्यक्त करता है। जीन के अनुक्रम का उपयोग पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए किया जाता है जो फिर प्रोटीन बनाता है। चूंकि प्रत्येक जीव के डीएनए में कई जीन होते हैं इसलिए विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बन सकते हैं। प्रोटीन जीवों में मुख्य कार्यात्मक और संरचनात्मक अणु है। अनुवांशिक जानकारी संग्रहित करने के अलावा डीएनए के कार्य में कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए का समान वितरण, उत्तराधिकार, प्रतिलिपिकरण यानी ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए फिंगरप्रिंट्स, कोशिकीय चयापचय एवं जीन थेरेपी इत्यादि भी शामिल हैं। वर्तमान समय में डीएनए रक्त संबंधों की व्याख्या करने एवं अपराधियों की शिनाख्त करने में भी कड़ी भूमिका निभा रहा है और इसकी चर्चा अब काफ़ी आम हो गई।

श्रोताओं, जीवन को सरस बनाने के लिए सकारात्मक मानसिकता, वर्तमान में जीने और छोटी छोटी खुशियों को अपनाने की जरूरत होती है। तनाव मुक्त रहने के लिए स्वस्थ दिनचर्या, अपनों के साथ समय बिताने, ध्यान, योग करने और अनावश्यक इच्छाओं और सामान को कम करने से जीवन में सरलता और मिठास आती है। बेहतर हो कि हम सबसे अधिक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इसके लिए पौष्टिक भोजन करें, 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद लें, नियमित व्यायाम करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन का आधार है।

0: श्रोताओं, आज का हमारा यह अंक आपको कैसा लगा अवश्य लिख भेजिएगा। हमारा पता है, कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 8211115। और अब इसी के साथ अर्चना लेती है विदा। नमस्कार। स्वर संकलन अर्चना कुमारी, प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण। स्वर एवं संकलन अर्चना कुमारी, प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार। हमारा अगला प्रसारण अब से कुछ ही पलों में।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। शाम के 6 बज चुके हैं। अब लीजिए सुनिए हमारे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

आज गांव घर कार्यक्रम संगे हम दीनू भाई सब श्रोता भाई बहन के राम राम। श्रोता भाई बहन, मौसम तो देख रहल बने कि कतना तेजी से उलट फेर हो रहल बा। ऐसना मौसम में अगर अपना के ना बचावल जाई तो परेशानी तो बढ़िए जाई। श्रोता भाई बहन, हर हाल में स्वस्थ रहल जरूरी बा। जे घर में और आदमी बा, जैसे छोट छोट बच्चा होखस, बड़ बुजुर्ग होखस, उनका पर भी ध्यान रख के उनका के स्वस्थ रखल जरूरी बा। आ हमने के आर्थिकी के मुख्य कारण बाईसन मवेशी जौन के हमने के रखले बनी जाए, ओकरा पर विशेष ध्यान देवे के जरूरी बा। यह बात खातिर कि वो अपन कौनो आवश्यकता रुआ से कही ना, रुआ हर आवश्यकता समझे के पड़ेला। कब प्यास लागल बा, कब भूख लागल बा, ये सब बात पर ध्यान रखे के पड़ेला। गर्मी के समय बा, कम से कम 2 से 3 बार दिन में पानी भी जरूर पियावे के चाहिए जानवर के। आ समय से अगर बाहर निकलले बनी तो घर में करी, आ घर में बा तो ओकरा के थोड़ा सा धूप देखावल, धूप में भी रखल जरूरी बा। श्रोता भाई बहन, घर में छोट बच्चा हो बड़न, एकरा अलावे गर्भवती स्त्री बड़ी अगर ऐसन बा तो उनका के जीवन रक्षक जवन टीका दियाला उस समय से जरूर दिलवा दें। टीका दिलवावे में कभी कोताही ना करे के चाहिए, काहे कि आगे आवे वाला खतरा से बचावेला। आ कोनो कोनो तो ऐसन बीमारी बा जवन की जानलेवा भी बा। श्रोता भाई बहन, अगर हमनी का अपना स्वास्थ्य पर या जे आपन बा ओकरा स्वास्थ्य पर ध्यान ना दिहल जाई तो काल हमनिये के परेशानी उठावे के पड़ी। ऐसे ध्यान रखल जरूरी बा। गर्मी के समय बा, काम धाम करही के बा। ए घड़ी बाहर निकली तो एगो छाता जरूर रहे के चाही जौन की माथा पर धूप न लगे दे। अगर छाता निखे तो गमछा के इस्तेमाल करी, लेकिन खुला माथा एह धूप में मत निकली। एकरा अलावे एक बोतल पानी के भी जरूरत संगे संगे बा, चाहे रउआ खेत में काम करी आ चाहे कहीं बाहर जात होखी तो संग में एक बोतल पानी रखना इतना आवश्यक बा आज के समय में, यह गर्मी के समय में, कि गर्मी असर मत करो। गर्मी कोई के चिन्हे ना, तनिके में असर कर जाला। यह बात के सबका ध्यान रखे के चाही कि गर्मी होखे तो कैसे हमनी के बचाव होखे के चाही, कैसे बचाव करे के चाही। श्रोता भाई बहन, आज हमनी के कार्यक्रम में सबसे पहले चर्चा हुई, विषय रही मीडिया की आज़ादी क्यों है जरूरी। आज प्रेस आज़ादी दिवस मनावल जा रहल बा। एकरा बाद हमनी के वंदना कुमारी से लोकगीत सुनल जाई। लोकगीत में आज हमनी का सुनल जाई झूमर। एकरा बाद समय हुई वार्ता के, विषय रही रोहतास में पत्रकारिता का विकास, वार्ताकार होखब त्रिपुरारी द्विवेदी। श्रोता भाई बहन, आज एक जानकारी के विषय बा जीवन में हंसी का महत्व। आज विश्व हंसी दिवस भी है। एकरा बाद अंत में कुछ सामयिक सलाह के संगे संगे मौसम पूर्वानुमान भी बतावल जाए। ई रहल कार्यक्रम संबंधी जानकारी। श्रोता भाई बहन, चर्चा के विषय बा मीडिया की आज़ादी क्यों है जरूरी। तो सबसे पहले तो ई जानी कि मीडिया का है। श्रोता भाई बहन, आज मीडिया के ही देन बा कि विश्व के कोनो कोना के खबर हमनी के मिनटों नहीं खे लागत आ हमनी के पता चल जाता। मीडिया, हर देश के मीडिया अलग अलग बा आ हर देश के मीडिया हर देश में बा, ताकि कोनो तरह के खबर के दबावल ना जा सके।

आज बाढ़ के क्षेत्र होखे चाहे युद्ध के मैदान होखे, राउर पत्रकार ओह जगह पर डटल बाड़न आजा से रवा खातिर हर तरह के सूचना उपलब्ध करा रहल बाड़न। मीडिया के आज़ादी यह से जरूरी बा कि हमनी के अगर कोनो खबर के जानता नहीं जा सुनता नहीं जा तो ओकर उस कतना सही बा कतना गलत बा एह बात के जरूर जानकारी रहे के चाहिए। आज मीडिया ही सशक्त माध्यम बा जौन रउआ के सही खबर आ सही समय पर दे रहल बा पहुँचा रहल बा रउआ भेरी। श्रोता भाई बहन, मीडिया के महत्व हमनी के जीवन में सामाजिक तौर पर बहुत बा। आज हमनी के कौनो कार्यालय से कौनो तरह के सूचना पा सकी ले जा। आज सोशल मीडिया के जमाना बा जौन की कौनो खबर मिनटों नहीं खे लागत आ एक एक जगह से हजारों जगह पहुंच जा रहल बा। मीडिया के स्वतंत्रता हर हाल में जरूरी बा, काहे कि मीडिया के ही अगर दबा दिहल जाई तो कौनो तरह के सही खबर रउआ भेरी पहुँचे में विलम्ब हुई या ना पहुँची। श्रोता भाई बहन, मीडिया की आज़ादी हमनी के ही आज़ादी बा। मीडिया की आज़ादी रही तबे हमनी का हर तरह के बात हर तरह के खबर सही तौर पर हमनी के मिली। श्रोता भाई बहन, अब आई एगो लोकगीत सुनल जाओ। आज हमनी का लोकगीत सुनल जाई वंदना कुमारी से, तो सुनल जाओ यहाँ से झूमर एगो।

0: श्रोता भाई बहन, कुसुम रंग चुनरी रंगा दपियवा, ये हमने का झूमर अभी वंदना कुमारी से सुननी जा, बड़ा निमन लागल। अतना निमन झूमर सुनल खातिर वंदना कुमारी के बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता भाई बहन, लोकगीत कबो भी सुनी तो बुझाला कि अपना माटी के सोन सोन गमक मिल रहल बा। अतना बढ़िया लोकगीत सुनी जा। अब समय बा वार्ता के। तो जैसन कि हम कहले रही कि आज हमने के वार्ता सुनल जाई त्रिपुरारी त्रिवेदी से। विषय बा रोहतास में पत्रकारिता का विकास। तो आई हमने के यहाँ से जानल जाओ कि हमने के जिला में पत्रकारिता के विकास कैसे भइल। आ तो सुनी के
1: किसी भी बात या घटना के संबंध में उसका पूरा ब्यौरा जानने की जिज्ञासा और उत्कंठा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अपनी बात कहना और दूसरे की सुनना, यानी जानकारी देना और जानकारी पाना, मनुष्य के स्वभाव में है। इसके जानकारी के विनिमय की पूर्ति मीडिया के विभिन्न माध्यमों से होती है। पहले समाचार पत्र यानी अखबार ही सूचनाओं के संवाहक थे। अखबार चूँकि प्रेस में छपा करते थे, इसलिए इसे प्रेस जगत कहा जाता था। लेकिन अब चूँकि इस सूचना तंत्र का फलक व्यापक हो गया है, इसमें अब दृश्य एवं श्रव्य माध्यम यानी आकाशवाणी, टेलीविज़न, वेब पोर्टल, ब्लॉग सरीखे नित नए संचार माध्यम जुटते जा रहे हैं, इसलिए अब प्रेस के अलावा मीडिया शब्द का भी इस्तेमाल हो रहा है। अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस सामयिक बात में होती है वह समाचार है, ऐसा प्रोफेसर विचार्ड ब्लेयर ने कहा था। समाचारों के संबंध में उनकी यह परिभाषा आज भी अक्षरशः सत्य है। रोहतास जिले में पत्रकारिता उतार चढ़ाव के दौर से गुजरती हुई निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। रोहतास जिला पहले शाहबाद जिले का अंग था। 1972 में शाहबाद जिले से रोहतास जिले का सृजन हुआ और 90 के दशक में रोहतास से विभक्त होकर कैमूर जिला बना। इसलिए रोहतास जिले की पत्रकारिता के विकास की चर्चा करते समय हमें शाहबाद जिले के इस दक्षिणी हिस्से में बसे रोहतास एवं कैमूर जिले में हुए प्रयासों की चर्चा हम करना चाहेंगे। वैसे तो 1857 के गदर के बाद पूरे देश में पत्रकारिता का प्रारंभ होना लगभग माना जाता है। रोहतास जिले में भी आज़ादी से कुछ साल पहले ही पत्रकारिता की शुरुआत हो गई थी। वजह यह थी कि हर आदमी अपने क्षेत्र और देश में हो रही राजनीतिक उथल पुथल की जानकारी पाने को उत्सुक था। इस काम में उस समय का पढ़ा लिखा तबका हाथ बटाता था। स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी ने 1924 ईस्वी में हुस्न इश्क के कुछ अंकों का प्रकाशन कराया। बाद में उन्होंने 1925 ईस्वी में अल इल्लाह मासिक पत्रिका का प्रकाशन डेहरी ऑनसोन से शुरू किया। आज़ादी मिलने के बाद श्री अंसारी बिहार सरकार में मंत्री बने। आज़ादी से पहले के दौर में

यहाँ चूंकि छापाखानों की कमी थी, इसलिए सासाराम में अंग्रेजों के जुल्म और उसके खिलाफ चल रही गतिविधियों की खबरें यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी हाथ से लिखकर बांटा करते थे। खबर लहरी नामक यह परचानुमा समाचार पत्र अनियतकालिक था। इसका संपादन पंडित श्रीनाथ त्रिवेदी शास्त्री, सच्चिदानंद उपाध्याय और सरस्वती देवी किया करती थी। आज़ादी मिलने के बाद डालमिया नगर एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हुआ। वहाँ से ललकार साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ। इसके संपादक स्वर्गीय श्याम बिहारी विरागी और मुन्नू प्रसाद पांडे थे। इस अखबार में मजदूरों की समस्याओं को प्रमुखता से छापा जाता था। 1956 ईस्वी में डिहरी ऑनसोन से साप्ताहिक समाचार पत्र तूफान का प्रकाशन शुरू हुआ। यह साप्ताहिक पिछले 53 वर्षों से आज भी निकल रहा है। श्री गया प्रसाद के संपादन में तूफान आज भी इस क्षेत्र में अपनी निरंतरता को बनाए हुए है, जो स्तुत्य प्रयास है। 1960 में स्वर्गीय श्याम बिहारी प्रसाद बिरागी ने सासाराम से सहसराम पाक्षिक अखबार का प्रकाशन किया। कुछ वर्षों के बाद इसका प्रकाशन जारी नहीं रह सका। 24 मई 1967 को सासाराम से साप्ताहिक जनविक्रांत का प्रकाशन हुआ। इसका उद्घाटन तत्कालीन संबित सरकार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय महामाया प्रसाद सिन्हा ने किया था। इस साप्ताहिक जनविक्रांत के संपादक अमरेंद्र कुमार थे। यह साप्ताहिक लगभग 20 वर्षों तक यहाँ से प्रकाशित होता रहा और जिले की पत्रकारिता जगत में इस अखबार ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। इसके रोहतास विशेषांक आदि कई अंक संग्रहणीय रहे। 1978 में डेहरी ऑनसोन से एक नए साप्ताहिक सोनमाटी का प्रकाशन हुआ। इसके संपादक कृष्ण किसले ने समाचारों के अलावा साहित्य, विज्ञान आदि सामग्रियों से अपने अखबार को पुष्ट करने की कोशिश की और उससे संबंधित जानकारियों व रचनाओं को पाठकों के समक्ष परोसा। इसे दैनिक समाचार पत्र का स्वरूप देने का भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। करीब 2 दशक तक इस साप्ताहिक का प्रकाशन जारी रहा। अमझोर से PPSCL समाचार का भी प्रकाशन डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे के संपादकीय सहयोग से हुआ करता था, जिसमें वहाँ कंपनी की गतिविधियों और श्रमिक संगठनों की हलचल की खबरें जगह पाती थीं। सासाराम में 1980 में शेर शाह टाइम्स साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन उस समय के कुछ उत्साही युवकों ने किया। इसके संपादक इश्तियाक अयूबी थे। कुछ अंक निकलने के बाद ही इसका प्रकाशन बंद हो गया। 1984 में सासाराम से रूबी इंडिया मासिक मैगजीन का प्रकाशन परवेज आलम के संपादन में शुरू हुआ। 1990 में जनता एक्सप्रेस साप्ताहिक सासाराम से छपना शुरू हुआ। इसके प्रधान संपादक संजय केसरी और संपादक अरुण कुमार सिंह कनक थे। एक साल के अंदर ही इसका प्रकाशन भी ठप पड़ गया। 1990 के ही दशक में रोहतास टाइम्स साप्ताहिक अखबार सासाराम से छपना शुरू हुआ। इसके संपादक मनमोहिनी कांत थे। कुछ वर्षों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में इस जिले में हलचल मचाने के बाद इस अखबार ने दम तोड़ दिया। 1998 ईस्वी में सासाराम से दयारे शेर शाह उर्दू पाक्षिक अखबार निकला। इसके संपादक परवेज आलम थे। स्वर्गीय सुनील कुमार ज्वाला ने ज्वाला टाइम्स साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया, जो थोड़े ही समय तक प्रकाशित हो सका। विक्रमगंज से कैमू खान ने शाहबाद टाइम्स साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, लेकिन खास राजनीतिज्ञ का ठप्पा लगा होने के कारण यह पत्र दीर्घायु न हो सका। बबुआ से 1980 के दशक में रोहतास भोजपुर एक्सप्रेस साप्ताहिक समाचार पत्र छपना शुरू हुआ। इसके संपादक हरिशंकर तिवारी और अभय कुमार श्रीवास्तव थे। अपनी खोज परख खबरों और भंडाफोड़ शैली के कारण यह अखबार काफ़ी चर्चित हुआ। यही कारण रहा कि कोलकाता से उस समय छपने वाली मशहूर पत्रिका रविवार ने इसे बिहार का ब्लिज की संज्ञा दी थी। कुल मिलाकर जिले में समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को खबरों से वाकिफ कराने का आज़ादी के पहले से शुरू हुआ दौर आज़ादी के मिलने के बाद भी परवान चढ़ता रहा। हर दशक में कुछ न कुछ नई कोशिशें हुई। पत्रकारिता जगत में धमाल मचता रहा। कोशिशों की यह रफ्तार कभी थमी नहीं। यह दिगर बात रही कि इस रोहतास जिले में छपे अधिकतर समाचार पत्र विभिन्न कारणों से दीर्घजीवी न हो सके। केवल 3 ही साप्ताहिक जनविक्रांत, तूफान और सोनमाटी लंबे अरसे तक प्रकाशन की कतार में खड़े रहे।
इनमें तूफान का प्रकाशन अभी भी

0: जारी है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दृश्य एवं श्रव्य माध्यम भी जुड़े हुए हैं। रोहतास जिले के गठन के बाद आकाशवाणी पटना से रोहतास जिले की चिट्ठी का प्रसारण भी शुरू हुआ। आज भी यह सिलसिला जारी है। इसके लिए आकाशवाणी ने अपना संवाददाता बहाल कर रखा है। आकाशवाणी के सासाराम केंद्र की स्थापना भी इस जिले की पत्रकारिता जगत के विकास की महत्वपूर्ण कड़ियों में शामिल है। दूरदर्शन का रिले सेंटर भी इसी के साथ सासाराम में स्थापित हुआ। ये दोनों ही उपलब्धियां यहां पत्रकारिता जगत की उपलब्धियों में महत्वपूर्ण हैं। आंचलिक पत्रकारिता पर जोर दिए जाने की अखबार की नीतियों का सकारात्मक असर इस जिले पर भी पड़ा है। पहले पहल उर्दू दैनिक कौमी तंजीम ने 1990 में सासाराम में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला। इन दिनों सासाराम में हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, आज और प्रभात खबर दैनिक अखबारों के कार्यालय काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर दर्शकों की रुझान भी तब बढ़ा जब विभिन्न चैनलों ने क्षेत्रीय खबरों को प्रमुखता से दिखलाना शुरू किया। इसको सुगम बनाने के लिए ईटीवी ने सासाराम में अपना कार्यालय स्थापित कर रखा है। स्थानीय पत्रकारों के सहयोग से सोन विजन चैनल सासाराम से अमरेंद्र कुमार के संपादन में शुरू हुआ। यह चैनल जिले का पहला इलेक्ट्रॉनिक चैनल साबित हुआ। डेयरी ऑन सोन से भी एक खबरिया चैनल शुरू हुआ। बाद में दोनों ही चैनल बंद हो गए, फिर भी इस जिले की पत्रकारिता के विकास में अपना नया आयाम जोड़ गए। जिले में पत्रकारिता के विकास में इस जिले में जिन पत्रकारों ने आजीवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहाँ की खबरों से देश दुनिया को अवगत कराते रहे, उनमें प्रमुख थे स्वर्गीय पंडित श्रीनाथ त्रिवेदी शास्त्री, सैयद इजहार आलम अधिवक्ता, जगदीप नारायण श्रीवास्तव अधिवक्ता, दीनानाथ दुबे, वायजुल हक, महेश्वर प्रसाद उर्फ बच्चा बाबू, विजय बहादुर सिंह, राम बचन पांडे, अभय चंद मेहरा, अवधेश कुमार श्रीवास्तव, विजय कृष्ण शर्मा, युगेश्वर प्रसाद केसरी, शिव प्रसाद चतुर्वेदी, किशोरी प्रसाद मिश्र, महेश्वर प्रसाद उर्फ गोपाल जी, इंद्रसेन लाल, जगन्नाथ प्रसाद लाल, फणीन्द्र नाथ मिश्र, सिराजुद्दौला आदि। ये दिवंगत पत्रकार विभिन्न हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू दैनिकों, साप्ताहिकों और न्यूज एजेंसियों में इस रोहतास जिले से रिपोर्टिंग किया करते थे। सैयद ऐनुल आलम, आर्यन उपाध्याय, कन्हैया लाल केसरी, सरदार अमरजीत सिंह तूफान, विजय सिंह, रामाशीष सिंह, रामजी प्रसाद गुप्त, माधव प्रसाद, सुनील चमड़िया ने भी इस जिले की पत्रकारिता की ज़मीन को उपजाऊ बनाने में अपने समय में काफ़ी योगदान दिया है और विभिन्न अखबारों, न्यूज़ मैगजीनों व एजेंसियों के लिए काम किया है। नोखा के अशोक ओझा चर्चित साप्ताहिक रहे धर्मयुग के संपादकीय मंडल के उन दिनों सदस्य थे। पीएन पांडे द इंडियन नेशन के सब एडिटर थे। इस जिले में अन्य कई पत्रकारों का प्रादुर्भाव हुआ। आज जो देश के विभिन्न स्थानों पर पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर गिरे जा रहे हैं, उनमें अनिल चमड़िया, मुन्नी लाल जिज्ञासु, कन्हैया भेलारी, विजय कृष्ण अग्रवाल, शंभू चौरसिया, मधुर शील आदि प्रमुख हैं। इस तरह हम पाते हैं कि रोहतास जिले में पत्रकारिता निरंतर नए सोपान पर चढ़ती जा रही है और नए कलेवर के साथ।
1: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता असुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार।
1: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
2: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइल आसान।
1: घर, दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
2: डायल करें 8700014242।
1: नंबर फिर लिखी 8700014242।
3: श्रोता भाई बहन, अभी हमने क्या रोहतास में पत्रकारिता का विकास के विषय पर हमने का वार्ता सुननी जा त्रिबुरारी त्रिवेदी से। बड़ा बढ़िया से यहाँ के बतौनी कि पत्रकारिता में रोहतास जिला के विकास कैसे कैसे भइल आ अभी हमने के कहाँ बनी जा। इतना सुंदर सुंदर बात बतौला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद श्रोता भाई।

जैसन कि हम कहले रही कि आज के एक जानकारी के विषय बा जीवन में हंसी का महत्व। आज विश्व हंसी दिवस है। कहल जला कि हंसल सय रोग के दवाई होला। जब आदमी हंसेला शरीर में खून के संचार बहुत बढ़िया से होला। ऐसे भी रुआ देखब कि हंसला से मन प्रसन्न होला। हंसे से हंसावे से आदमी के दिल खुश होला। श्रोता भाई बहन, कोई के हंसा के हंसल जा सकेला, कोई के रुआ के हंसल ना जा सके। जब हास्य कलाकार के बात हुई तो एकरा में सबसे ऊपर अगर नाम बा तो चार्ली चैपलिन के नाम बा कि जेकरा के देखते आदमी के हंसी छूटे लगेला। राजू श्रीवास्तव के नाम के नहीं जानत, गजोदर भैया के नाम जे कि बात बात पर हंसी छोड़ावत रहे आम दर्शक के बीच में। जॉनी लीवर के नाम वही तरह बा जे कि जेकरा के देखते हंसी छूट जाला। श्रोता भाई बहन, असरानी जगदीप से लेके महमूद से लेके बहुत ऐसा नाम बा जे हास्य व्यंग में अपन नाम कमैले बा आ लोग के हंसावत हंसावत लोट पोट कैले बा। जीवन में हंसी के महत्व हमने के समझे के चाही आ लोग के हंसावे के चाही ताकि हम खुद हंस सकें। श्रोता भाई बहन, अब कुछ हमने का सलाह जान लिहल जाओ, सामयिक सलाह। चूँकि खेती करे के बा, खेती में बनी जा तो खेती खातिर सलाह इस समय के जानल जरूरी बा ताकि हमनी के कोनो भी जोन फसल लगौले बनी जा ओकर उचित उत्पादन हमनी के मिल सको। सबसे पहले मौसम के चेतावनी समझी कि आंधी तेज हवा आ वर्षा से फसल के नुकसान, फल फूल झड़े के हो सकेला, कीट आ रोग के प्रकोप भी बढ़ सकेला, सब्जी में बागवानी में फसल के क्षति पहुँचा सकेला। एक ऐसन में ऐसन मौसम होता तो एक में पशु के भी तनाव बढ़ जा रहा बा। आगामी दिन में हल्का वर्षा के संभावना के देखते हुए कटल फसल के सुरक्षित स्थान पर रख दही आ जौन खड़ा फसल बा ओकर सिंचाई स्थगित कर दही। यह अवधि में फसल पर कीटनाशक आ दवा के छिड़काव भी रोकल गई बा। पशुपालन कैले बानी, गाय रखले बानी तो गर्मी में दुधारू पशु के सूखा चारा के मात्रा कम दही और दाना के मात्रा बढ़ा दही। दाना में तेलहन अनाज के प्रयोग करें। चारा दाना प्रातः 5 बजे आ शाम में धूप खत्म भैला के बाद ही दही। साफ ठंडा पानी पूरा समय दही। प्रत्येक वयस्क पशु के 50 ग्राम खनिज विटामिन मिश्रण, 50 ग्राम गर्म नमक दही। किलनी आ अठगुड़वा के नियंत्रण खातिर फ्लूमेथ्रिन, इप्रिनोमेक्टिन चाहे एमिट्रोज दवा के प्रयोग करी। आ अब मौसम के पूर्वानुमान जान लिया जाओ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 1 से 5 मई के दौरान जिला में 1-2 स्थान पर गरज के साथ साथ आंधी भी चल सकेला। आंधी में हवा के गति 50 से 60 किलोमीटर रहे के संभावना बा। एकरा दौरान हल्का वर्षा के भी अनुमान बा। अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड आ न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% आ दोपहर में 20 से 30% रहे के संभावना बा। पूर्वानुमान की अवधि में 15 से 17 किलोमीटर के रफ्तार से पूर्वा हवा चले के संभावना बा। श्रोता भाई बहन, एक कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही अमित कुमार। आ अब घड़ी कह रहा बा कि समय और आ गेल तो चलत चलत गांव घर कार्यक्रम सुनेवाला सब श्रोता भाई बहन के दीनू भाई के तरफ से राम राम।

अभी आप सुन रहे थे हमारे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अमित कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के

6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत शिवम बिहारी और रचना चोपड़ा की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है साजन चले ससुराल। प्यारेलाल यादव के बोल हैं, अशोक कुमार दीप का संगीत है।

शिवम बिहारी एवं रचना चोपड़ा की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म साजन चले ससुराल का ये गीत। प्यारेलाल यादव के बोल थे, अशोक कुमार दीप का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए धरती मैया फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में। लक्ष्मण शाहबादी के बोल हैं, चित्रगुप्ता का संगीत है।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना धरती मैया फिल्म का गीत। लक्ष्मण शाहबादी के बोल थे, चित्र गुप्ता का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए जसपाल सिंह, हेमलता चंद्ररानी मुखर्जी और सुशील कुमार की आवाज़ों में नदिया के पार फिल्म का ये गीत, गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन का।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं उषा मंगेशकर की आवाज में, फिल्म गंगा किनारे मोरा गांव। लक्ष्मण साबादी के बोल हैं, चित्र गुप्ता का संगीत है।

उदित नारायण और कल्पना की आवाज़ों में अभी आपने सुना प्रतिज्ञा फिल्म का गीत, विनय बिहारी के बोल थे, राजेश रजनीश का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए उदित नारायण की आवाज़ में बलमा बड़ा नादान फिल्म का ये गीत।

ये गीत आपने सुना मनोज तिवारी और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। विनय बिहारी के बोल थे, लाल सिन्हा का संगीत था। फिल्म का नाम था ससुरा बड़ा पैसा वाला। और अब लीजिए सुनिए कल्पना और आलोक।

आलोक कुमार, कल्पना एवं खुशबू जैन के गाए इसी गीत के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हम हैं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त सचिन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिहार सरकार की नई पहल सहयोग शिविर के माध्यम से समस्याओं का त्वरित समाधान। जी हां, आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा एक के महत्वपूर्ण पहल के तहत दिनांक 19 मई 2026 से पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर का आयोजन प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभिनव के पहल के अंतर्गत प्रत्येक माह के पहले एवं

तीसरे मंगलवार को सभी निर्धारित पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपस्थित रहकर आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करेंगे। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन, सरकारी सेवाओं की सुगम एवं त्वरित उपलब्धता है। कैमूर जिले में आज आयोजित नीट इंटरेस्ट परीक्षा 4 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा का पारदर्शिता एवं शुचिता बनाए रखने के लिए व्यापक एवं सुदृढ़ व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। सभी 4 केंद्रों पर कुल 1476 परीक्षार्थी की परीक्षा निर्धारित थी, जिसमें कि 1445 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 31 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

बिहार सरकार के निर्देशानुसार रोहतास जिले में जन शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु पंचायतवार सहयोग शिविर का आयोजन प्रारंभ किया जा रहा है। यह प्रक्रिया 19 मई 2026 से प्रारंभ होगी और प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायतवार आयोजित की जाएगी। पूर्व से लागू व्यवस्था के तहत सबका सम्मान जीवन आसान के लक्ष्य के ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम पंचायत थाना अंचल प्रखंड अनुमंडल जिला एवं प्रमंडल स्तर पर जन शिकायतों के निवारण हेतु पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से आम नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने एवं समाधान प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ सुलभ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर पंचायतवार सहयोग शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि नागरिकों को उनके निकटतम स्तर पर ही सभी विभागों की सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हो सके। आज जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री रोशन कुमार ने सहयोग शिविर के आयोजन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया। रोहतास जिले में 19/5/2026, 2/6/2026 एवं 16/6/2026 को आयोजित होने वाले पंचायतवार सहयोग शिविरों की सूची जारी कर दी गई है। और अब सुनते हैं ये संदेश।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता असुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार।
1: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
2: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान।
1: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
2: डायल करें 8700014242।
1: नंबर फिर लिखी 8700014242।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: इसी के साथ सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: Small town, but global dreams. Now top-class engineering education is right here in Bihar. One government engineering college in every district. 38 premier institutes across the state. World-class education without leaving Bihar. Advanced labs, smart classrooms, experienced faculty, and excellent placement support for a strong engineering career.
4: Admissions based on JEE Main 2026 or BCECE merit. Online registration is open. Last date 5 May 2026. For more information, visit bceceboard.bihar.gov.in. Issued in public interest by Department of Science, Technology and Technical Education and Department of Information and Public Relations, Government of Bihar.

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर, एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात, राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और जदयू नेता निशांत कुमार सद्भाव यात्रा के तहत आज पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर पहुंचे, ये उनकी पहली राजनीतिक यात्रा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से।

0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। श्री चौधरी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जीतन राम मांझी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 6 मई को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई है। ये बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय में शाम 5 बजे होगी। इस सत्र के दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। यह दिवस लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया के महत्व को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में पत्रकारिता की स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और उसकी भूमिका पर व्यापक चर्चा की जा रही है।
1: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस अवसर पर मीडिया में काम करने वाले सभी कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि यह दिवस लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और जागरूक समाज को बढ़ावा देने में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। श्री कुमार ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समाज के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में काम करता है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने आज अपनी पहली राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है। निशांत कुमार की इस यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा रखा गया है। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय से यात्रा के लिए रवाना होने से पूर्व निशांत कुमार ने कहा कि इस यात्रा का मकसद समाज में सौहार्द और सद्भाव की भावना को मजबूत बनाना है।
2: हमने इसका नाम सद्भाव यात्रा दिया है। इसका यही अर्थ है सबको साथ लेके चलना, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सबको साथ लेके चले, सबके साथ प्रेम का भाव रहे, भाईचारे का भाई भाव रहे। गांधी जी ने भी चंपारण की धरती से अपना पहला सत्याग्रह किया था, पिताजी ने भी सारी यात्राएं वहीं से की, मैं भी अपनी वहीं से यात्रा शुरू कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, अपने कार्यकर्ता भाइयों से मिलना, उनकी बातों को सुनना।
0: बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा पटना से सड़क मार्ग से वैशाली, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण होते हुए आज शाम पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर पहुंची। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। निशांत कुमार आज वाल्मीकि नगर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद कल यहीं से दोबारा यात्रा शुरू होगी। यात्रा के दौरान जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि निशांत कुमार की यात्रा से पार्टी के सभी लोग उत्साहित हैं।
3: उनको पूरे पार्टी की शुभकामना है और पार्टी के सभी लोग उत्साहित हैं। निशांत जी की यात्रा निश्चित सफल होगी, इसलिए कि कार्यकर्ता तो उत्साहित है ही, आम लोगों में भी इसके प्रति जागरूकता है और सभी लोग चाहते हैं कि निशांत जी ज्यादा से ज्यादा सक्रिय हों।
0: वहीं जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा है कि निशांत कुमार इस यात्रा से जमीनी स्तर पर और मजबूत होंगे।
4: यात्रा आपस में प्रेम का, आपस में मोहब्बत का, आपस में भाईचारा का यात्रा होगा। निशांत कुमार जी जमीनी स्तर की सच्चाई को परखेंगे,

0: जानेंगे, समझेंगे और समझ बुझ करके इस इतिहाद को और भी ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव से सरकार को ताकत देंगे।
1: राज्य सरकार ने बिहार राजस्व सेवा के 47 अधिकारियों का निलंबन खत्म कर दिया है। पिछले 9 मार्च को सामूहिक अवकाश पर चले जाने के कारण इन्हें निलंबित किया गया था। निलंबित पदाधिकारियों ने 30 अप्रैल को बिना शर्त सामूहिक अवकाश से लौटने की घोषणा की थी। इसके बाद सभी को निलंबन मुक्त किया गया है। इन अधिकारियों को संबंधित जिलों में योगदान का निर्देश दिया गया है। प्रदेश की सभी पंचायतों में इस महीने की 19 तारीख से प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन पंचायत सरकार भवन या इसके आसपास किसी सार्वजनिक स्थान पर होगा। इसका मकसद आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में बिहार सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भाजपा नेता अजय आलोक ने कहा है कि पार्टी पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाएगी। श्री आलोक ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भरोसा नहीं रह गया है।
1: लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे ममता हो, चाहे कांग्रेस हो, डीएमके हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनको कोई भरोसा नहीं रह गया। लगातार हारते हारते ये मानसिक रूप से इतना विक्षिप्त हो चुके हैं कि कभी ये चुनाव आयोग को कोसते हैं, कभी ये ईवीएम को कोसते हैं, कभी ये केंद्रीय सुरक्षा बलों को कोसने लगते हैं। इनको सिर्फ कोसने के अलावा कुछ नहीं बचा, अब सुप्रीम कोर्ट को भी कोसने लगे। विपक्ष को दावे करने दीजिए, नतीजे आने दीजिए। यकीन मानिए, शानदार प्रदर्शन एनडीए का होगा। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में सरकार बनाएगी और एनडीए तमिलनाडु में सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक और शुभा नहीं है।
0: सिवान नगर थाना क्षेत्र के आंदर ढाला के समीप 29 अप्रैल को हुए चर्चित गोलीकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सोनू कुमार को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मारा गया अपराधी पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे की हत्या में शामिल था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस एनकाउंटर पर कहा कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया है।
2: अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सोनू यादव का एनकाउंटर हो गया है, अपराधी था, कई अपराध में लिप्त था और देखिए उस दिन गाड़ी सटा गोली मार के हत्या कर दिया, तो अब तो माला चढ़ाना ही है ना अपराधी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है जो अपराधी है उसको माला पहनाना नहीं है, उसको माला चढ़ाना है। तो अपराध मुक्त बनाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी लिए और समूल नाश किया जाएगा अपराधियों को। अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या बिहार छोड़ दे।
0: राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने कहा है कि पिछले 20 वर्षों में बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। पटना में आयोजित बिहार एजुकेशन समिट को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बिहार को केवल आर्थिक निवेश ही नहीं बल्कि बौद्धिक और संस्थागत रुचि को भी आकर्षित करना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसे संस्थान विकसित करने की जरूरत है जहां छात्रों को प्रौद्योगिकी, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए खुद को सशक्त बनाने का मौका मिले। राज्यपाल ने अनौपचारिक शिक्षा जैसे सेमिनार, संगोष्ठी और संवाद के जरिए विचारों के आदान प्रदान पर भी जोर दिया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में

0: आंधी बारिश की स्थिति लगातार बनी हुई है। आज राजधानी पटना सहित विभिन्न जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और हवा चल रही है। इससे तापमान में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 19 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।
1: दिनांक 4 मई राज्य के उत्तर भाग में कुछ स्थानों पर एवं दक्षिण भाग में एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, मधुबनी एवं सुपौल जिले में ओलावृष्टि होने की संभावना है और किशनगंज जिले में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के फुलकाहा थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर पुलिस ने 94 लीटर नेपाली शराब के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। रोहतास के सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने जिले में निर्माणाधीन मॉडल अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य लंबित पाए जाने पर सिविल सर्जन ने नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने मधेपुरा जिला मुख्यालय और उदाकिशनगंज कोर्ट परिसर में नवनिर्मित कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की प्राथमिकता न्याय को लोगों के द्वार तक पहुंचाना है। कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के लाभा जीरोमाइल चौक के समीप चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटर को सील कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी प्रद्युम्न सिंह यादव के निरीक्षण के दौरान अस्पताल संचालक किसी तरह के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए। किशनगंज में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत अवैध कोयला लदे 3 ट्रकों को जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान चालक समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रोहतास के सासाराम नगर थाना क्षेत्र के चौखंडी मोहल्ले में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने के मामले में हुई हिंसक झड़प में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात, राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और जदयू नेता निशांत कुमार सद्भाव यात्रा के तहत आज पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर पहुंचे। ये उनकी पहली राजनीतिक यात्रा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
2: रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
3: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो। ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
2: RBI कहता है, जानकार बनिए,
3: सतर्क रहिए। स्पेशल कैंप्स ऑन अनक्लेम्ड असेट्स आर बीइंग कंडक्टेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर 2025।
4: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है कटिहार जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।
5: कटिहार जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत स्वगणना का कार्य संपन्न हो गया। 1 अप्रैल से शुरू हुआ यह अभियान 1 मई तक जारी रहा। इस दौरान नागरिकों ने जनगणना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्वयं भागीदारी सुनिश्चित की। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि स्वगणना

0: के बाद अब जिले में मकान सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि 2 मई से 31 मई तक परगनक घर घर जाकर स्वगणना के दौरान भरी हुई जानकारी का सत्यापन करेंगे और जिनकी जानकारी छूट गई है उन्हें भी शामिल करेंगे।
1: जो हाउस के नंबरिंग देने का काम है वो शुरू किया गया है, जिसका हम लोग पर्यवेक्षण कर रहे हैं। और जो हमारे प्रगणक हैं वो सब जगह जा करके मकान का नंबरिंग करेंगे और उसके बाद 5 तारीख से घर घर जा करके वो प्रश्नों के उत्तर लेना शुरू करेंगे। मेरी सभी जिलावासियों से अपील है कि क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जनगणना का, और आने वाले समय में जो भी नीतियां, जो भी सरकार के निर्णय होंगे, उससे जो आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे उसी के आधार पर लिए जाएंगे। इसलिए सारी जानकारी सटीक और सही दें, और जो हमारे प्रगणक आपके घर में जाएंगे उनका सहयोग करेंगे।
0: जिले में रसोई गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी गैस एजेंसियों को नियमित रूप से होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उपभोक्ता घर बैठे गैस बुकिंग कर निर्धारित समय के भीतर सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। बेमौसम बारिश और आंधी की वजह से आम के पेड़ों से झड़ रहे टिकोले ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे आम के बगीचे धीरे धीरे सूने होते जा रहे हैं। काल वैशाखी के प्रभाव से जिले के मौसम में अचानक बदलाव हुआ, जिसके कारण भारी बारिश के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। इस बरसात से आम, लीची, कटहल, पपीता समेत कई बागवानी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा असर आम के बगानों पर देखने को मिल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पंकज कुमार ने बताया कि सामान्य तौर पर इस समय तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन इस बार तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचने और फिर अचानक बारिश होने से पौधों पर तनाव बढ़ गया है। इससे फल झड़ने और रोग लगने की समस्या बढ़ी है। उन्होंने बताया कि इस समस्या से बचाव के लिए प्लानोफिक्स हार्मोन की 1 ml मात्रा को 5 लीटर पानी में घोलकर शाम के समय छिड़काव करने से टिकोले गिरना कम किया जा सकता है।
2: अगर आप अपने बगीचे में सिंचाई करते रहें, हल्की नमी बना के रखते हैं, इससे भी टिकोले कम गिरते हैं। साथ ही साथ जो प्लानोफिक्स नाम की एक हार्मोन की दवा आती है, उसका 5 लीटर पानी में 1 ml दवा मिलाकर के स्प्रे करने से आम के टिकोलों में गिरने की जो समस्या है वो कम होती है। साथ ही साथ पोषण प्रबंधन के रूप में 1 लीटर पानी में 4 ग्राम बोरेक्स को घोल करके अगर छिड़काव करते हैं तो टिकोले के गिरने की समस्या जो है वो सुधरती है।
0: राज्य सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में नई पहल की है। इसके तहत अब जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को खरीद से पहले सरकारी जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही करीब 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए घर बैठे निबंधन की सुविधा भी लागू की जाएगी। कटिहार निबंधन कार्यालय के जिला अवध निबंधन पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जमीन की खरीद बिक्री में होने वाले फर्जीवाड़े, विवाद और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। अब कोई भी खरीदार जमीन खरीदने से पहले उसकी पूरी सरकारी जांच कर सकेगा। इसके लिए अंचल कार्यालय से सत्यापित रिपोर्ट प्राप्त करने की सुविधा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। जिला निबंधन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में पुराने जमीन दस्तावेजों की चोरी कर उनमें फर्जी नाम जोड़कर जमीन बेचने वाले अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह का कटिहार पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पटना और कटिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये गिरोह बिहार के विभिन्न जिलों के निबंधन कार्यालयों में लवारिस, दान की गई या सरकारी जमीनों के दस्तावेज चोरी कर उनमें हेर फेर कर बिक्री करता था। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि गिरोह ऐसे दस्तावेजों को निशाना बनाता था जिनकी निगरानी कम होती है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कटिहार जिले के करीब 400 निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों का अब तक अपार कार्ड नहीं बनने को लेकर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद्र चौधरी ने बताया कि जिले में करीब 400 निजी विद्यालयों के 1.5 लाख से अधिक छात्रों का अभी तक अपार कार्ड नहीं बना है, जिसके कारण निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 57% बच्चे अब भी इस व्यवस्था से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि सभी निजी विद्यालयों को 30 जून तक हर हाल में अपार कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है।
3: अभी आप सुन रहे थे कटिहार जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।

जिले की हलचल। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आपके ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त सचिन। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त सचिन। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सेहरा, रामलाल के बोल हैं और हसरत जयपुरी का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश से हम तक पहुंची है। आप हैं गांव टोरेवाल, जिला नवांशहर, पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। और आप हमारे श्रोता हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना सेहरा फिल्म का ये गीत, रामलाल के बोल थे और हसरत जयपुरी का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए रोटी फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी साहब के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है, आप हैं ओल्ड लिसनर्स ग्रुप बिहार जोन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, अकरम हुसैन प्रिंस, राधे कुमार विद्यार्थी, कारी राय, ललन मिश्रा, रामविलास चौधरी, कृष्ण मोहन यादव, कालिदास भट्टाचार्य और गणेश पासवान।

और आप हमारे श्रोता हैं नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी और पायल जोशी। और आप हमारे श्रोता हैं पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

ये गीत आपने सुना फिल्म रोटी से, किशोर कुमार की आवाज़ थी और आनंद बख्शी साहब के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ों में चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, एसटी बर्मन का संगीत है। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है, आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, आपने लिखा है विश्व हास्य दिवस की हार्दिक के शुभकामनाएं, जिंदगी छोटी है मुस्कुराते रहो और दूसरों को भी हंसाते रहो। तो आपको हमारे तरफ से और सभी श्रोताओं को आकाशवाणी परिवार की तरफ से विश्व हास्य दिवस के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं।

और आप हमारे श्रोता हैं गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से आप हैं हम सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल।

और आप हमारी श्रोता हैं नूर महल मैसौल सीतामढ़ी बिहार से। मुसरत जहाँ नाज शिक्षिका, तलत जहाँ नाज, फरहत जहाँ नाज, रिफत जहाँ नाज, नुजहत जहाँ नाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। और आप हैं कुवात बिहार से नरगिस जफर कलेर और बेगम

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम, बाजू

किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ों में भी आपने सुना फिल्म चलती का नाम गाड़ी का ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और एसटी बर्मन का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए उमराव जान फिल्म का ये गीत, आशा भोसले की आवाज़ है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है, आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। आप हैं कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज।

और आप हमारे श्रोता हैं मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना, कल्पना, मुन्नी, चांदनी और नंदनी कुमारी। और आप हमारे श्रोता हैं ताजपुर, मुरवा, समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अंतराल के बाद पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं और अब लीजिए सुनिए मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में बड़े घर की बेटी फिल्म का ये गीत। संतोष आनंद के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश से ईमेल जो हम तक पहुंची है, आप हैं ओम रेडियो श्रोता संघ है कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओम प्रकाश गायकवाड़, साई गायकवाड़, गौतम नगर नांदेड़ से आप हैं प्रभाकर जोधले और आरती जोधले। और आप हमारे श्रोता हैं आकाशी सासाराम से, निसार कमाल, मिराज शकीबा, आलिया इब्राहिम, पंकज कुमार।

और आप हमारे श्रोता हैं छोटी बलियां फिल्म सिटी मुंबई से, अहमद भाई फुलवाले, दुखनी सदा फारजू, जूही इकबाल फुलवाले, इमरान अहमद फुलवाले, आप हैं कपास हेडा बाडोर नई दिल्ली से, आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया मंतशा, आंसू अहमद फुलवाले, आप हैं लखमीनिया जिला बेगूसराय से, शमीम अहमद राइन और अखलाक अहमद फुलवाले।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अभी आपने सुना बड़े घर की बेटी फिल्म का ये गीत। संतोष आनंद के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए अलका याग्निक की आवाज़ में राज फिल्म का ये गीत। समीर के बोल हैं और नदीम शर्मन का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है फुटानी चौक नरहन स्टेट समस्तीपुर से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। आप हैं भोपाल बाड़ी उदयपुर राजस्थान से ललित और स्नेहलता जैन।

और आप हमारी श्रोताएं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। आप हैं बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। और आप हमारी श्रोता हैं कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर और राजेश राकेश ऋषिता। और आप हमारी श्रोता हैं भगवान मंजिल छोटी बलिया से नूर ऐसा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान, आमना आसमा, राबिया परी, आशा जूही सदफ बागवान और छतरी टोल तेघरा बाजार बेगूसराय से हमारी श्रोता हैं अदीबा अफसरी, इस्माइल आज़ाद, नन्हे राजा, फयाज़ फिरोज आलम, भाई शाह आलम और वली आलम जी।

अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आपने सुना राज फिल्म का ये गीत, समीर के बोल थे और नदीम सरवन का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में इंदिवर के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, फिल्म धर्मात्मा। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश हम तक पहुंची है। आप हैं टाउनशिप सेक्टर भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला श्याम कुंवर, आसमा श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर।

और आप हमारे श्रोता हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी साक्षी, अच्छेलाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। और आप हमारे श्रोता हैं सेक्टर 67 मोहाली चड़ीगंज से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा और डॉक्टर अमनदीप। पद्मनगर टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वन शाह और मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। और आप हमारे श्रोता हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जुगेश पुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। और आप हमारे श्रोता हैं व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। नोखा लालगंज रोहतास बिहार से हमारे श्रोता हैं राजकिशोर सिंह चौहान, बरक सिंह चौहान, ग्राम खरवत गढ़ नोखा से मोतीलाल जी और विजेंद्र पासवान। और आप हमारे श्रोता हैं पटेल नगर मौलौड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया और गुड्डू। और आप हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। आप हैं दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। आप हैं शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। तो लीजिए सुनिए धर्मात्मा फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ है।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या सुनने के लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी, सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम

0: के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रैंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
4: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
5: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में 2-2 केंद्र तथा नौगांव में 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6,000 काउंटिंग कर्मी और 2,300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
6: जनादेश 2026।
7: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
6: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
7: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
6: जनादेश 2026।
1: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट

विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाद

0: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: आईआईटी मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्स आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने यह संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वह हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1 लाख फॉलोअर

0: का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा।

धीरेंद्र शुक्ला एवं साथी के गाए इसी गीत के साथ ही भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम महफिल।

0: भूपेंद्र सिंह के गाए इसी गीत के साथ ही गजलों का कार्यक्रम महफिल अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम छाया गीत। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

असद का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की माँ थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू

जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था, वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दनबाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। क्योंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया। बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात।

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 420।

श्री 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

आह के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी फिल्म थी।

0: प्यारा प्यारा।
1: राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में ये फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली।

दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था।

और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रही दत्त साहब कहाँ हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं हैं। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन, जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया से

पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थी अभिनेत्री नरगिस की। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम का पहला गीत तुलसी कुमार की आवाज़ में

आयुष्मान चौधरी और राजमणि की आवाज़ों में अभी आपने सुना एल्बम तेरा प्यार मिले ना मिले का ये गीत, गीतकार संगीतकार नरेंद्र कुमार त्यागी का। और अब लीजिए सुनिए प्रियंका सिंह की आवाज़ में एल्बम इतना ना तुम याद आया करो। संतोष उत्पाती के बोल हैं और राज गाजीपुरी का संगीत है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अंतराल के बाद पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं और अब लीजिए सुनिए प्रियंका सिंह की आवाज में, माफ कीजिएगा, अरमान मल्लिक की आवाज में वहम एल्बम का ये गीत।

अरमान मल्लिक की आवाज़ में अभी आपने सुना वहम एल्बम का ये गीत। गीतकार संगीतकार थे मनन भारद्वाज। और अब लीजिए सुनिए निहारिका सिन्हा की आवाज़ में हजारों ख्वाहिश एल्बम का ये गीत।

इसी गीत के साथ ही गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग अब यहीं पे संपन्न होता है। हमारा अगला प्रसारण अब से कुछ ही पलों में।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

कुमार सानू की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म कहो ना प्यार है का ये गीत। गीतकार सावन कुमार और संगीतकार राजेश रोशन। और अब लीजिए सुनिए सलमा आगा और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में फिल्म पति पत्नी त्वाइफ का ये गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सलमा आगा और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म पति पत्नी और त्वाइफ का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए आशा भोसले और शशि कपूर की आवाज़ों में सुहाग फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ ही चित्रपट तराने कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है कल प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

कल प्रातः सभा की शुरुआत होगी 5:53 पर वंदे मातरम से, और 5:56 पर आप सुनेंगे आरंभिक उद्घोषणा। सुबह 6 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, और 6:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम वंदनवार। प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:30 पर। प्रातः 8 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात, और 8:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम। आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 8:20 पर, और 8:45 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका आप सुन सकते हैं प्रातः 9:10 पर, और 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। प्रातः 10 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, और 10:05 पर प्रातः आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन, संकलन एवं वाचन अख्तरिमा मंजुन का। 10:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी, और 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसधार।

0: लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। 7:25 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार तत्पश्चात जिले की हलचल। 7:50 समय होगा आपके ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ई मनपसंद का। और 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बंदगी और 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत। रात्रि 10:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट तराने। और 10:55 पर आप जानेंगे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। और सभा का समापन होगा हमेशा की तरह रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये था कल प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8:00 से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8:00 से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है, ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरला में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी

शाम 5:10 पर सभा की शुरुआत होगी भक्ति संगीत के साथ कार्यक्रम वंदन से। 5:30 पर आप सुनेंगे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन और 6:00 आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। 6:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझी गीत और 7:00 हम आपके लिए

संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बनाए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।